नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज है गुरुवार, शक संवत 1948 के आश्विन मास की नवमी तिथि, तदनुसार 1 अक्टूबर 2026। हम हमारे श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने से दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं, सुनते हैं समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और एक पुस्तक 100 लैंडमार्क्स जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया का विमोचन

0: भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें भारतीय सेना की वित्तीय सूचना प्रणाली विभाग के सक्षम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, रक्षा मंत्रालय के लिए संशोधित राष्ट्रीय संकलन प्रणाली और रक्षा मंत्रालय में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट भुगतानों की शुरुआत के लिए पेमेंट राउटिंग एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शामिल है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के विस्कॉन्सिन में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग पोलैंड के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रेज डोमांस्की से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों के बीच भारत और पोलैंड के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से कारोबार के लिए नए अवसर पैदा करने और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में एक वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि इस सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग एक साथ आएंगे। उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज और संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 6 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल है। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में जल आपूर्ति, सीवर और इससे निकलने वाले गंदे पानी की सफाई करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जल बोर्ड ने दक्षिण दिल्ली में जल आपूर्ति तंत्र को और मजबूत करने के लिए 6,044 करोड़ रुपए की परियोजना को भी मंजूरी दी है। यमुना नदी की सफाई के लिए 13 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रीलंका में श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
2: ये है विविध भारती।

गुरु क्रोध में लोग चिल्लाते क्यों हैं? तो गुरु उत्तर देते हैं, जब दो लोग नाराज होते हैं तो उनके दिल एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। इस अवस्था में वह चिल्लाए बिना सुन नहीं सकते और जितना अधिक क्रोधित होते हैं उतना दूर होते जाते हैं। तो शिष्य ने कहा, जब प्रेम करते हैं तब? उन्होंने कहा, तब और भी अधिक एक दूसरे को चाहने लगते हैं और करीब आते जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है, बिना कहे ही सामने वाले की बात समझ जाते हैं। इसीलिए तो कहा है, गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम वंदनवार में। आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये भजन।

ये भजन हमने सुना जिसे गाया आशा भोसले ने, मीराबाई ने लिखा और जयदेव ने संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वंदनवार में अगला भजन, बेला सावीर के द्वारा लिखा और संगीतबद्ध किया गया, कबीरदास के बोल।

हम सुन रहे थे बैजू मंगेशकर की आवाज और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए कबीर भजन को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वंदन वार में देश के प्रति समर्पित इस गीत को मीना कपूर और साथियों की आवाज में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। सुबह के 6:45 एवं शाम के 6:45 पर सुनेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। श्रृंखला है शताब्दी की भक्ति रचनाएं। इसका पहला भाग आज हम सुन सकेंगे। आमंत्रित कलाकार हैं गायक एवं संगीतकार पद्मश्री शेखर सेन, संवादिका ममता सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। सुबह के 7 का समय होगा भूले बिसरे गीत का। 7:30 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। 8 का समय होगा समाचार प्रभात का। 8:15 पर सुनेंगे त्रिवेणी। 8:30 का समय होगा चित्रलोक का। और सुबह के 9:30 पर एवं रात्रि के 9:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार, जो कि केंद्रित होगा गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी पर। दस बजे खुलेगा पिटारा। आज के मेहमान

साहित्यकार लेखक मनोज रूपड़ा से ममता सिंह की बातचीत, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। 11 बजे का समय होगा रंग तरंग का, 12 बजे सुनेंगे हिंदी समाचार और 12:05 पर सजेगी यादों की महफिल।

एक बजे सुरीला सफर, जिसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 2 बजे का समय होगा त्रिवेणी का। आलेख एवं स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। दोपहर 2:15 पर होंगे समाचार, 2:30 पर सदाबहार नगमे, और 3 बजे श्रोताओं और सखियों का पसंदीदा कार्यक्रम सखी सहेली। चार बजे का समय होगा हेलो फरमाइश का, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी। शाम 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6 बजे सुनेंगे हिंदी समाचार और 6:05 पर पुनः सुनेंगे तराने नए पुराने। 7 बजे का समय होगा जय माला का। 7:45 पर इंद्रधनुष, इनसे मिलिए टेलीविजन और फिल्म लेखक पुनर्वसु मालवीय से ममता सिंह की बातचीत, और इसका दूसरा भाग आज हम सुन सकेंगे, प्रस्तुतिकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। रात्रि 8 बजे हवा महल, झलकी अंगारे, लेखक सोमनाथ नागर, निर्देशन सत्येंद्र शरत। रात 8:15 पर चित्रलोक, और 9 बजे आपके लिए। रात 10 बजे आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम छाया गीत, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी। दस बजकर 30 मिनट पर ढलती जाए रात, और 11 बजे रंग तरंगा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस का 328वां भाग।

कुंभकर्ण ने युद्ध भूमि में भयानक विनाश लीला मचा रखी है, ये देख श्री राम ने सुग्रीव, विभीषण और लक्ष्मण को सेना का भार सौंपा और शारंग धनुष संभाल कर शत्रु सेना का मान मर्दन करने चले। धनुष की एक टंकार मात्र से शत्रुओं के कानों के पर्दे फट पड़ने की नौबत आ गई। फिर उन्होंने 1,00,000 बाण छोड़े, जिनसे महाबली राक्षस योद्धाओं के हाथ, पैर और सिर कटने लगे। लेकिन मायावी राक्षस फिर संभल कर उठते हैं और युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं। श्री राम के वाण आसुरी सेना का संहार करके तरकस में वापस लौट आते हैं। कुंभकर्ण ने भयानक सिंहनाद किया, विशाल पर्वत उखाड़कर वो वानर सेना पर फेंकने लगा। श्री राम के वाण उसका शरीर वेद कर दूसरी ओर निकल जाते हैं। उसके भीम काय काले शरीर से बहता रक्त ऐसा दिख रहा है जैसे काजल के पर्वत से गेरुए रंग की धाराएं प्रवाहित हो रही हों। कुपित कुंभकर्ण दुगने वेग से वानर भालुओं को मारता काटता एक पर्वत लेकर श्री राम की ओर दौड़ा ही था कि उन्होंने उसकी भुजा ही काट डाली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

श्रोताओं नमस्कार। संगीत के साथ स्वर हमारे मन को शांति, शीतलता और उल्लास प्रदान करते हैं, और जब इस संगीत में भक्ति रस की चाशनी घुल जाए तो मन भाव विभोर होता है। ऐसी ही भाव विभोर करने वाली एक श्रृंखला संगीत सरिता में सुनते हैं, शताब्दी की भक्ति रचनाएं। इस श्रृंखला में आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन आपसे बातचीत कर रही है।

0: ममता सिंह। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। संगीत जब साधना बन जाए और शब्द आत्मा की आवाज बन जाए तो एक कलाकार सिर्फ गायक और संगीतकार नहीं रहता, बल्कि वो कला और संस्कृति का संवाहक बन जाता है। विविध भारती के स्टूडियो में आज हमने ऐसे ही एक विलक्षण कलाकार को आमंत्रित किया है। वो गुणी कलाकार हैं पद्मश्री शेखर सेन। आप हैं गायक, संगीतकार, गीतकार, अभिनेता, लेखक और निर्देशक और बेहद विनम्र इंसान। आपकी बातों से जहां ज्ञान की सरिता बहती है, वहीं हास्य और व्यंग्य का चुटीला झरना भी बहता है। शेखर सेन मध्य प्रदेश, जो अब छत्तीसगढ़ है, के रायपुर के संगीत की संस्कार भूमि में पले बढ़े। आपने अपनी माँ डॉक्टर अनीता सेन से और पिता डॉक्टर अरुण कुमार सेन से संगीत की तालीम ली। माता पिता दोनों ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और संगीतज्ञ थे। शेखर सेन ने अपनी प्रतिभा से संगीत की दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। 200 से ज्यादा संगीत एल्बम के साथ उन्होंने अपनी रचनात्मक यात्रा को आगे बढ़ाया और फिर रंगमंच को अपनी साधना का माध्यम बनाया। उनकी अनूठी पहचान है उनकी एकल नाटक प्रस्तुति, सूर कबीर तुलसी, विवेकानंद और भी अनेक प्रस्तुतियां, जहां वे स्वयं अनेक चरित्र और भावों को खास अंदाज में जीवंत कर देते हैं। शेखर सेन ने मीराबाई से लेकर महादेवी वर्मा तक, रसखान, रहीम, बिहारी, सूर, कबीर, तुलसी और भी अनेक कवियों और संतों की रचनाओं को उन्होंने स्वर दिया है। शेखर सेन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी और अन्य अनेक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। शेखर सेन जी संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष रहे और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्य के रूप में भी उन्होंने 4 वर्षों तक काम किया। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से हम नई श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं, शताब्दी की भक्ति रचनाएं। इस श्रृंखला को सुरीली कड़ियों में पिरोने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में उपस्थित हैं गायक, संगीतकार, गीतकार और अभिनेता पद्मश्री शेखर सेन। शेखर दादा, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, आपको भी और संगीत सरिता के सभी सुधी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम।
1: और अब हमने तबले पर संगत करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है आशीष विश्वास जी को। श्रोताओं से आपका हम परिचय करा दें। आशीष जी देश विदेश के अनेक संगीतमय कार्यक्रम में अपने तबला संगति से लोगों को लुभाया है, सम्मोहित किया है और आशीष जी ने श्री अभिजीत बैनर्जी से तबले की तालीम ली है और जब इनकी उंगलियां तबले पर थिरकती हैं तो हम सब सम्मोहित होकर देखते रहते हैं कि ये बिल्कुल नदी की धारा की तरह बहती है। तो आशीष जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: आप सभी को आशीष विश्वास का नमस्कार।
2: जब इस विषय पर हम लोगों ने चर्चा की तो हमने सोचा कि क्यों ना एक शताब्दी का पूरा भक्ति संगीत की यात्रा हमारे साथ साथ हमारे श्रोता भी करें और बहुत सारी चीजें जो कहीं पर इतिहास के खानों में छुप के रह गई हैं उनको वहां से निकाला जाए और एक बार फिर से हम उन सभी अपनी अद्भुत रचनाओं को याद करें और उससे और समृद्ध हों। तो सबसे पहले मैं शुरुआत में आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं आपको लेकर चल रहा हूं 1922
1: जी।
2: महाराष्ट्र का एक छोटा सा शहर जो अब बहुत बड़ा हो गया है, नाशिक। वहां पर पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने एक आश्रम की शुरुआत की, स्थापना की, राम नाम आधार आश्रम
1: जी।
2: और मन में उन्होंने संकल्प लिया उस छोटे से कमरे में कि मैं केवल भगवान राम पर आधारित भजनों की रचना करूंगा
1: जी।
2: उनको कोई भगवत प्रेरणा हुई थी, बड़े संत हृदय व्यक्ति थे और वहां पर उन्होंने उस छोटे से आश्रम में बैठकर बहुत सारी रचनाएं बनाई। मैं आपको कुछ नाम ले रहा हूं तो आपको एक अनुमान होगा कि क्या क्या अद्भुत रचनाएं नाशिक के उस छोटे से कमरे में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी द्वारा रची गईं।
1: और पंडित जी को हम सब ने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा है, संगीत की शुरुआती शिक्षा उन्हीं से ली हम सभी श्रोताओं।
2: बिल्कुल। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चलो मन गंगा जमुना तीर
1: जी,
2: मत जा जोगी
1: क्या बात,
2: जानकी नाथ सहाय करें तब, या जो सबसे प्रसिद्ध धुन है जो बाद में गांधी जी ने भी इसको गाया, रघुपति राघव राजा राम,
4: क्या बात है।
2: इन सब रचनाओं की उन्होंने न केवल उनको स्वरबद्ध किया रागों का आधार लेकर, उन्होंने अपने शिष्यों को भी सिखाया। और उस कालखंड में जिस समय माइक नहीं हुआ करता था, उस समय उन्होंने 20,000-25,000 लोगों के सामने, कितनी बड़ी आवाज उनकी रही होगी,
4: बिल्कुल
2: उनके सामने वो गाते थे और लोग उनके साथ गाते थे। और ये उनकी संगीत रचनाओं का जादू है कि आज इतने वर्षों के बाद, 100 वर्ष से अधिक हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो रचनाएं हमारे डीएनए का अंग बन चुकी
4: है। जी बिल्कुल।
2: पहली रचना मैं चाहूंगा कि हम लोग आप विविध भारती के माध्यम से सुनाएं, ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया।
4: क्या बात।
2: मैं केवल थोड़ा सा हमारे श्रोताओं की सुविधा के लिए राग का परिचय दे रहा हूँ। राग मिश्र गारा में ये रचना है।

0: क्या बात है, बहुत सुंदर।
1: पलुस्कर जी के ही सुपुत्र डीवी पलुस्कर जी की आवाज में आप ये भजन सुनाएं।
0: पंडित डीवी पलुस्कर के स्वर में ये रचना सुनते हैं और श्रोताओं को भी सुनवाते हैं।
1: बिल्कुल।

0: शेखर दादा, अब बताइए कि जो अभी रचना हमने सुनवाई, इस रचना के बाद अभी हम क्या सुनवाएं?
1: अगली रचना को हम सुने उसके पहले मैं चाहता हूं कि जितने भी संगीत को प्यार करने वाले श्रोता हैं और जितने भी संगीत के विद्यार्थी हैं
0: जी,
1: उनकी जानकारी में भी ये बात आए कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने 1901 में गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की
0: जी,
1: और आपको आश्चर्य होगा कि लाहौर में की 1901 में
0: जी,
1: और फिर उसका मुख्य केंद्र बना मुंबई में ओपेरा हाउस में
0: जी,
1: और 1908 में मुंबई के गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना हुई, और इसलिए हम सब मुंबई वासी जो हैं वो ओपेरा हाउस का जो चौक है उसको पलुस्कर चौक इस नाम से हम जानते हैं।
0: बिल्कुल,
1: पंडित जी ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, पर ये जो रचना मैं चाहता हूं वो हमारे अंतर मन में इतनी घुली हुई है कि मैं जानता हूं कि जिस समय ये रचना आप सुनेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप पलुस्कर जी के ही सुपुत्र डीवी पलुस्कर जी की आवाज में आप ये भजन सुनाएं, तो मैं चाहता हूं कि वो श्रोता भी साथ साथ इसके गुनगुनाने लगें। और ये राग मिश्र पहाड़ी में है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो
0: जी।
1: ये रचना आप सुने डीवी पलुस्कर जी के मधुर स्वरों में
0: जी।

0: शेखर दादा, हम राम रतन धन पा रहे हैं, साथ में हम ज्ञान के रत्न, ज्ञान के मोती भी पाएंगे आपसे बहुत सारे, ये उम्मीद है। हम जरा अपने श्रोताओं के लिए जानना चाहते हैं कि क्या पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने किसी स्वरलिपि की पद्धति की शुरुआत की?
1: हमारे यहाँ दो संगीत स्वरलिपि पद्धतियां बनाई गई। पहली थी जो भातखंडी जी द्वारा बहुत उसका प्रचार किया गया, वो आसान है। पलुस्कर जी ने जो संगीत लिपि बनाई वो कठिन तो है, पर वो सांगीतिक दृष्टि से बिल्कुल संगीत के व्याकरण को मानती हुई है कि कहाँ पर तीन मात्रा, कहाँ चार मात्रा, कहाँ एक मात्रा, तो उसके उन्होंने चिन्ह अलग बनाए। तो उसको आप ये कह सकते हैं कि जो स्टाफ नोटेशन था उससे भी वो प्रेरित थे कि एक ये ऐसा चिन्ह होगा तो चार मात्रा का होगा, ऐसा चिन्ह होगा तो आठ मात्रे का हो, जो स्टाफ नोटेशन में, वेस्टर्न नोटेशन में हम लोग करते हैं। तो पलुस्कर जी का जो नोटेशन है वो बहुत ही वैज्ञानिक है
0: जी।
1: पर भातखंडी जी का जो नोटेशन है वो बहुत सरल होने के कारण उसका ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। हमारे लिए दोनों ही स्वरलिपियां अच्छी हैं। ये वैसा ही है जैसे माँ अच्छी है या पिताजी अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे हैं, जिसको जिसमें सुविधा हो
0: जी।
1: पर प्रचारित जो ज्यादा है वो भातखंडी जी वाली स्वरलिपि है
0: जी। बहुत अच्छी जानकारी थी और विद्यार्थियों का जिक्र आपने किया था, तो हमें लगता है कि संगीत सरिता कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए एक पाठशाला की तरह है। शेखर दादा, अब संगीत सरिता कार्यक्रम की इस कड़ी के लिए हम बातों को अपने समेट रहे और कल के संगीत सरिता में कुछ नई बंदिशें लेकर आएंगे, कुछ नई भक्ति रचनाएं लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए श्रोताओं से अनुमति लेते हैं, नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, ये श्रृंखला आप सुन रहे थे। आमंत्रित कलाकार, गायक, संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सिंह। आज आपने सुनी इस श्रृंखला की पहली कड़ी। तबला संगत आशीष विश्वास, तकनीकी सहायक HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। भूले बिसरे गीत प्रस्तुत होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। आइए शुभारंभ करते हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का इस गीत के साथ, जिसे लिया गया है फिल्म परछन से। लता मंगेशकर की आवाज है, नूर लखनवी ने इसे लिखा है और सी रामचंद्र का है संगीत।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: आप सुन रहे हैं विविध।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का

0: चल के।
1: हम सुन रहे थे बैजू बावरा फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी के बोल और नौशाद के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की।

हम सुन रहे थे आन फिल्म से यह गीत शमशाद बेगम की आवाज में शकील बदायूनी के बोलों के साथ, जिसे संगीतबद्ध किया है नौशाद ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का अगला गीत, जो कि है फिल्म तुलसीदास से आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं। गीतकार हैं GS नेपाली, संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आनंद। सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव।

हम सुन रहे थे सुबह का तारा फिल्म से यह गीत उषा मंगेशकर की आवाज में, नूर लखनवी के बोल और सी रामचंद्र के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में अगला गीत शबाब फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, गीतकार है शकील बदायनी और संगीतकार है नौशाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। हमें राही प्यार के प्रस्तुत होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के में।

0: हम सुन रहे थे ये गीत यशुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में, इंदिवर ने जिसे लिखा, उषा खन्ना ने जिसे संगीतबद्ध किया, और हमने लिया फिल्म साजन बिना सुहागन से।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती। विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आनी। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव।

हम सुन रहे थे ये गीत लहू के दो रंग फिल्म से। किशोर कुमार सुलक्षणा पंडित ने इसे गाया, फारूक कैसर ने इसे लिखा और बप्पी लहरी ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के में अगला गीत, जो कि है जानी दुश्मन फिल्म से। किशोर कुमार अनुराधा पौडवाल की आवाजें हैं, वर्मा मलिक के हैं बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है संगीत।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
5: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं था कि वो जगह कौन सी है। दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है। वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
4: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
5: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम। तो इसको लीला बोलते हैं।
4: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
6: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है हम हैं राही प्यार के। आइए सुनते हैं अगला गीत घर फिल्म से। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें हैं। इस गीत को बोल दिए हैं गुलजार ने और संगीत दिया है आर डी वर्मन ने।

सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिल

0: जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में
1: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
0: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
3: पेंटर बाबू
2: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
4: दिल तो पागल है,
2: दुश्मन
5: चिट्ठी न कोई संदेह,
2: गदर एक प्रेम कथा,
6: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
2: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
7: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
2: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है हम हैं राही प्यार के।

देवता फिल्म से सुन रहे थे हम यह गीत किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजों में, गुलजार के बोल, आरडी वर्मन के संगीत के साथ। इसी के साथ हम है राही प्यार के कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया, संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन किया। सऊदी अधिकारियों ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर चाकू से हमला करने और दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त करने के प्रयास के आरोप में ओमान के सह पायलट को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 174 लोगों की जान बचाने वाले कप्तान को सच्चा नायक बताया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, यूपीएससी के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
2: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का एक

0: स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक निर्णय नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी। यह कार्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा है। कल पहले दिन भारत मंडपम में शताब्दी समारोह मंथन आयोजित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीनीकरणीय विद्युत ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा।
2: 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग DED के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकी पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिन्दी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभों का उल्लेख किया।
3: आयुष्मान भारत पीएम जय,
4: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना से अब तक 60 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं और इसका लक्ष्य 70 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ना है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 40% है।
1: खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीलामी में अंडमान सागर क्षेत्र के 2 अपतटीय खनिज भंडार शामिल हैं, जिन्हें समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पेश किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। जस्टिस MM सुंदरेश और PB बराली की खंडपीठ ने संकेत दिया कि वे दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, जबकि दिन भर पटाखे जलाने की अनुमति देने से पर्यावरण और बुजुर्ग तथा बीमार लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्यों

0: नजर रख रहे हैं। वर्तमान में स्मिथ तबुक के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। दूतावास ने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उनकी हालत अभी स्थिर है। भारतीय दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन के परिवार के संपर्क में हैं और सऊदी के अधिकारियों के समन्वय से हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इतने बड़े खतरे का सामना करते हुए और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दूसरों की जान बचाने के लिए अटूट साहस दिखाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टली। प्रधानमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन मच्छार को सच्चा नायक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दूरदर्शिता से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम एक ऐसे उदाहरण की बात कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आधुनिक बुनियादी ढांचे और मजबूत जुड़ाव की परिकल्पना जम्मू कश्मीर में बने ऐतिहासिक चिनाब और अंजी खड्ड रेलवे पुलों के माध्यम से साकार होती दिखाई दे रही है।
2: उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है।
3: 6 जून 2026 को चिनाब और अंजीखड़ रेलवे पुलों का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पुलों को भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक और जम्मू कश्मीर में रेल यातायात को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा पड़ाव बताया। ये दोनों पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का अहम हिस्सा है और इन्हें मुश्किल पहाड़ी इलाकों में बनाया गया है। चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर की ऊंचाई पर बना चिनाब रेलवे पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है और अंजी पुल भारत का पहला तारों पर टिका रेलवे पुल है। इन पुलों के जरिए न केवल जम्मू कश्मीर का शेष भारत से रेल संपर्क जुड़ा बल्कि माल ढुलाई और पर्यटन में भी काफी बढ़ोतरी हुई। इन पुलों की वजह से कश्मीर के कृषि, बागवानी और हस्तशिल्प उत्पादों को देश भर के बाजारों तक तेजी से पहुंचाना आसान हो गया। कुलगाम के एक सेब उत्पादक तजमुल अहमद का मानना है कि रेल संपर्क जुड़ने से जम्मू कश्मीर के फल उत्पादकों के लिए अपनी उपज को देश भर में पहुंचाना बहुत आसान हो गया।
4: जब से रेल कनेक्ट हो गई है तो तब से हमारी जो मेवा सन्नत है इसमें काफी सुधार आया है, क्योंकि हम एक तो अपना मेवा मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में ले जाने के लिए इस रेल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ये कि किराया भी बहुत कम देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि रेलवे कनेक्टिविटी जो है ये हमारे इस मेवा सेक्टर के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत इख्तियार कर चुकी है।
3: जानकारों का कहना है कि ये पुल न सिर्फ इंजीनियरिंग की शानदार मिसाल और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है बल्कि जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ और भी मजबूती से जोड़ने की अहम कड़ी साबित हो रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। जापान एशियाई खेलों में आज सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। वहीं महिला हॉकी टीम पहले ही चीन के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के तटवर्ती और भीतरी इलाकों, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज तेज बारिश की संभावना है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की संभावना है। इसके साथ ही वर्षा भी हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो, expert@airnewshindi को फॉलो करें।

0: अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जया। दीपावली से पहले पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बयान को आज सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट का देश भर में पटाखों पर रोक से इनकार, कहा 2400 घंटे भी आतिशबाजी नहीं, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। लोकसत्ते ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, भावनाओं, स्वास्थ्य और पर्यावरण में संतुलन जरूरी, पटाखों पर पूर्ण रोक नहीं, दिवाली से पहले तय होंगे नियम। दुबई से इसराइल जा रही फ्लाइट को हाईजैक कर क्रैश कराने की कोशिश की खबर भी आज की अखबारों की सुर्खियां हैं। दैनिक जागरण लिखता है, विमान हाईजैक कर इसराइल में क्रैश कराने को मंसूबा, भारतीय पायलट ने साहस दिखाकर बचाए 172 जाने। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इसराइल जा रही फ्लाइट की सऊदी में इमरजेंसी लैंडिंग, भारतीय पायलट ने 9/11 जैसे आतंकी हमला रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत को लेकर की खबर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। प्रधानमंत्री मोदी व अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चर्चा की, दोनों करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमत, जनसत्ता की सुर्खी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

नमस्कार, मैं हूं यूनुस खान। आज वरिष्ठ नागरिक दिवस है। जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती जा रही हैं, जीवन शैली बेहतर हो रही है और हमारी जीवन अपेक्षा बढ़ती चली जा रही है, यानी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा आज वरिष्ठ नागरिकों का हिस्सा है, बुजुर्गों का हिस्सा है। बुजुर्ग हमारे समाज का एक बहुत जरूरी अंग है। उन्होंने अपनी एक शानदार जिंदगी बिताई और अब वो सेवानिवृत्त जिंदगी बिता रहे हैं। उन्हें भी अपना प्यार चाहिए, उन्हें भी परिवार के लोग चाहिए जो थोड़ी देर उनके साथ बैठें, बातें करें, उनकी समस्याओं के बारे में, दुनिया भर के बारे में उनसे विचार विमर्श करें और उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करें।

बुजुर्गों को सिर्फ अपना समय देने की ही जरूरत नहीं है, बल्कि समय के साथ साथ जिस तरह से तकनीक बदल रही है, समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, उन्हें इस पूरी धारा में शामिल करने की जरूरत है। ये होना चाहिए कि नई पीढ़ी थोड़ी देर उनके पास बैठे, उन्हें मोबाइल चलाना, मोबाइल की नई तकनीक सोशल मीडिया सिखाए, उन्हें कंप्यूटर या टैबलेट चलाने के गुर सिखाए, उसकी ट्रिक सिखाए, और उन्हें ये भी बताए कि कैसे वो अपने जीवन को रचनात्मक बना सकते हैं। कई घरों में ये भी देखा गया है कि नई पीढ़ी के लोग पत्रिकाओं को पढ़कर अपने बुजुर्गों को सुनाते हैं। ये भी एक तरीका है बुजुर्गों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का। अब हमें ये सोचना है कि हम अपने परिवार और समाज के बुजुर्गों के साथ किस तरह अच्छा बर्ताव कर सकते हैं और उनकी उंगली पकड़कर जिंदगी के सफर में आगे बढ़ सकते हैं।

जिंदगी को जीकर ही समझा जा सकता है। बुजुर्गों के पास जीवन का एक विराट अनुभव है और ये अनुभव नई पीढ़ी के लिए एक बहुत जरूरी मार्गदर्शक बन सकता है। नई पीढ़ी के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो बुजुर्गों को दरकिनार न करें, हाशिए पर न रखें, बल्कि उनके अनुभवों से सीखें, क्योंकि दुनिया की जैसी समझ बुजुर्गों के पास होती है वो नई पीढ़ी के पास आ ही नहीं सकती। उन्होंने जिंदगी का एक लंबा सफर बीहड़ रास्तों पर तय किया है, अपनी जेब में अनुभवों को जमा करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते चले गए हैं। इसलिए बुजुर्गों से हमें आशीर्वाद भी लेना है, उनके अनुभवों से सीखना भी है और उनके साथ बैठकर समाज को बेहतर

ये थी आज की त्रिवेणी। आज है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। हमें अपने आसपास के बुजुर्गों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी बात के साथ इजाजत लेता हूं, मैं आपका दोस्त यूनुस खान।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं था कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है। वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक पर थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में। मैं हूं विधि प्रवीण जैन। नमस्कार।

हम सुन रहे थे ये गीत वंदे भारतम, वंदे भारतम एल्बम से विशाल मिश्रा की आवाज़ में। मनोज मुंतशिर ने इसे लिखा और आरकू ने इसे संगीतबद्ध किया। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज कुछ विशेष दिन है, जिनमें से एक विशेष दिन हो जाता है इस महिला को याद करने के साथ जिनका नाम है डॉक्टर एनी बेसेंट। आज इनका जन्मदिवस है जिसे हम जन्म जयंती के रूप में मना रहे हैं। प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को हम इसे मनाते हैं। इनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में। वह एक समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, थियोसोफिस्ट और शिक्षाविद रही हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता और सामाजिक उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके द्वारा बहुत सारे कार्य ऐसे किए गए जो भारत की स्वतंत्रता के लिए नींव की ईंट बन गए। आइए सुनते हैं एनी बेसेंट को याद करके ये गीत।

सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरुण। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव।

0: मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक, और आइए हम बात कर रहे थे चित्रलोक कार्यक्रम में डॉक्टर एनी बेसेंट के बारे में। डॉक्टर एनी बेसेंट ने भारत की स्वतंत्रता के लिए भी बड़ा योगदान दिया। उन्होंने होम रूल आंदोलन 1916 में, जिसे आरंभ किया था श्री बाल गंगाधर तिलक ने, उनके साथ मिलकर भारत में होम रूल लीग की स्थापना करवाई, जिससे भारतीयों ने स्वशासन की मांग राष्ट्रीय स्तर पर गति दे सके। इसके साथ ही वह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में भी सन 1917 में चुनी गई। इसके साथ उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे योगदान दिए हैं, जैसे 1898 में वाराणसी में एक कॉलेज की स्थापना की गई थी। वो कॉलेज कौन सा था, क्या बात थी, इसके बारे में बात करेंगे इस छोटे से विराम के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है चित्रलोक। हम बात कर रहे थे डॉक्टर एनी बेसेंट के बारे में। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया, उसके साथ ही शिक्षा के लिए भी योगदान दिए। सन 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, जो आगे चलकर पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का आधार बना। उन्होंने भारत में महिलाओं को शिक्षा के प्रसार के लिए भी जोड़ने के लिए बहुत सारा कार्य किया। उन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1907 में मद्रास चेन्नई में स्थित एक थियोसोफिकल सोसाइटी की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, जिसके द्वारा उन्होंने भारतीय दर्शन, वेद व उपनिषदों पर के विचारों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। इसके साथ ही कई सारी समाचार पत्र और पत्रिकाओं में भी उन्होंने अपना संपादन, प्रकाशन तथा लेखन का कार्य किया, जिसमें से न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जैसे प्रमुख समाचार पत्र हमारे समक्ष है। वह हमेशा कहा करती थी कि भारत केवल एक भूभाग नहीं है, यह एक जीवंत संस्कृति और आध्यात्म की भूमि है। जब तक भारतीय अपनी प्राचीन जड़ों और स्वतंत्रता को नहीं पहचानते, तब तक वास्तविक प्रगति संभव नहीं है। एनी बेसेंट का जीवन निस्वार्थ सेवा, बौद्धिक स्पष्टता और भारतीय स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भागीदारी की एक अद्भुत मिसाल है। हम उन्हें आज उनके जन्मदिवस पर याद करते हैं इस गीत के साथ।

डॉक्टर एनी बेसेंट ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना बहुत योगदान दिया और उसके साथ ही शिक्षा के कार्यक्रम में भी उन्होंने अपना योगदान दिया, उसके लिए हम याद करते हैं। और कहीं पढ़ा था कि लहजे को जरा देख जवां है कि नहीं, बालों की सफेदी को बुढ़ापा नहीं कहते। बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ बालों की सफेदी आ जाए तो बुढ़ापा नहीं होता। कई लोग अपने जीवन में एक लंबे अरसे तक कार्य करते रहते हैं। आज है वरिष्ठ नागरिक दिवस और हम सभी वरिष्ठ नागरिकों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं क्योंकि आज का दिवस उनके लिए मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को पूरी दुनिया में इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों, स्वास्थ्य, भलाई और समाज में उनके अमूल्य योगदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 1990 में इस दिन की घोषणा की और यह दिन लगातार मनाया जाने लगा। हालांकि बात सच है, जो बुजुर्ग हैं वह बुजुर्ग नहीं हैं, वह बहुत सारी संभावनाओं और बहुत सारी एक्सपीरियंस का भंडार है। तो चलिए उनसे हम शिक्षा लेते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: हम सुन रहे थे बुढ़ा होगा तेरा बाप फिल्म से यह गीत अमिताभ बच्चन की आवाज़ पे। विशाल ने इसे लिखा और विशाल शेखर ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
5: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
6: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है। दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है। वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
5: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
6: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम। तो इसको लीला बोलते हैं।
5: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
7: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में। आज है वरिष्ठ नागरिक दिवस। अरे होते हैं जिनके सफेद बाल, वो वक्त की पहचान होती है। होता है जो उनका अनुभव, उसको सफेद बाल उनकी निशानी होती है। बिल्कुल सही बात कही है। और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2026 में इस दिवस का एक मुख्य विषय रखा गया है। विषय है द एज ऑफ लॉन्गेविटी, रीथिंकिंग सिस्टम फॉर लॉन्गर लाइफ। इसका अर्थ है कि दीर्घायु का युग, लंबी आयु के लिए व्यवस्थाओं का पुनर्विचार। इस विषय का मुख्य उद्देश्य यह है कि जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं और जीवन प्रत्याशा में बहुत सुधार हो रहा है तो लोग लंबी उम्र तक जी रहे हैं। इस थीम पर जोर दिया जाता है कि आप स्वास्थ्य सेवा दें, सामाजिक सुरक्षा दें, आवास दें, कार्य प्रणाली इतने सुंदरता से तैयार करें कि किसी व्यक्ति को आयु वर्षों की गिनती में ना रहे बल्कि स्वस्थ जीवन सक्रिय और गरिमापूर्ण रहे। और हमारे जो समाज में बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान करने का कर्तव्य हमारा बनता है क्योंकि उन्होंने जीवन भर श्रम किया है और उस श्रम से निकला है अनुभव और वो अनुभव बनता है हमारे लिए मार्गदर्शन। इसलिए हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, स्वास्थ्य देखभाल करनी चाहिए, वह वित्तीय आत्मनिर्भर हों इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। बुजुर्ग हमारे समाज की मजबूत नींव है, मार्गदर्शक है। उन्हें हमें केवल सुविधाएं नहीं

देना है, बल्कि सच्चा अपनत्व, सम्मान और समय जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता है वह भी देना है। ढेर सारा प्यार हमें पहुंचाना है उन तक। आइए सुनते हैं हमारे सभी बुजुर्गों के लिए ये गीत।

हम सुन रहे थे 102 नॉट आउट फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में यह गीत, जिसे लिखा हिरल ने और सलीम सुलेमान ने इसे संगीतबद्ध किया। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है चित्रलोक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का दिन एक बार और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज है श्री वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की पुण्यतिथि। अब ये वीर चंद्र गढ़वाली जी कौन थे? ये एक ऐसा नाम है जिसने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में जन्म लिया और अपने निर्भीक और स्वाभिमान स्वभाव के कारण इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अपना बड़ा सारा योगदान दिया। अब इनका जो पहली जो भर्ती हुई वह ब्रिटिश सेना के रॉयल गढ़वाल राइफल्स में हुई। यहां पर उन्होंने अपनी वीरता का लोहा मनवाया। गढ़वाली यह नाम इतिहास के पन्नों में इस तरह से अमर हो गया क्योंकि इस नाम ने पेशावर कांड के नाम से इस नाम को जाना जाने लगा, यानी 23 अप्रैल 1930 की उस तारीख के साथ नाम है पेशावर कांड। पेशावर का वह किस्सा अख्वानी बाजार में खान अब्दुल गफ्फार

खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार के साथ निहत्ते शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और उस समय ब्रिटिश कैप्टन के रिकेट ने गढ़वाल राइफल्स को निहत्ते सत्याग्रहियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का एक आदेश दे दिया। उस समय हवलदार मेजर चंद्र सिंह गढ़वाली अपनी जान और भविष्य की परवाह किए बिना बड़ी कड़कती आवाज में उन्होंने चिल्लाया और हुक्म दिया, गढ़वाली सीज फायर, गढ़वाली हम निहत्थों पर गोली नहीं चलाते। सैनिकों ने उनकी बात मानी और बंदूकों की नाल को नीचे कर लिया। ऐतिहासिक इनकार के बाद ब्रिटिश हुकूमत को तो उन्होंने हिला दिया। इसके बाद उन पर कोर्ट मार्शल चला, उम्र कैद की सजा हुई, 14 वर्ष उन्हें जेल में बिताने पड़े। बाद में महात्मा गांधी ने उनकी निष्ठा और साथ

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ही ये गीत, और इस गीत को संगीतबद्ध किया था आरडी बर्मन ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम, और चलिए अगला गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में।

हमें भेजा था आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मिराज जहानी। हमने आपको सुनवाया आपके पसंद का ये गीत और कार्यक्रम में मेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है जिले की

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में हमने सुनाई आपको एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमने ये सीखा कि कभी कोई छोटा बड़ा पत्थर हमारे रास्ते में आए तो उसे हम खुद हटा लेंगे, ना कि हम दूसरों को उस बात के लिए कोसेंगे, है ना। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

हम सुन रहे थे ये गीत भाग मिल्खा भाग फिल्म से, श्रेया घोषाल और जावेद बसीर ने इसे गाया। प्रसून जोशी के बोल हैं और शंकर एहसान लॉय का संगीत है। हम आज का दिवस यानी 1 अक्टूबर का दिवस बड़ी प्रसन्नता के साथ मना रहे हैं, क्योंकि आज एक और बड़ा प्यारा सा दिवस है, वह है मिलिट्री नर्सिंग दिवस। और आज हुई थी मिलिट्री नर्सिंग की स्थापना। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की स्थापना का दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह 1926 को भारतीय सेना के तहत एक स्थायी नर्सिंग सेवा की औपचारिक स्थापना की गई थी, जिसे उस समय इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का नाम दिया गया था। यह इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस 1 अक्टूबर 1926 से आरंभ हुई। इसका आदर्श वाक्य है सर्विस विद अ स्माइल, यानी मुस्कुराते हुए अपना कार्य करना। महत्व की बात यह है कि भारतीय सशस्त्र बलों की सबसे पुरानी और पूर्णतः महिला अधिकारी कोर में से एक संस्था यह है, जो युद्ध में और शांति में दोनों समय सैनिकों और उनके परिवारों की चिकित्सा की सेवा के लिए समर्पित रहती है। तो हमारी ओर से मिलिट्री नर्सिंग दिवस पर मिलिट्री नर्सिंग दिवस में काम करने वाली प्रत्येक महिला को, अब तो पुरुष भी उसमें होंगे, उन सभी को बहुत सारी बधाइयां और धन्यवाद सेवाओं के लिए।

और ए आर रहमान के संगीत के साथ हम लोग कई बार कई लोगों को देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि ये इंसान, इसका व्यवहार ऐसा ही होगा और इसने ऐसे कपड़े पहने हैं तो ये गरीब ही होगा। अब एक छोटी सी घटना घटी कि एक बालक का आइसक्रीम लेने के लिए गया और वहां पर पहुंचा तो उसने पूछा कि सबसे सस्ती आइसक्रीम कौन सी है, तो उसने कहा 50 रुपए वाली। अब ये जो महिला थी वो उसको आइसक्रीम देने के लिए खड़ी हुई, तो उसने कहा कुछ और है जो इससे सस्ता है, तो उसने कहा हाँ एक 35 रुपए वाली है। इस बार उसका रवैया थोड़ा कड़क था और उसने उस कड़कता के साथ उस बालक को कहा हाँ 35 रुपए की है, चाहिए तो लो नहीं तो जाओ यहां से। उस बालक ने चुपचाप उस आइसक्रीम को ले लिया, आइसक्रीम ले रहा है, खा रहा है, वो महिला उसे देख रही है और बार बार थोड़ा चिढ़ भी रही है, लेकिन उस चिढ़न के बाद उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव आ जाता है। कारण, जब वह बालक उस महिला को उस आइसक्रीम का पैसा देने आता है तो वह उसे 50 रुपए ही देता है, कहता है 35 रुपए आइसक्रीम के और 15 रुपए हमारी तरफ से आपके लिए। वह महिला निशब्द हो जाती है, कुछ कह नहीं पाती है। इसीलिए जय कहते हैं कभी किसी को जज ना करें, कभी किसी को किसी की बात किसी को लेकर निर्णयात्मक रूप से ना पहुंचे, पहले समझें, जाने, विचारें। आज के चित्रलोक में बस इतना ही, आइए सुनते हैं ये गीत।

हम सुन रहे थे दम लगा के हईशा फिल्म से मोनाली ठाकुर की आवाज में वरुण ग्रोवर के बोल और अनु मलिक के संगीत के साथ यह गीत आज्ञा दीजिए कार्यक्रम चित्रलोक से। नमस्कार।

भारत का सबसे लोकप्रिय रेडियो चैनल विविध भारती, आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
0: ऐसी अद्भुत यादें।

जिसने भी सचिन देव बर्मन का संगीत सुना वो उस संगीत के माधुरी में भीग कर वाह कर उठा। दशकों पहले रचा गया उनका संगीत आज भी जवां है, हसीन है।

0: प्यार के मंजिल।
1: हिंदी और बांग्ला की 100 से भी अधिक फिल्मों के लिए संगीत सृजन करने वाले सचिन देव बर्मन संगीतकार बनने से पहले कोलकाता रेडियो स्टेशन पर गाया करते थे। उनकी गायी रचनाओं पर बांग्ला लोक संगीत और भारतीय सुगम शास्त्रीय संगीत का प्रभाव झलकता था। सन 1932 में रिलीज हुआ था सचिन देव बर्मन की गायी रचनाओं का पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड। सचिन देव बर्मन का जन्म 1 अक्टूबर सन 1906 को कोमिला में हुआ था। उनके पिता नवद्वीप चंद्र देव बर्मन और मां निरुपमा देवी का संबंध राजघराने से था। सचिन देव बर्मन अपने सभी भाइयों में सबसे छोटे थे। कोमिला के विक्टोरिया कॉलेज से बीए करने के बाद सचिन देव बर्मन ने कोलकाता यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की। 1925 से 1930 के बीच उन्होंने गायक मन्ना डे के चाचा केसी डे से संगीत की शिक्षा ली और कालांतर में भीष्म देव चट्टोपाध्याय से। इसके बाद संगीत जगत के कई और उस्तादों से संगीत सीखा, जिनमें उस्ताद बादल खां और उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब प्रमुख हैं। गायक के रूप में बांग्ला में उन्होंने 131 गीत गाए। म्यूजिक कंपोजर के रूप में उनकी यात्रा शुरू हुई थी बांग्ला नाटक सती तीर्थ और जननी से। सन 1937 में उन्हें पहली बार बांग्ला फिल्म राजगीव में संगीत देने का अवसर मिला। सन 1933 में उन्हें यहूदी की लड़की में पहली बार गाने का मौका मिला, लेकिन किसी कारण से उनके गाए गीत को रद्द कर वही गीत पहाड़ी सान्याल से गवाया गया। सन 1944 में सचिन देव बर्मन फिल्मिस्तान के शशधर मुखर्जी की सलाह पर मुंबई आ गए। शशधर मुखर्जी ने सचिन देव बर्मन को अशोक कुमार अभिनीत फिल्म शिकारी और फिल्म 8 दिन में संगीत देने के लिए कहा था, लेकिन उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला सन 1947 में आई फिल्म दो भाई में।

0: सन 1949 में फिल्मिस्तान के बैनर तले सचिन देव बर्मन के संगीत से सजी उल्लेखनीय फिल्म आई शबनम, जिसके इस गीत ने उन दिनों धूम मचा दी थी।
1: ये दुनिया रूप की चोर, ये दुनिया रूप की चोर, बचा ले मुझे बाबू, बचा ले मुझे।

0: बंगाली धोती ढीली ढाली, रास्ते में मिला एक बंगाली, दर्शन का अभिलाषी। वो कहने लगा
1: क्या?
0: वो कहने लगा जल खाबे रसगुल्ला खाबे, और कहने लगा हम

बीच में एक समय ऐसा भी आया जब सचिन देव बर्मन का मुंबई के फिल्म जगत से मोह भंग हो गया था और वो कोलकाता वापस लौट जाना चाहते थे। शुक्र है ऐसा नहीं हो पाया और सचिन देव बर्मन मुंबई में ही रुक गए भविष्य की कालजयी धुनों

देव आनंद अभिनीत नवकेतन की जिन अन्य मशहूर फिल्मों में सचिन देव बर्मन ने संगीत दिया उनके नाम हैं टैक्सी ड्राइवर, 9-2-11, काला पानी, मुनीम जी और पेइंग गेस्ट।

0: नहीं।
1: देव आनंद और वहीदा रहमान अभिनीत फिल्म काला बाजार में भी सचिन देव बर्मन ने सुमधुर संगीत दिया। इस फिल्म के गीत आज भी बेहद लोकप्रिय हैं।

0: खोया क्या।
1: फिल्म गाइड देव आनंद और वहीदा रहमान के शानदार अभिनय, विजय आनंद के कसे हुए निर्देशन, शैलेंद्र के गीतों और सचिन देव बर्मन के सुरीले कालजयी संगीत के लिए आज भी भारतीय सिनेमा की अग्रणी फिल्मों में शामिल है।

0: भारतीय सिनेमा के महान फिल्मकार बिमल रॉय के साथ भी काम करते हुए सचिन देव बर्मन ने अपने संगीत सृजन की यादगार मणियों का योगदान दिया। ये फिल्में हैं देवदास, सुजाता और बंदिनी।
1: माझी

कालांतर में सचिन देव बर्मन ने बरस दर बरस देव आनंद अभिनीत कुछ और फिल्मों के लिए तैयार किया अपना मधुर संगीत। ये फिल्में हैं बंबई का बाबू, तेरे घर के सामने, तीन देवियां, ज्वेल थीफ

सन 1969 में आई सचिन देव बर्मन के संगीत से सजी फिल्म आराधना, इसी फिल्म से उदय हुआ राजेश खन्ना के रूप में भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार का।

0: मेरा मन।
1: प्रेमनगर, सगीना, चुपके चुपके, सजा, नौजवान, बाजी, हाउस नंबर 44, 16 साल, लाजवंती, चलती का नाम गाड़ी, बात एक रात की, डॉक्टर विद्या, जिद्दी, इश्क पर जोर नहीं, नया जमाना और गैम्बलर। 31 अक्टूबर सन 1975 को मुंबई में सुरों के इस साधक ने अपनी अंतिम सांस ली।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार और गायक सचिन देव बर्मन पर। आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अनु मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।

0: दोस्तों नमस्कार। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज हमारे बीच हिंदी साहित्य के ऐसे रचनाकार उपस्थित हैं जिनकी रचनाओं में कहानी सिर्फ कही नहीं जाती बल्कि दृश्य की तरह हमारे सामने घटित होती है। मनोज रूपड़ा समकालीन हिंदी साहित्य के चर्चित कहानीकार और उपन्यासकार हैं। उनकी रचनाओं में भाषा की सादगी है और साथ साथ गहरी संवेदना, सामाजिक यथार्थ और दृश्यात्मकता विशेष रूप से दिखाई देती है। आखिरी सीन जैसी कहानी और प्रतिसंसार जैसे उपन्यास में उनका सिनेमाई लेखन पाठक को शब्दों के माध्यम से दृश्य देखने का अनुभव कराता है। उनकी रचनात्मक दुनिया में इंसान, समाज और उसके भीतर चलने वाले द्वंद बहुत सहज लेकिन प्रभावशाली ढंग से सामने आते हैं। आज हमें उनसे उनके लेखन, उनकी रचनात्मक दृष्टि और साहित्य में उनके प्रयोगों पर बातचीत करने का अवसर मिला है। मनोज जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: धन्यवाद। नमस्कार। और विविध भारती के सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
0: आपकी कहानियों में कहीं रेडियो आता है, बड़े वॉल्व वाला रेडियो
1: जी, जी।
0: और कहीं पर संगीत आता है, तो संगीत की बातें तो हम करेंगे बाद में, लेकिन हम रेडियो की बात जानना चाहते हैं कि रेडियो से कैसा लगाव है। और एक जो आपकी कहानी है टावर ऑफ साइलेंस, इसमें कहीं रेडियो भी है और साथ में मुंबई भी है और मुंबई में है आप और रेडियो स्टेशन पर बैठे हैं, तो ये अपने एहसास साझा कीजिए।
1: जी, मुझे याद आ रहा है एक इलाका है मुंबई का जहाँ पुराने रेडियो के अब भी, मतलब अब तो शायद ना हो, उसको सुधारने वाले उसके मैकेनिक होते थे। तो उस दुकान में मैं पहुंच गया, वहां बहुत बड़े बड़े रेडियो थे वॉल वाले और इतने खूबसूरत उसके कैबिनेट, तो देखकर मेरी इच्छा हो गई कि मैं उसमें से एक दो रेडियो खरीद लूं।
0: क्या बात है।
1: लेकिन उसने कहा कि आप लाख रुपया देंगे तो भी ये रेडियो आपको नहीं मिलेगा।
0: अरे
1: जबकि वो सब बंद पड़े हुए रेडियो थे।
0: जी जी।
1: लेकिन उन रेडियो के जो मालिक थे
0: जी।
1: वो इतने बड़े रेडियो प्रेमी थे कि वो चाहते थे कि किसी भी तरह से फिर से ये रेडियो में आवाज आनी शुरू हो जाए।
0: अच्छा।
1: वो क्योंकि वो वॉल वाले रेडियो थे और वो बढ़ने बंद हो चुके थे, तो उनकी ये कोशिश थी कि कहीं से भी वॉल लेकर आओ, तब तक ये रेडियो तुम्हारे यहाँ पड़े रहेगा। तो इतने पुराने मतलब प्रेमी थे रेडियो के लोग, और मैं तो बहुत पुराना प्रेमी हूँ रेडियो का। विविध भारती बरसों से सुनता आ रहा हूँ, बीबीसी लंदन सुनता था, और सिर्फ गीत संगीत ही नहीं सुनता था, दूसरे जो कार्यक्रम आते थे महत्वपूर्ण रेडियो के, रेडियो नाटक का बहुत शौकीन रहा हूँ मैं, इसलिए मैं आपकी जो एक धारावाहिक चल रही है
0: गीतों
1: भरी कहानी, उसको बहुत ध्यान से सुनता हूँ, क्योंकि मुझे रेडियो आर्टिस्ट की आवाज शुरू से बहुत पसंद रही
0: है। क्या बात है।
1: जी।
0: और आपकी प्रतिक्रिया भी मिलती रहती है कहानियों पर, खासतौर से गीतों भरी कहानी पर। तो रेडियो से आपका प्रेम पहले से ही आपने बताया है। हम लिखने के बारे में जानना चाहते हैं, ये लिखने का सफर आपका कैसे शुरू हुआ, कहाँ से आपने शुरुआत की?
1: शुरुआत इस तरह से हुई कि 17 साल की उम्र का जब मैं था
0: जी,
1: तो एक मैंने थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन किया था, 7 दिन का वो वर्कशॉप था, और रायपुर आकाशवाणी के निदेशक उस समय थे मिर्जा मसूद
0: जी, जी।
1: वो उस ड्रामा प्रशिक्षण केंद्र जो था उसके वो प्रशिक्षक थे, तो मिर्जा मसूद से मैं पहले से प्रभावित था उनकी आवाज से, उनके और बहुत अच्छे प्रोड्यूसर भी थे वो
0: जी।
1: कई अच्छे कार्यक्रम उन्होंने किए थे, तो वो वर्कशॉप मैंने ज्वाइन किया। वहां कुछ लोग ऐसे मिले जो पढ़ने लिखने वाले थे, कला की दूसरी विधाओं से जुड़े हुए थे, उसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण शख्स थे वहां जो उसके निर्देशक थे, क्षितिज रंग शिविर नाम था उस संस्था का, उसके जो निर्देशक थे वो राम हृदय तिवारी। उनको जब मालूम पड़ा कि मैंने बहुत पहले स्कूल छोड़ दी है और मेरी पढ़ाई लिखाई उस तरह से औपचारिक है नहीं, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि तुम ठीक है, स्कूल छोड़ गई कोई बात नहीं
0: जी।
1: स्कूल से बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है, स्कूल का जो पाठ्यक्रम हो तो निर्धारित पाठ्यक्रम होता है
0: जी,
1: लेकिन स्कूल के बाहर ज्ञान की बहुत बड़ी दुनिया है।
0: क्या बात है।
1: तो उन्होंने मुझे लाइब्रेरी का सदस्य बनाया।
0: अच्छा।
1: और वो ये कहते थे कि तुम अखबार रोज पढ़ो और अखबार में संपादकीय को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए खबरों के अलावा।
0: जी, जी, जी।
1: फिर वो बहुत सारी पत्रिकाएं मुझे ला कर देते थे और उस तरह से पढ़ने में मेरी रुचि बढ़ी। फिर जब वो एक संपादक के नाम पत्र नाम का एक कॉलम आता था देशबंधु नाम के अखबार में, एक बार मैंने उसमें एक चिट्ठी लिखी, एक बिल्कुल सामान्य जो पाठक होता है अखबार का, उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो किसी मोहल्ले की किसी समस्या पर एक छोटी सी मेरी चिट्ठी थी और थोड़ी लंबी हो गई थी
0: जी, जी।
1: आप लोग सब जानते हैं मैं लंबी कहानी का लेखक हूँ, वो चिट्ठी भी लंबी हो गई थी। वो चिट्ठी तिवारी जी ने पढ़ी तो बोले यार जो तुमने जो लिखा है उसमें कहानी है, यानी वो सिर्फ एक खबर नहीं है, एक चिट्ठी नहीं है, तुम्हारा लिखने का जो ढंग है उससे ऐसा लगता है कि तुम कहानी लिख सकते हो।
0: अच्छा,
1: तो पहली बार ये कोई प्रेरित करने वाला आदमी मिला जिसने कहा कि तुम कहानी लिख सकते हो। फिर मैंने कोशिश की लिखने की कहानी, और पहले बहुत कहानियां पढ़ी, पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि नहीं कुछ अलग हिट लिखना है। तो दफन कहानी जो लिखी मैंने वो 3 साल में लिखी,
0: 3 साल में एक
1: तीन, हाँ 3 साल में एक। मैं ये चाहता था कि पहली कहानी जो आए तो मैं पूरी तैयारी के साथ आए।
0: क्या बात है।
1: और उसमें बहुत मैंने मेहनत की, उसके बहुत सारे ऐसे पहलू थे जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैं जा जा कर लोगों से मिलता था। उसमें कब्रिस्तान का दृश्य है, तो कब्रिस्तान में क्या होता है, उसमें जनाजे की नमाज कैसे पढ़ी जाती है,
0: क्या बात है,
1: ये सब जानकारी मुझे नहीं थी। तो मैं कब्रिस्तान जाता था और वहाँ के जो नमाज पढ़ाते जो थे उनसे मिल करके फिर मैंने उनसे लिखित रूप में लिया, ये इस समय ऐसा पढ़ा जाता है, इस समय ये कलमा पढ़ा जाता है, उस तरह से वो कहानी बनी। शुरुआत इस तरह से हुई।
0: इतनी रिसर्च करनी चाहिए।
1: मैं रिसर्च उस तरह से देखो, मैं मतलब पढ़ करके, किताबें पढ़ करके या इंटरनेट से या इस तरह से चीजों से रिसर्च नहीं करता, लेकिन मैं मौके पर जाता हूँ और वहां भले मैं किसी रिपोर्टर की तरह नोट ना लूं, लेकिन उस माहौल में जाकर के गहरी सांस लेना भी काफी होता है।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: उससे वो पूरा माहौल जो ना आपके भीतर अपना एक रास्ता बनाता है।
0: और वो आपकी ये दृश्यात्मक बातें आपकी कहानी में नजर आती हैं, और ये प्रेरणा की बात है हम नए लेखकों के लिए जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, लेखन की दुनिया में आ रही है, तो उन्हें ये बात हमें लगता है नोट करने लायक है कि अगर आपको कहानी लिखनी है किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर, तो उसमें डूबना चाहिए, उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए। मैं भी समृद्ध हुई इस बात से
1: जी।
0: तो अगली कहानी में मैं ये ध्यान रखूंगी। और ये बातें नजर आती हैं आपकी कहानियों में, टावर ऑफ साइलेंस एक ऐसी कहानी है आपकी जो बहुत चर्चित है और बहुत डीप में लिखी हुई, तो इसमें जो एक कैरेक्टर है टेम्पटन दस्तूर, ये कहाँ मिले आपको, कैसे ढूंढा आपने?
1: ये बम्बई का ही है और इसमें भी देखो हमारे धोबी तालाब मरीन लाइंस के बीच में हमारे मामा की दुकान है मिठाई की।

0: और वो उस तरह से कहानी में तो चीजें बदलती भी है। फिर अब सिर्फ करेक्टर का सवाल नहीं होता, कहानी में लोकल का भी बहुत महत्व होता है।
1: बिल्कुल,
0: वो पूरा जो लोकल है, जिसको हम बॉम्बे का जो लैंडस्केप बोलते हैं, वो इलाका वही है। और वो पत्थर की इमारतों का जो पूरा इलाका है, उसमें मुझे हर जगह एक कहानी छुपी हुई दिखती है, क्योंकि सब इमारतें 100-150 साल पुरानी हैं।
1: जी।
0: तो कितनी पीढ़ियां उन इमारतों में से गुजरी होगी और कितनी कहानियां उसमें बनी होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो ये एक लोकल था। और फिर मुंबई से मेरा नागपुर जाना हुआ, तो नागपुर में इम्प्रेस मिल थी, उस इम्प्रेस मिल को मैंने अपने सामने डिमोलिश होते हुए देखा। तो 125 साल पुरानी जो चिमनी थी इम्प्रेस मिल की, कुछ लोग चाहते थे कि उसको हेरिटेज के रूप में रखा जाए, क्योंकि टाटा की ये मदर कंसर्न थी इम्प्रेस मिल, और उस इलाके की भी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के आर्थिक रीढ़ की हड्डी थी। उस मिल के कारण बहुत बड़ा एक आर्थिक परिवर्तन हमारे देश में आया। तो लोग चाहते थे कि उस चिमनी को एक हेरिटेज के रूप में रखा है, लेकिन ये संभव नहीं होता। जब वो चिमनी गिराई गई, तब पहला बीज मेरी कहानी में आया। तो मैंने मतलब फिर दोनों को रिलेट किया, लोकल को, एक यहाँ का इम्प्रेस मिल का लोकल था और एक बॉम्बे का ये वाला लोकल था, फिर उसके जो करेक्टर हैं। तो फिर चीजें मिलती गई और कहानी आगे बढ़ती गई उसी तरह से।
1: जी, तो वैसे भी आपकी कहानियों में शब्दों के साथ साथ हम आंखों से कहानी को देखते चलते हैं, ये आपकी खासियत है। और एक तो लंबी कहानी लिखने की, जो आपने खुद भी कहा कि लंबी कहानी लिखते हैं, तो क्या ये सायास लिखते हैं लंबी कहानी, या अपने आप लिख जाती है
0: कहानी? लिखते समय कभी भी ना ये नहीं सोचता मैं कि इसका अंत कहाँ होगा, और बहुत कोई निर्धारित और निश्चित अंत मेरे दिमाग में नहीं होता।
1: बिल्कुल, टर्निंग पॉइंट के बारे में सोचते हैं, द्वंद के बारे में सोचते हैं, या वो भी लिखा
0: नहीं उस तरह से, मतलब किसी एक पहलू पर नहीं सोचता मैं। और मेरी ये कोशिश होती है हमेशा कि मेरे कहानी के जो किरदार है वो खुद अपनी बात कहे, मैं उन पर अपने विचार न ला दूं।
1: बिल्कुल।
0: या एक लेखक कहीं उसमें मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि ये लेखक अपनी बात कह रहा है।
1: जी जी।
0: तो किरदारों को मैं अपनी तरह से खेलने का पूरा मौका देता हूँ, और मेरी इस छूट के कारण वो कहानी लंबी हो जाती कई बार।
1: जी जी। और वो पात्र बोलते हैं, संवाद करते हैं पाठकों से, और पाठक के दिल में कहीं पैठ बना लेते हैं। अब हमें लगता है संगीत आपसे बहुत जुड़ा हुआ है, संगीत का दामन थाम लेते हैं जब बातचीत थोड़ी आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर हम कौन सा गाना आपकी पसंद का सुनवाएं अपने श्रोताओं?
0: पहली मतलब जो मेरी पसंद है, एक गाना मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि उसमें सैक्सोफोन की आवाज है। उस गाने का नाम है जिंदगी कैसी है पहली।
1: जी।
0: और उसमें आप ध्यान दीजिए कि सैक्सोफोन कितनी खूबसूरती से बजा है।
1: जी, तो सुनते हैं ये गाना।

0: मनोज जी ने अपने श्रोताओं को बता दें कि मनोज जी वाद्यों के बहुत शौकीन हैं, संगीत के बहुत शौकीन हैं जहां तक हमें जानकारी है, और इस गाने में सैक्सोफोन का खूबसूरत प्रयोग हुआ है। आपकी संगीतिक कथा त्रयी है, तीन कहानियों का एक संग्रह है अनुभूति, जिसमें तीन कहानियां साज ना साज और आमाजगा और अनुभूति, तीनों कहानियां मैंने पढ़ी हैं।
1: अच्छा,
0: और तीनों में संगीत के सुर हमें दिखाई देते हैं और खास तौर से वाद्य। तो इन जो तीनों कहानियां हैं, तीनों कहानियों के बारे में आप बताइए कि पहले तो साज ना साज में शायद सैक्सोफोन है, तो ये सैक्सोफोन ने आपको यहाँ पर कहानी लिखने के लिए बुलाया या आपको बुलाया सैक्सोफोन ने, क्या थी?
1: दोनों मिली जुली चीजें हैं। मैं एक बार गोवा घूमने गया था अपने दोस्तों के साथ, वहाँ पणजी में एक बड़ा ड्रामा फेस्टिवल हो रहा था, उसमें हबी साहब का भी एक प्ले था, रमेश तलवार साहब का भी प्ले था, गिरीश कर्नाड साहब का भी एक प्ले था और रतन थियम का भी था। तो मैंने अपना घूमना कैंसिल कर दिया, दोस्तों को अपने रास्ते पर भेज दिया और मैं इस ड्रामा फेस्टिवल में नियमित रूप से नाटक देखता रहा। एक शाम जब शो खत्म हुआ तो मैं समुद्र किनारे गया, एक रॉक बीच था वो पथरीला, उस पर एक बैठा हुआ था बीटनिक कलाकार, लगभग 55 के आसपास की उम्र होगी, लंबे बाल, अधपके सफेद बाल, और वो सैक्सोफोन बजा रहा था डूबते हुए सूरज को देखते हुए। समुद्र का किनारा है, डूबता हुआ सूरज और सैक्सोफोन की आवाज, इतना प्रभाव उसका मुझ पर पड़ा। एक तो वो पूरी दृश्यात्मक था, यानी वो सिर्फ उसके बजाने का असर नहीं था, जिस तरह से समुद्र को या सूर्य को संबोधित होकर के बजा रहा था,
0: क्या बात है।
1: तो प्रकृति, संगीत और ये सब चीजों का जो मिला जुला प्रभाव था वो मेरे अंदर बहुत गहराई तक चला गया। उस सैक्सोफोन को लाइव पहली बार मैंने उस तरह से सुना, फिर कई सालों तक तो वो मेरे दिमाग में था कि ये सैक्सोफोन है, इसके ऊपर कुछ करूंगा। बंबई आना हुआ उसके बाद मेरा, लगभग 10 सालों के बाद
0: जी।
1: बंबई में घाटकोपर में मेरी नमकीन की फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के बाजू में एक चाल थी, वहां कुछ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट रहते थे साज बजाने वाले, जो फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक देते थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर एक विली भाई हमारे परिचित, हमारे सेल्समैन थे परेल में, उनके बहुत सारे रिश्तेदार जो थे वो साज बजाने वाले इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे सब, और ये सब फिल्मों में बजाते थे। तो ये मालूम हुआ कि घाटकोपर के चौल में जो रहते थे वो सब उत्तर प्रदेश के थे और ढोलक, शहनाई, तबला, इस तरह के वाद्य बजाते थे, और बरेल में जितने रहते थे वो सारे गोवा से आए हुए थे
0: जी जी।
1: और ज्यादातर वेस्टर्न म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल जो बजाए फिल्मों में उसके बजाने वाले हैं वो लगभग गोवा से आए हुए सब। तो उनसे मिलने के बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि सिंथेसाइजर आने के बाद और नई जो टेक्निक आई संगीत में, उसके कारण बहुत सारे इस तरह के साजिंदों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया कि अब उनको काम मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आजीविका में बड़ा फर्क आ गया। तो उसमें फिर ये ख्याल आया कि एक कोई सैक्सोफोन बजाने वाला है और उसने कई माइलस्टोन पीसेस दिए हैं कई फिल्मी गानों में, लेकिन अब उसका कोई नाम नहीं है। हालांकि मैं वैसा कोई एतराज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को किसी भी, हम संगीत निर्देशक को जानते हैं कि किस फिल्म में किसने संगीत दिया, लेकिन उसमें कोई खास धुन किस कलाकार ने बजाई
0: बिल्कुल नहीं बताया जाता,
1: ये हमको नहीं मालूम होता है हमेशा। तो एक तो उसको कभी भी उस तरह से मतलब सार्वजनिक कोई पहचान उसको नहीं मिली, और दूसरा उसका रोजगार भी चला गया। उस दर्द को मुझे लगता था कि केंद्र में लेना चाहिए कहानी में, तो वो एक सिलसिला बना फिर साज ना साज का।
0: और फिर उसके बाद सारंगी के मद्देनजर आपने आमाजगाह लिखी
1: जी,
0: जिसमें सारंगी का खूबसूरत प्रयोग है, तो कोई सारंगी वादक भी आपको मिला था ऐसे?
1: सारंगी वादक वैसे नहीं मिला, लेकिन सारंगी के बारे में एक बार मैं पढ़ रहा था
0: जी,
1: और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि सारंगी और सैक्सोफोन ये दोनों बड़े बदनसीब साज थे
0: जी।
1: वो इस लिहाज से कि सैक्सोफोन को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा था उसमें बहुत सालों तक कोई जगह नहीं मिली। सैक्सोफोन जो नाइट क्लब होते थे वहां बजता था, बाद में धीरे धीरे और लोग भी बजाने लग गए, फिर बाद में वो ऑर्केस्ट्रा में भी आया। ठीक वैसे ही सारंगी भी,
0: सारंगी भी और दुख में
1: और उसको भी शास्त्रीय संगीत के विधिवत मंच में आने में सारंगी को भी बहुत समय लगा। तो ये दोनों साज की भी अपनी एक मार्मिक कहानी है, उसके बजाने वाले की तो हो गई अलग कहानी, लेकिन ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी भी अपनी एक बड़ी मार्मिक कहानी है।
0: बिल्कुल।
1: तो सारंगी का जब मैं ऐसा पढ़ रहा था कि इस्लाम मतलब ये कहां से आया, अच्छा उसकी आवाज इतनी सुरीली है, इतनी खींचने वाली आवाज है सैक्सोफोन की भी और सारंगी की भी, फिर ये ख्याल आया। और दूसरा जो उस कहानी का जो बीज जो पड़ा, कुमार गंधर
0: जी, पंडित कुमार गंधर,
1: हाँ, उनके जो पुत्र हैं मुकुल शिव पुत्र, तो जैसा मैंने लोगों से सुना जो उसके बारे में खबर आई, तो उनके उस पीरियड में उस फेज में वो किस तरह की परिस्थिति में थे उसको देख करके मुझे लगा कि मैं अपने कहानी का जो नायक है उसको उस तरह से ले सकता हूँ। बल्कि सिर्फ आवाज का ही नहीं, इसका जो सितार वादक है अनुभूति का, वो भी लगभग एक तरह के मानसिक अवसाद की स्थिति में चले जाता है। तो एक कलाकार के जीवन में जब कहीं बड़ा अवसाद आता है, कहीं बड़ी जब उदासी आती है, और कई बार जब बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर उसको घेर लेती है, तो उसका मानसिक संसार कैसा होता है, ये मेरे जहन में था, और इसी वजह से ये दोनों कहानी की रचना हुई
0: और बहुत चर्चित हुई। और ये अनुभूति कथा संग्रह में तीनों कहानियां शामिल हैं। हम जानना चाहते हैं मनोज जी कि इन तीनों कहानियों में वाद्य यंत्र और कथा के बीच आपने रिश्ता कैसे स्थापित किया, क्योंकि पात्रों के साथ कहानीकार का भी एक नाता जुड़ जाता है।
1: तो असल में देखो, जो वाद्य बजाने वाला कोई भी जो शख्स है, उसका जो भी जीवन हो तो मानवीय जीवन है, और उसके भी अपने रिश्ते हैं, उसके जीवन में भी उतार चढ़ाव है, तो वो जीवन का उसका उतार चढ़ाव और उसके रिश्ते, अच्छा दिक्कत एक ये आती है एक सामान्य आदमी में और एक कलाकार के जीवन में, खासतौर से इंस्ट्रूमेंटल जो प्लेयर होते हैं वो थोड़े ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, मुझे तो लगता है कि वो राइटर से भी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये इनकी जो ओवर सेंसिटिविटी है वो कभी कभी उनके जीवन में कुछ ऐसे मोड़ ले आती है जो मेरे नजर में तो एक कहानी है
0: जी,
1: है ना, उनके जीवन के उस तरह के जो उतार चढ़ाव है, उसके जो मोड़ है, वो कहानी वहीं से बनती है
0: जी।
1: तो मैं उनके संगीत और उनके जीवन दोनों को मिला करके कहानी बनाता हूँ
0: जी, और एक उम्दा कहानी बनती है। यहाँ हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक लिटरेचर प्राइज की टीम ने एक फिल्म बनाई थी आपके उपन्यास पर, जिसे जेसीबी शॉर्ट में कहते हैं, वो काले अध्याय पर, काले अध्याय का जब अनुवाद आया था
1: जी जी,
0: तो ये क्या कहानी है, कैसे किसी के मन में?
1: डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं थी असल में, जो भी लेखक शॉर्ट लिस्ट होते हैं,
0: शॉर्ट फिल्म थी, कोई
1: शॉर्ट फिल्म थी उस लेखक के जीवन परिचय
0: जी जी।
1: तो वो हम पांचों लेखकों के ऊपर बनी थी, जो पांच लेखक उस अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे
0: जी,
1: तो वो पहले से डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं उसकी, और जब किसी को अवार्ड मिलता है तो फंक्शन के दिन उसको दिखाया जाता है
0: जी जी। तो वो फंक्शन के दिन दिखाने के
1: नहीं,
0: लिए
1: मैं, मुझे अवार्ड नहीं मिला था जिनका,
0: पर आपकी किताब शामिल थी उस,
1: किताब शामिल थी मेरी
0: जी, तो उस पर एक फिल्म बनाई गई थी और लोगों तक पहुंची, हमने भी देखी वो फिल्म, बेहतरीन।
1: वो असल में जेसीबी की एक विज्ञापन फिल्म थी, वो अपने चुने हुए लेखक का बहुत अच्छे से प्रचार करते हैं, उनकी एक टीम है, और अपने चुने हुए लेखक को, जो क्योंकि उनको लगता है कि विनर चाहे कोई भी हो, जो पांच लेखक शॉर्ट लिस्ट में आए उनके लिए वो सब समान
0: जी। बिल्कुल सही बात है। बात फिल्मों की चली है तो यहाँ पर एक फिल्मी गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपकी पसंद का?
1: बहुत प्यारी वायलिन की धुन है उस गाने में, एक प्यार का नगमा है,
0: मौजों की रवानी,
1: मौजों की रवानी है,
0: शोर फिल्म का गाना है, सुनते हैं यही गाना
1: जी।

0: अब बात फिल्मों की चली है और गाना ये सुनवाया शोर फिल्म का गाना। फिल्मों में आपकी बड़ी गहरी दिलचस्पी है, बातचीत में आप अक्सर फिल्मों का जिक्र करते हैं और कई बार तो ऐसी फिल्मों का नाम लेते हैं जो सुनी भी नहीं है और आपने देखी होती है, उसके बाकायदा किरदार का जिक्र करते हैं। हिंदी सिनेमा के साथ साथ विश्व सिनेमा का जिक्र करते हैं और ये कहा जाता है कि मनोज रोपड़ा बड़े विलक्षण कथाकार के साथ साथ फिल्मों के मर्मज्ञ हैं। तो बताइए इस शौक के बारे में।
1: मैं अपने आप को जो ना फिल्म का मर्मज्ञ या विशेषज्ञ नहीं मानता, मैं फिल्म का समीक्षक भी नहीं हूँ,
0: लोग मानते हैं।
1: मैं अपने आप को फिल्म का एक जागरूक दर्शक मानता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म देखना भी एक कला है।
0: सही बात है।
1: और ये मुझे कब लगा, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। दुर्ग में प्रगतिशील लेखक संघ के साथ जुड़ा था मैं और एक बार मैंने कहा कि मेरी इच्छा से एक कार्यक्रम करवाया जाए, तो हमेशा साहित्यिक गोष्ठियां तो होती थी, मैंने फिल्म पर वो कार्यक्रम रखा और उसमें पूना से सतीश बहादुर साहब को बुलाया। तो सतीश बहादुर साहब बहुत सीनियर मतलब टीचर रहे हैं
0: जी।
1: बहुत सारे जो हमारे आज के दौर के जाने पहचाने जो निर्देशक हैं, प्रकाश झा हैं या और भी, उनके सबके वो शिक्षक रहे हैं। मैंने चिट्ठी लिखी उनको और उन्होंने जवाब दिया कि ये कोई ढंग है चिट्ठी लिखने का?
0: अरे
1: तो मुझे लगा कि कहीं से भी आपने कोई पेज फाड़ लिया और लिख दिया, पहले सिस्टमेटिक तरीके से चिट्ठी लिखना सीखो।
0: अच्छा।
1: तो मैंने जो चिट्ठी लिखी, क्या प्रभाव पड़ा होगा पता नहीं।
0: हाँ।
1: लेकिन मुझे ना वो जानते थे और ना एक छोटा सा शहर दुर्ग, कैसे वो आ जाते, लेकिन वो आए। उन्होंने दो दिन में अपने साथ वो बहुत सारे स्लाइड्स लेकर आए थे, बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप्स फिल्मों की लेकर आए थे और स्क्रीन पर छोटी छोटी फिल्में दिखाकर उन्होंने समझाया कि फिल्म का ग्रामर क्या होता है, उसको कैसे देखा जा सकता है। और उसके बाद बहुत इच्छा मेरी बढ़ गई, मुझे मालूम पड़ा कि पूना में एक कोर्स होता है फिल्म एप्रिसिएशन का, वो एक महीने का कोर्स होता है और उसके लिए कोई बड़ी औपचारिक की जरूरत नहीं होती, कोई भी कर सकता। तो मैं बड़े उत्साह में चला गया वहाँ और वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ा कि उसमें भी ग्रेजुएशन की डिग्री लगती है।
0: अच्छा।
1: तो वहाँ से जो फॉर्म भरने जब गया था तो उन्होंने मुझे लौटा दिया। फिर मैं फिर सतीश जी के कमरे में गया।
0: हाँ।
1: मैंने कहा मेरा तो नहीं हो पाएगा इसमें, क्यों? तो मैंने कहा इसमें तो ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो क्या दिक्कत है? मैं बोला मैंने तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ।
0: हाँ।
1: तुम कहाँ तक पढ़े हो? तो मैंने कहा कि मैं छठवीं

0: ये फिल्म अब वो मेरा चेहरा देखते रह गए। तुम इतनी फिल्मों में इतनी रुचि रखते हो और तुम्हारी कुछ उस तरह की कोई फॉर्मूले एजुकेशन भी नहीं है। तो मैंने कहा लेकिन कुछ कोशिश कीजिए, मेरे लिए कुछ हो सकता है। तो देखो एक काम हो सकता है, पटना में प्रकाश झा 7 दिन का एक वर्कशॉप कर रहे हैं सिनेमा पर, तुम उसमें आ जाओ। तो मैं वहां गया, प्रकाश जी ने चिट्ठी लिखी थी मुझे बुलाऊंगा, उन्होंने कहा होगा, और 7 दिन उनके साथ रहा। उस कार्यक्रम में उन्होंने जिस तरह से सिनेमा को समझाया, उसके बाद मुझे समझ में आया कि शॉर्ट किस तरह से लिए जाते हैं। कोई अगर मीडियम शॉर्ट है तो उसका क्या अर्थ है, कोई एक्सट्रीम क्लोज है तो उसका क्या अर्थ है, कट आ रहा है तो क्या अर्थ है। तो ये शॉर्ट लेने के जो तरीके होते हैं उसमें कहानी होती है। और उसके बाद मेरी रुचि बढ़ती गई और फिर सिनेमा देखना मैंने अलग ढंग से सीखा। अगर मैंने वो क्लास नहीं की होती तो सचित रे की जो एक फिल्म है, बहुत खूबसूरत फिल्म है, चारुलता।
1: अच्छा,
0: चारुलता फिल्म के जो 7 मिनट है उसमें एक भी संवाद नहीं है। 7 मिनट तक फिल्म यूं ही चल रही है बिना संवाद के, और कैमरे का मूवमेंट जो है ना उसको देख करके आपको कहीं पर भी ये नहीं लगेगा कि पात्र जो कहना चाह रहा है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं।
1: जी जी,
0: यानी इतना खूबसूरत एक एक शॉट है कि बिना संवाद के भी हर स्थिति आपको बताते कि वो क्या हो रहा है उसके साथ, बल्कि भीतरी जो मनस्थिति है चारुलता की वो भी बिना संवाद के मालूम पड़ जाता है। ये कितनी खूबसूरती है फिल्म की।
1: आपको फिर वहाँ एडमिशन मिला कि नहीं?
0: नहीं मिला,
1: नहीं मिला।
0: उसके बाद वही पटना जाना पड़ा, पटना में 7 दिन उनके साथ रहा।
1: यहाँ पर मेरे जहन में तो सवालों की आंधी चल रही है, तो मैं क्रम से आपसे पूछती जा रही हूँ कि आपने बताया कि आपने 6ठी क्लास के बाद पढ़ाई नहीं की, पर आपकी कहानियां और उपन्यास पढ़ते हुए तो लगता है कि एक बहुत जरूरत से ज्यादा बौद्धिक इंसान, बहुत जरूरत से ज्यादा पढ़ाई किया हुआ, अध्ययनशील। तो ये क्या कहानी है कि आपने कैसे पढ़ाई कैसे छोड़ी और क्यों नहीं पढ़ी?
0: नहीं, पढ़ाई इसलिए छोड़ दी कि गणित में फेल हो गया था और मुझे लगा कि गणित में कभी
1: पास नहीं हो सकते,
0: पास नहीं हो पाऊंगा।
1: ओके
0: अच्छा, दूसरे सारे जो सब्जेक्ट थे उसमें बहुत अच्छे नंबर थे
1: जी,
0: गणित में नंबर नहीं आते थे। और मैंने टीचर से कहा, एक साखर दांडे नाम की मैडम थी, तो मैंने कहा कि अब मैं छोड़ रहा हूँ स्कूल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कैसे छोड़ दोगे तुम? तो बोले फिर गणित हटा दो गणित अगर नहीं होगा तो मैं पढ़ सकता हूँ
1: जी।
0: तो घर में ऐसा मतलब कोई ऐसा माहौल नहीं था कि
1: प्रेशर नहीं डाला माता पिता ने?
0: हाँ हाँ, हम लोग का परिवार जो है ना व्यावसायिक परिवार है, और अगर लड़के को मिठाई बनाना आता है
1: बस
0: तो बस बहुत हो गया।
1: हाँ,
0: उसको किसी तरह की अपने आजीविका के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है।
1: अच्छा,
0: अच्छा, मेरी जितनी दिलचस्पी कहानी लिखने में लगभग उतनी दिलचस्पी मिठाइयां बनाने में भी। और बचपन में लगभग 12 साल की उम्र में मिठाई का अच्छा कारीगर बन चुका था।
1: अच्छा तो फिर मिठाई बनाना तो खैर आपने सीख लिया, और जाहिर सी बात है कि मिठाई बनाते होंगे तो आपका परिवार खुश रहता होगा, खासतौर से आपकी पत्नी तो मिठाई खाकर तो बहुत खुश होती होंगी। तो जरा आप बात चलिए तो उनका भी जिक्र कीजिए।
0: नहीं, वो भी उसी परिवार से है, मतलब उनका भी जो व्यवसाय था उनके पिताजी का भी, वो भी मिठाई का ही था। और उनके पिताजी ने भी यही देखा कि इसको कितने तरह की मिठाइयां बनाने, उसने पूछा ही नहीं, जबकि मेरी पत्नी अंग्रेजी में है और मैं 6ठी फेल हूँ, तो पूछा भी नहीं कि इसकी पढ़ाई कहाँ तक है।
1: अच्छा,
0: सिर्फ उन्होंने ये देखा कि इसको मिठाइयाँ कितनी बनानी आती है।
1: तो आप पास हो गए मिठाई बनाने में,
0: उसके कारण पास हो गया।
1: नीता जी जो आपकी पत्नी, उन्होंने पास किया कि नहीं?
0: बिल्कुल पास किया होगा।
1: तो मतलब आप उनके लिए मिठाई बनाते हैं घर पर?
0: मैं हर राखी के दिनों में एक मिठाई बनाता हूँ, मोहन थाल, गुजरात की बहुत स्पेशल मिठाई है
1: जी।
0: वो मिठाई मेरे हाथ की बनी हुई सबको बहुत पसंद है
1: जी। क्या बात है।
0: हाँ, सबको बहुत पसंद है। तो वो बहुत जिद करती है, नीता के 4-5 भाई हैं और मेरी भी 4-5 बहनें हैं, तो फिर वो इतनी बनती है कि सबको एक एक बॉक्स मिठाई हर के घर में पहुंच जाती है।
1: क्या बात है, ये बिल्कुल बड़ी दिलचस्प बातें चल रही हैं। और बात मिठाई की चली, मिठास तो संगीत भी घोलता है, तो यहाँ पर एक आपकी पसंद का गाना हो जाए, मीठा सा कोई गाना बताइए।
0: बहुत मीठा, बहुत प्यारा सा गाना है, वो पियानो बहुत खूबसूरती से उसमें बजा है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है
1: जी। साजन बिना सुहागन फिल्म का नाम है, सुनते हैं यही गाना जी।

0: थोड़ी देर पहले बात चल रही थी फिल्मों की कि आपकी फिल्मों में कितनी गहरी दिलचस्पी है और गहरा दखल भी है, मतलब फिल्मों की इतनी सारी जानकारी आपके पास है। आपकी कहानी है आखिरी सीन
1: जी।
0: और एक उपन्यास भी है प्रति संसार, तो ये क्या इस सिनेमाई भाषा का प्रयोग इसमें किया है, क्योंकि उसमें शाब्दिक दृश्य उपस्थित किए गए
1: जी, जी, जी।
0: तो इसके बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: एक मतलब ये ख्याल आया एक बार कि कैमरा चल रहा है
0: जी
1: और जो दृश्य दिख रहे हैं और कैमरे की आंख से मैं अपनी कहानी लिखूं, तो पहले मैंने प्रति संसार लिखा था और उसमें शुरुआत ही कैमरे से है कि दृश्य के ऊपर केंद्रित है और जो घटित हो रहा है उसका मैं शाब्दिक वर्णन कर रहा हूँ। तो उस पूरी फिल्म में ज्यादातर विजुअल्स हैं, लेकिन विजुअल्स और शब्द दोनों एक चीज तो है नहीं। तो मैंने प्रयोग किया था कि मैं दृश्यों को शब्दों में किस तरह से दिखा सकता हूँ। वो प्रयोग बहुत सफल हुआ या नहीं मुझे नहीं मालूम। और ये जो कहानी है आखिरी सीन, इसका जो कथानक है वो मेरे जहन में काफी सालों से था। मैं अक्सर ये सोचता था कि जहां कहीं कोई बड़ी लड़ाई होती है, खासतौर से सीमावर्ती इलाकों में, तो एक तरफ फौज होती है, दूसरी तरफ दुश्मन होते हैं।
0: जी जी
1: ठीक है, पर बीच में कुछ स्थानीय लोग भी होते हैं जिनका उस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं होता
0: जी,
1: लेकिन बहुत बड़ा नुकसान उन्हीं का होता है। तो ये मेरे जहन में था कि जो स्थानीय लोग हैं वो किसी भी बॉर्डर के आसपास का, जितना मैंने बॉर्डर पर एक दो और भी फिल्में देखी हैं, और बल्कि एक तो विशेषांक निकला था ज्ञानोदय का
0: जी,
1: उसमें सारी कहानियां ही वही थी जिसमें सीमावर्ती इलाके के आसपास का लोकेशन था। बॉर्डर जो है वो बॉर्डर में असल में बहुत अलग तरह का जीवन होता है। बॉर्डर में जीने वाले लोग कितने कसम कसमें जीते हैं,
0: बिल्कुल।
1: तो उस पर कई कहानियां हैं और उस पर एक लीलाधर मंडलोई साहब जब ज्ञानोदय में थे तो उन्होंने एक विशेषांक निकाला था और मैंने एक लेख भी लिखा था उसमें। मैंने अलग अलग बॉर्डर के इलाकों के कौन कौन सी फिल्में बनी है, तो ये मेरे जहन में था, लेकिन वो कथानक उसको फॉर्म नहीं मिल रहा था। कभी कभी क्या होता है कि आप कहानी का आपका कंटेंट तो दिमाग में आ गया, लेकिन उसको किस रूप में प्रस्तुत किया जाए वो रूप कभी कभी नहीं मिलता, कंटेंट मिल जाता है। अब वो 2-3 साल तक लगातार चलती रही कसमकस का। मैं पहले एक बार ये प्रति संसार वाला काम कर चुका था तो अपने फॉर्म को दोहराना नहीं चाहता था, लेकिन आखिरी सीन में फिर मुझे लगा कि उस फॉर्म के अलावा दूसरा कोई फॉर्म नहीं हो सकता। तो उस कहानी को भी मैंने सिनेमेटिक भाषा में लिखा है कि जो घटनाएं हो रही है उसमें मैंने फिर ये चरित्र जो रखा वो फिल्म निर्देशक का रखा कि एक निर्देशक है वो एक फिल्म बनाना चाह रहा है
0: जी जी,
1: और उसका व्यक्तिगत जीवन में इतनी परेशानी आ गई कि अब उसका स्टूडियो भी खत्म हो गया, उसका परिवार भी छिन्न भिन्न हो गया और वो फिल्म बना नहीं पा रहा है, तो वो एक मानसिक अवसाद की स्थिति में चला जाता है। और जो फिल्म इस कहानी में मैंने वर्णन

0: या उसको कल्पना में बनाता
1: ओ.
0: यानी वो उसके पास अब कैमरा भी नहीं है, उसके पास अब टीम भी नहीं है, वो पैरालिसिस हो चुका है. अब वो खोए रहता है ख्यालों में और उस ख्याल में वो फिल्म बना रहा है. ये उस कहानी का मैंने फॉर्म तय किया था.
1: कितनी सूक्ष्म संवेदना है इसमें, इस कहानी में. तो क्या ये जो सिनेमाई लेखन जो शिल्प होता है, तो इस शिल्प के लिए क्या अलग से आपको कोशिश करनी पड़ी या स्वतः लिखता चला गया एक नदी की धारा की तरह?
0: वो मुझे ऐसा लगता है कि कहानी की भी अपनी एक भीतरी मांग होती है.
1: जी,
0: हर बार हम कहानी के दृश्य नहीं खड़े करते. कभी वही कहानी भी अपने ढंग से अपने दृश्य खड़ी करते हैं. जैसे आपकी खुद की एक कहानी है, मराठी में शीर्षक है उसका,
1: तुझी में वाट पाते.
0: हाँ हाँ. अब उस कहानी में समुद्र किनारे के रेतीले दशाओं में एक कार फंस गई है.
1: जी,
0: और वो कार जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रही उतनी धसते जा रही है.
1: जी,
0: और उस कार में जो युगल बैठा हुआ है उसको एक बूढ़ी महिला देख रही है, वो जो उसका अतीत है.
1: जी जी.
0: तो वो जो सीन है ना, वो आपने नहीं लिखा है,
1: उस किरदार ने लिखा है,
0: वो कहानी ने खुद क्रिएट किया है. जब कहानी खुद कोई सीन क्रिएट करती है तो लेखक का काम सिर्फ इतना होता है कि उसको बिगाड़े ना.
1: बिल्कुल.
0: कई बार लेखक बिगाड़ देता है दृश्यों को, जब सहज रूप से कोई चीज आती होती है उसको सहजता के साथ लिखने के बजाय अपनी बहुत ज्यादा जो दिमाग लगाने वाला लेखक होता है वो अच्छी कहानी नहीं लिख पाता.
1: बिल्कुल. जो बहुत ज्यादा भाषाई खेल करने लगते हैं, शिल्प को खूबसूरती से सजाने की कोशिश में बिगड़.
0: सहजता से कुछ चीजों को अपने भीतर आने देना चाहिए, जिसको हम मोटे शब्दों में कहे कि आत्मसात करना.
1: यहाँ पर आपका शुक्रिया भी हम अदा कर दें कि आपने इतने ध्यान से कहानी को पढ़ी और इसका जिक्र किया. यहाँ एक गाना सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. बताइए कौन सा गाना सुनवाए.
0: एक बहारों मेरा जीवन भी सवारों, उसमें बांसुरी और सितार का काम बहुत खूबसूरत है.
1: सुनते हैं ये गाना.
0: जी.

0: बात बांसुरी और सितार की आपने की, तो क्या इस पर, सितार पर तो एक कहानी है अनुभूति
1: जी,
0: बांसुरी पर भी कोई कहानी लिखी?
1: अब आ रही,
0: आ रही है।
1: अब वो कहानी नहीं है, वो अब उपन्यास है।
0: हाँ।
1: और लगभग आधा लिखा जा चुका है
0: जी।
1: और मेरी आदत है हमेशा कि मैं लिखने से पहले कई बार बताता हूँ लोगों से, यानी लिखा नहीं है। जैसा आमाजगा कहानी जो थी, वो लिखने से पहले मैंने अपने एक दोस्त थे बसंत त्रिपाठी, दोस्तों के साथ बैठा था, बसंत के साथ उन्होंने, और मैंने वो पूरी कहानी उसको सुनाई, जबकि उसका एक शब्द भी मैंने नहीं लिखा था। ये जो कहानी है बांसुरी की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें मेरा अभी मतलब अभी लिखा नहीं है मैंने। एक बच्चा है जो माँ से बिछड़ गया
0: जी।
1: और वो लोकल मतलब किसी ट्रेन में बैठ के मुंबई पहुंच गया, और वो मुंबई में लावारिस है और इधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है। उसमें एक अपाहिज बांसुरी वाला जो बांसुरी बजा करके भीख मांगता है, उसके साथ उस बच्चे की थोड़ी अच्छी तालमेल हो जाती है, उसके साथ घूमता फिरता है, उसके साथ रहता है। मंदिर के सामने कभी बांसुरी बजाता था, कभी चौपाटी में जाकर के बांसुरी बजाता था, तो उसके साथ रहते हुए ये भी बांसुरी बजाना सीख गया। और कुदरती उसके अंदर कोई गुण था बांसुरी बजाने का, वो जब भी बांसुरी बजाता था आसपास चलते हुए लोग ठिठक के रुक जाते थे
0: जी।
1: तो ये किरदार अभी मेरे जहन में है,
0: लिखना बाकी है।
1: लिखना बाकी है जी।
0: तो इस उपन्यास का हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि जो आपने थोड़ा सा टीजर दिया है, तो हमें ही नहीं, हमारे सभी श्रोताओं को जो पाठक हैं, जो कहानी और साहित्य से प्यार करते हैं, तो शुभकामनाएं इसके लिए। मनोज जी, आपने फिल्मों का जो जिक्र किया, फिल्में इतनी सारी देखी हैं और आपके जहन में इतनी कचोट के साथ अंदर पैठ किए हुए हैं, और कुछ ये जो भाषा का प्रयोग भी किया आखिरी सीन में और प्रति संसार में, तो आपकी क्या तमन्ना है कि आगे चल के आप फिल्मी राइटर बन जाएंगे, फिल्मों में लेखन?
1: फिल्मों पर मैंने लिखना इसलिए भी शुरू किया कि एक समय के बाद जब मैं विश्व की तमाम फिल्में जब देखता था, और उसके बरक्स जब मैं एशियन फिल्में देखता था, एशिया के देशों की फिल्में देखता था, एक समय मुझे ऐसा लगा कि पश्चिम जो है ना, वही सारे पैरामीटर्स बनाता है कि फिल्म कैसी होनी चाहिए। कांस फेस्टिवल में लगभग उसी तरह की फिल्में आती है जिसका मानक पश्चिमी सिनेमा ने बनाया है, तो हर बार उनके चले हुए मानक, उन्हीं के पैरामीटर्स के कारण जो फिल्में बनती थी, और उनके ही सारे फेस्टिवल, उस विश्व के जो बड़े जो फिल्म के फेस्टिवल होते हैं या जहाँ पे उनको बड़ी अवार्ड दिए जाते हैं, उनके मानक के आधार पर ही सारी चीज़ें होती हैं। एशियन फिल्में जो थी वो बहुत उसमें आती नहीं थी। और एक समय ऐसा आया जब उन पश्चिमी फिल्मकारों ने ये तय कर लिया, मतलब ये घोषणा कर दी कि कहानी की जरूरत नहीं है सिनेमा को। बहुत सारे ऐसे प्रयोगवादी डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि ये विजुअल माध्यम है और दृश्य में जो कुछ कहा गया है कैमरे के द्वारा वही फिल्म है, फिल्म को अलग से किसी कहानी की जरूरत नहीं है। तब मैंने सोचा कि बिना कहानी के कैसे फिल्म हो सकती है। उसके बाद मैंने पश्चिम की ऐसी फिल्में जिसमें सिर्फ एलिनेशन था, जिसमें सिर्फ सिनेमाटोग्राफी थी, उसके बरक्स मैंने एशियन फिल्मों पर लिखना शुरू किया। मैं कुछ फिल्मों का नाम लेता हूँ अभी
0: जी, बिल्कुल
1: है ना, उसमें एक अफगानिस्तान की फिल्म है ओसामा
0: जी,
1: उसके बाद एक कुर्दिश फिल्म है ब्लैक बोर्ड्स। ये दोनों फिल्म तो सबको देखनी चाहिए
0: जी जी जी।
1: शिक्षा, और वो भी नारी शिक्षा, उसका कितना महत्व होता है ऐसे देशों में जहाँ बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं स्त्री शिक्षा को लेकर के, ये फिल्म और इन फिल्मों की कहानी। फिर मजीदी की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ हेवन, जफर पनाही की फिल्म है ऑफसाइड। ऑफसाइड का कथानक ऐसा है कि लड़कियां जो है वो फुटबॉल देखना चाहती, फुटबॉल का मैच, लेकिन ईरान में फुटबॉल मैच देखने की लड़कियों को पाबंदी है, तो ये लड़कियां सब पुरुष का वेश धारण करके, पुरुष जैसे कपड़े पहनकर अपने बाल कटवा करके वो फुटबॉल का वो मैच देखने जाती है। इस तरह की बहुत दिलचस्प कहानियां,
0: तो ये सब अपने हिंदुस्तानी सिनेमा में भी।
1: हाँ, और मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया
0: जी।
1: उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा
0: जी,
1: और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: बिल्कुल मनोज जी, आपके लेखन में जीवन की जटिलताओं और मनुष्य के भीतर चलने वाले द्वंद्व, इसकी गहरी उपस्थिति संवेदनात्मक दृष्टि से आती है, तो एक लेखक के रूप में आपको सबसे ज्यादा विचलित और उद्वेलित क्या करता है?

0: दोनों चीजें एक सामने सामने होती है, एक सामाजिक यथार्थ है और दूसरा मनोवैज्ञानिक यथार्थ, मोटे मोटे शब्दों में
1: जी।
0: कि किसकी किसी तरह की मतलब किसी भी घटना में कोई उसका पहलू जो होगा जिसके कई लोगों से जुड़ना, उसके बाद उसके साथ जीवन में कोई परिवर्तन आना और दूसरा खुद उसके भीतर किसी अनपेक्षित विचार का उठना और खुद उसका भीतर का संसार कहीं दूसरी चीजों से प्रभावित होना। तो बाहर की दुनिया भीतर की दुनिया को कैसे प्रभावित करती है, उसके बाद भीतर की दुनिया बाहर की दुनिया को कैसे प्रभावित करती है।
1: जी जी।
0: तो इसको गौर से अगर देखें तो कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि व्यक्ति जो है वो बाहर का भी उतना ही है और भीतर का भी उतना ही है।
1: जी जी।
0: तो ये भीतर बाहर के जो कश्मकश है उसी में कहानियां हैं।
1: बिल्कुल। तो आपके लिखने का कोई खास तरीका होता है, कोई खास माहौल की जरूरत होती है कि समंदर के किनारे जाके बैठे, नदी के किनारे या घर के अंदर?
0: नहीं, मैं तो शुरू से मेरी लिखने का जो तरीका था वो यही था। मैं मिठाई की जब दुकान थी नागपुर दुर्ग में, तो जो तराजू होती है मिठाई तोलने की उसके नीचे एक डेस्क थी, वही मेरे लिखने का टेबल था और लिखता था कुछ और कोई ग्राहक आ गया तो उनको मिठाई दे दी, वो चले गया तो फिर लिखना शुरू कर दिया। तो मेरी शुरू से ये हैबिट रही है कि अगर कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई आसपास ना हो, कोई बोलने वाला ना हो, बार बार बीच में कोई हस्तक्षेप करने वाला ना हो, तो मैं कहानी नहीं लिख सकता।
1: जी जी, ये तो बात उल्टी हो गई। अमूमन लेखकों को
0: हाँ एकांत चाहिए,
1: एकांत चाहिए। हाँ,
0: मैं अभी अपने वर्कशॉप में बैठ कर लिखता हूँ।
1: हाँ,
0: तो काम चलता है और सारे दिनचर्या अपने तरह से चलती रहती है और मेरा लिखना भी चलता है।
1: आपका जो लेखन है उसमें बड़ी वो शांति, हालांकि आप बड़े अशांत माहौल में लिख लेते हैं लेकिन लेखन में शांति महसूस होती है पढ़ते हुए और बहुत मंथर गति से पाठक पढ़ना चाहते हैं, आराम से, तसल्ली से, क्योंकि हड़बड़ी में नहीं पढ़ सकते हैं।
0: जी, जी।
1: लेखन भी है, मौन भी उतना ही है और संवाद भी उतने ही होते हैं, तो ये जो तादात में है किस तरह से स्थापित करते हैं आप?
0: देखो, पाठक का तो ध्यान बहुत पहले रखना ही पड़ता है। लिखते समय मेरी सबसे बड़ी फिक्र ये होती है कि मैंने जो एक वाक्य लिखा वो खुद मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और मैं एक एक वाक को चार चार पांच पांच बार लिखता हूँ। कहानी के भले मैं ज्यादा ड्राफ्ट नहीं बनाता लेकिन वाक्यों के ऊपर मेरी बहुत मेहनत होती है और मेरी ये कोशिश होती है कि हर वाक्य में कोई एक शब्द चमकता हुआ हो, उससे पाठक मतलब जो पूरे वाक्य में जो बात कही गई है एक शब्द ऐसा होना चाहिए जिससे पाठक तुरंत मतलब आकर्षित हो।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो उसको पढ़ने में मजा आता है। तो पढ़ने का जो सुख होता है, अगर जैसे हम पढ़ते समय, मैं पाठक भी हूँ ना भाई, मैं लेखक तो हूँ, उसके अलावा दुनिया के बहुत सारे उपन्यास मैंने पढ़े हैं, दूसरी सब चीजें। तो जिस उपन्यास में किसी लेखक की भाषा बहुत शानदार होती है, उसकी वाक्य रचना बहुत अच्छी होती है, उसको पढ़ने में इतना आनंद आता है। तो मेरी भी ये कोशिश होती है कि मैं जब लिखूं तो पढ़ने वालों को मजा आना चाहिए।
1: जी बिल्कुल। अपने श्रोताओं को बता दें कि मनोज जी एक उत्कृष्ट साहित्यकार के साथ साथ एक उत्कृष्ट चित्रकार भी हैं।
0: उत्कृष्ट तो, चित्रकार नहीं।
1: ये आप कहते हैं तो नहीं, चित्रकारी नहीं। के शौक और चित्रकारी के बारे में बताएं।
0: नहीं, शौक तो है, शौक तो संगीत का भी है लेकिन मैंने आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट को हाथ नहीं लगाया। चित्रकारी का मैं हिम्मत कर ली थोड़ी और इसके पीछे एक ऐसा किस्सा, एक उपन्यास मैंने पढ़ा था मून एंड सिक्स पेनी,
1: जी
0: हिंदी में उसका अनुवाद है चांद और छह आने। उसका जो किरदार है वो सामान्य जिंदगी जीने वाला, वो LIC का एजेंट है। उसकी जो पत्नी है वो बड़ी कला प्रेमी है और वो अपने सब मेहमानों को जब बुलाती है, उसमें साहित्यकार हैं, कलाकार, ये सब आते थे, इससे वो मिलाती नहीं थी कभी। तो एक बार एक उपन्यास का जो लेखक है वो उसके घर गया मिलने और उसने कहा कि भाई आपके पति कहाँ है उनसे मिलाओ हमको, बच्चे कहाँ है उनसे मिलाओ। बोले हमारे पति जो है कला में साहित्य में उनकी कोई रुचि नहीं है, नहीं अभी उनकी मतलब मिलने की इच्छा नहीं है। तो नहीं नहीं बोले आपके घर आया हूँ तो उनसे मिलकर जाऊंगा। तो मुलाकात हुई, उस पल दो पल की मुलाकात में एक दूसरे को दोनों ने क्या देखा क्या समझा पता नहीं। और ये दो चार दिन के बाद वो LIC का जो एजेंट था उसने घर छोड़ दिया, कहीं चला गया बिना बताए। बहुत खोजबीन हुई, बाद में मालूम पड़ा कि वो पेरिस चले गया है और उससे पूछा गया भाई तुम क्यों साहब आ गए घर बार छोड़ के, तो बोले मुझे चित्रकार बनना है। तो भाई चित्रकार बनना है लेकिन तुमने जीवन में कभी कोई चित्र बनाया? बोले नहीं बनाया लेकिन मेरी इच्छा हो गई चित्रकार बनने की। ये उपन्यास मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने सोचा यार मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ। तो मैंने छोटा मोटा

0: स्केच में नहीं किया, कागज में
1: अच्छा
0: बड़ा कैनवास, वो भी फ्रेम किया हुआ कैनवास नहीं, कैनवास का रोल पूरा।
1: जी,
0: मैंने कहा कि करना तो बड़ा करना है, भले वो किसी काम का ना हो लेकिन
1: हाँ
0: करना बड़े कैनवास
1: बड़े
0: में
1: फलक
0: था।
1: पर बढ़िया
0: तो 4-5 चित्र मैंने बनाए
1: जी
0: और
1: जी
0: उसके बाद वो मामला रुक गया। तो उस तरह से चित्रकार नहीं हूँ, एक क्षणिक दौरा पड़ा था,
1: जी जी
0: उस दौरे में 2-4 हाथ मैंने चला लिए।
1: अपने श्रोताओं को बता दें कि आप निबंध लेखन भी करते हैं, अनुवाद भी किया है, कहानी उपन्यास तो है ही, और इस समय रिकॉर्डिंग के समय रिकॉर्डिंग में आपकी पत्नी नीता जी भी आई हैं स्टूडियो में, कांच के उस पार बैठी है। नीता जी का कितना योगदान है आपके लेखन में?
0: नीता जी का योगदान ऐसा है,
1: सहयोग योगदान?
0: सहयोग नहीं, बड़ा योगदान है। इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं लिखने से पहले सुनाता हूँ, तो कोई और नहीं होता, जब मेरा कोई दोस्त नहीं होता तो ये अकेले मेरी श्रोता होती है। कई मैंने कहानियां, जैसे अभी अनुभूति कहानी जो है वो मैंने अपने ऑफिस से फोन करके नीता को सुनाई कि अभी ये ख्याल मेरे दिमाग में आया है। तो नीता मेरी पहली श्रोता होती है और उसके एक्सप्रेशन मुझे समझ में आ जाता है कि कहानी ठीक बन रही है कि नहीं। इससे बड़ा योगदान क्या होगा?
1: जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: उपन्यास जो है काले अध्याय,
1: हाँ हाँ,
0: वो पूरा उपन्यास मैंने अपनी बेटी को सुनाया लिखने से पहले। उसको सुनाता था रात, उसको बहुत जिद होती थी कहानी सुनने की, जब वो छोटी थी तब भी
1: जी।
0: रोज पापा कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ, जब तक मैं उसको कोई कहानी और बना बना कर कोई भी कहानी सुनाता था जिसका कोई सिर पैर ना हो।
1: जी,
0: लेकिन जब तक नहीं सुना तब तक उसको नींद नहीं आती थी। तो लोरी सुनने के बजाय वो कहानी सुनती थी।
1: क्या बात है।
0: तो ये मेरा मतलब तरीका रहा है कि मैं अपने आपको जो है ना कभी छुपा कर नहीं रखता कि मैं जो लिखने वाला हूँ उसको अगर बता दूंगा तो किसी की टोक लग जाएगी और मैं लिख नहीं पाऊंगा।
1: खुली किताब होना चाहिए एक लेखक को। मनोज जी, बड़ी दिलचस्प बातें और बड़ी जानकारी वाली बातें आपने कही हैं, हमारे श्रोताओं के साथ साझा की है, और हमें तो सचमुच बहुत आनंद आ रहा है आपसे बातचीत करते हुए। लेकिन घड़ी की ओर देख रहे हैं तो घड़ी की सुइयां अब विराम लगाने को कह रही है, फिर कभी एक बातचीत आपसे करना चाहेंगे। आज बस इतना ही। आप आए विविध भारती के स्टूडियो में और इतनी सारी बातें की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी शुक्रिया शुक्रिया।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उपन्यासकार, कहानीकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
2: आज के मैं

सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आर्मी। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे।

0: मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ

0: सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: रंग तरंग
4: विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: ओ सांवरे इस एल्बम से सुन रहे थे भजन आप, जिसे गाया अजित कल्ले ने और मनोहर राय ने इसे लिखा और संगीतबद्ध किया।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: कितने ही रंग इस एल्बम से आप सुन रहे थे बशीर बद्र का ये कलाम चंदन दास की आवाज में।
1: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से। जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
1: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये गजल जिसे लिखा है रिफत सारोश ने और सितम एल्बम से चंदनदास की आवाज में। इसे सुनते हैं।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो केंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: खजाना इस एल्बम से आप सुन रहे थे तलत अजीज की आवाज में एक कलाम जिसमें संगीत भी तलत अजीज का और बोल कतील शिफाई के।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे।

विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं कैलाश खेर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल नरेश परेश का संगीत, और ये गीत हम सुनवा रहे हैं आवारगी एल्बम से।

0: मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: सोनू निगम की आवाज में जान इस एल्बम से गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा फैज अनवर ने, निखिल विनय का संगीत।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार

तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव।

0: आजा नचले फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में, जयदीप साहनी के बोल, सलीम सुलेमान का संगीत।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं सोनू निगम और साधना सरगम की आवाजों में गुलजार के बोल, अनु मलिक का संगीत, फिल्म जान।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पर रहते हैं लेकिन

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां

0: कार्य, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ऐसे युवाओं को लोक सेवा में लाने की जरूरत पर जोर दिया जो सरकारी पद के लिए नहीं बल्कि जनसेवा के लिए प्रेरित हों।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारत

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी ने। लिखते हैं,
2: रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
0: वाह क्या बात है, रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, लेकिन
2: रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सुंदर विचार के लिए। तो आइए सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी लिखते हैं,
0: छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार भोजली हमें माटी की खुशबू, प्रकृति से प्रेम करना और अपनी लोक परंपराओं को सहेजना सिखाती है। भोजली की हरियाली और संस्कृति का मान, यही हमारी छत्तीसगढ़ी पहचान है।
2: गाँव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी कीरत अवाना जी लिखते हैं,
0: 25 अगस्त 2026 के कार्यक्रम में नागालैंड के लांगवा गांव और कोन्याक जनजाति के बारे में दी गई जानकारी अत्यंत ज्ञानवर्धक, रोचक और दिलचस्प लगी। विशेष रूप से भारत म्यांमार सीमा पर बसे इस अनोखे गांव की स्थिति को, कोन्याक जनजाति की संस्कृति के बारे में जानना बेहद रोचक लगा।
2: ये भारत की विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण है। आपका कार्यक्रम हर सप्ताह हमें भारत की विविधता, संस्कृति और अनोखे तथ्यों से परिचित करा रहा है। हमारा पूरा परिवार इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करता है और हर बार कुछ नया जानने की उत्सुकता बनी रहती है। इस शानदार और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए आप दोनों का हृदय से धन्यवाद और साधुवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। लिखा है,
2: आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, सादर नमस्कार। हमारी संस्कृति, संस्कार, त्योहार, जाति, बोली, रहन सहन, भाषा और इन्हीं में हमारी मातृभाषा हिंदी प्रेरक प्रसंग में हमने जंगल, शैम्पू, पजामा शब्दों की उत्पत्ति के बारे में सुना। इतनी रोचक जानकारी सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही पीटी उषा जी पर भी विशेष कार्यक्रम सुना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है श्रोताओं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा, धनेश्वरी वर्मा और संजय अंशु वर्मा। साथ ही हमें संदेश मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से विकास कुमार मौर्य जी का।
2: बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवा।
0: आप सबके संदेशों के लिए श्रोताओं एक बार फिर से हमारा बहुत बहुत आभार। तो श्रोताओं, भारत के बहादुर बच्चों की श्रृंखला में आज एक बार फिर से चलते हैं, आइए भारत के खूबसूरत पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की ओर।
2: मेघालय, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, झरने और नदियां प्रकृति की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं।
0: श्रोताओं, मेघालय यानी मेघों का घर।
2: जी,
0: यह राज्य भारी वर्षा के लिए जाना जाता है और जब भारी वर्षा होती है तो प्रकृति भी कभी कभी चुनौती बन जाती है, खासकर तब जब बारिश हो और नदियों का बहाव बहुत तेज हो जाए।
2: जी हाँ श्रोताओं, ऐसी ही एक चुनौती आ खड़ी हुई मेघालय के एक 15 वर्षीय बालक के सामने। उसका नाम है किसेन वानियांग।
0: किसेन वानियांग एक ऐसा नाम जिसने अपनी बहादुरी से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। दिन था 25 मई 2024। मेघालय के साउथ वेस्ट खासी हिल्स जिले के माओ लांगवीर गांव में भारी बारिश हो रही थी।
2: बारिश के कारण गांव की पहाड़ी नदी में धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा था।
0: पहाड़ी नदियों में श्रोताओं अचानक ही पानी इतना बढ़ जाता है कि संकट की स्थिति अक्सर उत्पन्न हो जाती है।
2: जी।
0: उस समय बालक किसेन नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। पानी बढ़ता देखकर उसने वहां से हटने का विचार किया, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ बच्चों की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ।
2: श्रोताओं कल्पना कीजिए, बारिश का मौसम, तेज बहती नदी और अचानक मदद के लिए बच्चों की चीख पुकार। किसेन ने देखा कि 4 बच्चे जिनकी उम्र लगभग 9 से 12 वर्ष थी नदी के तेज बहाव में फंस गए थे। ये वो क्षण था जब किसेन के सामने 2 रास्ते थे, एक अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना और दूसरा संकट में फंसे बच्चों की सहायता करना।
0: और किसेन ने श्रोताओं दूसरा रास्ता चुना। नदी में उतरना स्वयं एक बहुत बड़ा जोखिम था।
2: जी।
0: फिर भी किसेन ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी और बच्चों को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया।
2: एक बच्चा, फिर दूसरा, फिर तीसरा
0: और अंततः चौथा बच्चा भी किसेन ने चारों बच्चों को पानी के तेज बहाव से खींचकर किनारे पर लगा दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने चार बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
2: इतने में गांव के लोग भी वहां आ गए और सबने किसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। दूसरे दिन इस घटना की चर्चा संचार माध्यमों द्वारा पूरे देश भर में फैल गई।
0: किसेन की इस बहादुरी को राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहा गया
2: जी।
0: और फिर दिन आया 26 दिसंबर 2024 का, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के वीरता वर्ग में सम्मानित किया।
2: सोचिए श्रोताओं, केवल 15 वर्ष की उम्र और ऐसा साहस कि चार बच्चों का जीवन बच गया।
0: श्रोताओं, किसेन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि उम्र छोटी हो सकती है लेकिन साहस और समर्पण हो तो बहुत असंभव लगने वाला कार्य भी किया जा सकता है
2: जी।
0: यहाँ हम उमंग कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और सभी श्रोताओं को कहना चाहेंगे कि
2: यदि कभी आपके सामने कोई व्यक्ति नदी, तालाब या किसी अन्य खतरनाक स्थान पर संकट में हो तो बिना सोचे समझे स्वयं खतरे में न कूदें।
0: बिल्कुल, तुरंत आसपास अपने बड़ों को बुलाएं, स्थानीय बचाव दल या आपातकालीन सेवाओं से सहायता लें और सुरक्षित तरीके से मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि बहादुरी का अर्थ केवल जोखिम उठाना नहीं है
2: बल्कि समझदारी के साथ साथ सही समय पर सही कदम उठाना ही बहादुरी है।
0: बहादुर बालक किसेन वानियांग ने चार बच्चों की जान बचाकर ये संदेश दिया कि मानवता की भावना किसी उम्र की मोहताज नहीं होती,
2: और सारी दुनिया के बच्चों के लिए उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। दूसरों की मदद कीजिए, संकट में धैर्य रखिए और हमेशा अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखिए।
0: तो श्रोताओ, आज की कहानी से हम तीन बातों को जरूर याद रखें
2: जी।
0: तो पहली बात,
2: संकट में घबराए नहीं।
0: दूसरी बात,
2: जरूरतमंद की सहायता करने का प्रयास करें।
0: और तीसरी बात,
2: साहस के साथ साथ समझदारी और सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
0: तो बहादुर बालक किसेन बानियांग को उमंग कार्यक्रम की ओर से सलाम
2: जी, और भारत के उन सभी बच्चों को भी सलाम जो कठिन परिस्थितियों में मानवता और साहस का परिचय देते हैं।
0: तो श्रोताओ, अभी आपने सुनी किसेन बानियांग की कहानी
2: जी,
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से है। हमारा प्रश्न है, मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
2: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता को इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि चींटी कितनी परिश्रमी और उद्यमी है। हमें अपने जीवन में चींटी से सीखने की आवश्यकता है।
0: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
3: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
3: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
3: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
3: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
3: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
3: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
3: नहीं कभी घबराती चींटी।

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम चींटी, और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा।
1: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के पराक्रमी योद्धा मेजर सोमनाथ शर्मा के जीवन और युद्ध के मैदान में उनके असाधारण शौर्य के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया।
2: विद्यालय में प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा की जा रही है।
3: मेरा देश महान भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पांचवी कक्षा की छात्रा मेघा ने।
4: अरे वाह मेघा, मजा आ गया। आओ देखिए क्या मिला है पुरस्कार में।
5: ना नहीं, अरे इसे तो मैं नंदिनी मैडम के सामने ही खोलूंगी। पता है इस भाषण प्रतियोगिता की तैयारी उन्होंने ही करवाई थी।
4: अरे मोहित तुम ही बोलो ना, मेघा तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, बोलो ना।
6: हाँ मेघा, दिखा देना नंदिनी मैडम को भी, पर हम भी तो देखें इसमें है क्या।
7: प्लीज मेघा दिखा दो ना,
8: दिखा दो।
9: अरे चुप चुप, देखो मैडम आ रही हैं।
10: चलो चलो सब क्लास में चलो, अगर देर हो गई तो मैडम फिर गुस्सा हो जाएंगी। चलो चलो चलो चलो चलो।
11: गुड मॉर्निंग मैडम।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, आज की भाषण प्रतियोगिता कैसी लगी?
12: बहुत अच्छी।
6: मैडम मेघा ने बहुत अच्छा बोला।
3: हाँ केतकी, मेघा इधर आओ।
13: जी मैडम।
3: शाबाश शाबाश। बहुत अच्छा लगा तुम्हें मंच पर इतना अच्छा बोलते देखकर।
13: धन्यवाद मैडम।
3: क्या मिला पुरस्कार में?
13: जी
6: मैडम, आप ही कहते इंतजार कर रही थी।
3: अच्छा,
6: कह रही थी मैडम के सामने ही खोलूंगी।
3: मेघा दिखाओ तो अपना पुरस्कार।
13: लीजिए मैडम।
3: हाँ, इसको खोलते हैं। अरे वाह, ये तो एक किताब है।
10: अरे किताब भी नहीं है।
3: हाँ, शीर्षक है हमारे परमवीर चक्र विजेता। वाह
13: मैडम, किस विषय पर है ये किताब?
3: मेघा ये किताब हमारे देश के उन वीर सैनिकों के बारे में है जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। समझे?
10: सैनिकों के बारे में?
13: सैनिकों के बारे में है। अच्छा
6: अच्छा, अब्दुल हमीद के बारे में है। इनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, वही है ना मैडम?
3: हाँ मोहित, पर अब्दुल हमीद के साथ साथ इसमें और भी वीर सैनिकों के बारे में लिखा है जिन्हें परमवीर चक्र से सुशोभित किया जा चुका है।
13: हाँ मैडम, मेरी कॉलोनी में एक लड़का रहता है। वो कहता है कि उसके दादाजी के एक दोस्त हैं, उन्हें भी परमवीर चक्र मिला था।
3: अच्छा।
13: उन्होंने भारत पाक युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे।
3: वाह,
6: क्या परमवीर चक्र उसी को मिलता है जिसने युद्ध में लड़ाई लड़ी हो?

0: हाँ केतकी, परमवीर चक्र उनको मिलता है जो युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति के समय अपनी आन बान जान को देश पर न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं।
1: सैनिकों को तो बहादुर है हमारे सैनिक।
2: अरे वाह, इस किताब में तो बहुत सी वीरता की कहानियां पढ़ने को मिल सकती है। मेघा, मुझे भी ये किताब पढ़ने के लिए दे देना प्लीज।
3: मुझे भी।
4: इसके बाद
3: मैं,
4: पहले मैंने कहा था, पहले मैं।
1: हम सब पढ़ेंगे एक एक करके।
2: पर मेघा, इस तरह तो काफी समय लग जाएगा।
0: मोहित, एक मिनट, एक रास्ता है।
2: रास्ता है?
0: मेघा, क्यों ना तुम इस किताब को पढ़कर हम सबको उन शूरवीर योद्धाओं के बारे में बताओ। कैसा रहेगा? अच्छा ना? अच्छा देखो, कल रविवार है, कोशिश करना कि पूरा दिन बैठकर ये किताब पढ़ सको।
1: जी मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगी।
0: ठीक है, तो बच्चों, सोमवार को नंदनी मैडम की जगह मेघा मैडम से पढ़ेंगे।
1: जी मैडम।
5: गुड मॉर्निंग मैडम।
0: गुड मॉर्निंग। हाँ तो मेघा, आज तैयार हो सबको पढ़ाने के लिए?
1: जी मैडम।
0: अच्छा पहले ये बताओ, कैसी लगी किताब?
1: मैडम, बहुत ही अच्छी किताब है। उन बहादुर सैनिकों की वीरता का वर्णन पढ़कर ऐसा लगा कि मैं भी सेना में भर्ती होकर अपने देश की रक्षा करूं।
0: क्या बात है।
2: अच्छा मेघा, ये परमवीर चक्र कब और किसको मिलता है?
1: बताती हूँ। सुनो, परमवीर चक्र हमारे देश का सर्वोच्च वीरता पदक है। ये चक्र युद्ध में प्रदर्शित असाधारण वीरता और आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ये पदक सेना, नौसेना और वायुसेना के अफसरों तथा जवानों को प्रदान किया जाता है।
2: वाह।
0: अच्छा मेघा, क्या तुम बता सकती हो पहला परमवीर चक्र किसे और क्यों मिला था?
1: जी मैडम, पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था।
0: शाबाश।
1: उन्होंने 1947-48 में हुए भारत पाक युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया था।
2: मेघा, ऐसा क्या किया था उन्होंने?
1: हाँ, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। कहाँ से शुरू करूं?
6: ओ मैडम जी।
0: जी मोहन भैया, क्या बात है? आ जाइए आ जाइए।
6: मैडम जी, आपसे कोई मिलने आए? कहते हैं आप ही ने बुलाया उनको।
0: ओ हाँ हाँ हाँ, मोहन भैया आप उन्हें बिठाइए, मैं भी आती हूँ।
6: ठीक है जी।
0: बच्चों, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, शोर मत मचाना।
1: जी मैडम।
0: मेघा, देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
7: मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि उन्हें परमवीर चक्र जैसा सम्मान मिला।
2: काश मुझे भी अपने देश की सेवा करने का मौका मिले, बहुत ही अफसरों का साथ हो और सामने दुश्मन। वाह,
1: देखो नंदिनी मैडम के साथ कोई फौजी अफसर आ रहे हैं।
8: मोहित, लगता है आज तुम्हें अफसर मिल ही जाएगा। काश मिल जाए।
0: चुप, एकदम शांत। बच्चों, ये है मेजर अशोक।
9: नमस्ते सर।
10: नमस्ते बच्चों।
0: ये भारतीय सेना में अफसर हैं, आजकल छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। क्यों मेजर? आज इन्हें मैंने खास तौर से तुम लोगों से मिलने के लिए बुलाया है। क्यों, ठीक किया ना मेघा?
1: जी मैडम।
10: भाई, आप लोगों की क्लास तो बहुत अच्छी लग रही है। आपको देखकर लग रहा है कि आप सभी बहुत अनुशासन प्रिय हैं।
1: धन्यवाद सर।
10: सबसे पहले तो मेघा, मैं तुम्हें और तुम्हारी कक्षा को बधाई देना चाहूंगा। मैंने सुना है कि तुमने मंच पर बहुत अच्छा बोला।
1: धन्यवाद सर।
10: हाँ तो बताओ कि कहाँ से शुरू करें?
1: सर, मेजर सोमनाथ शर्मा ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें परमवीर चक्र मिला?
10: बिल्कुल ठीक। बच्चों, मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को डाढ़ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। मेजर सोमनाथ शर्मा एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे। ये बात सन 1947 की है जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था। बहुत ही भावुक और नाजुक समय था वो।

0: बच्चों परिवार बिछुड़ रहे थे, दोस्त बिछड़ रहे थे, और सबसे बड़ा दुख था अपनी जमीन, अपनी मिट्टी से बिछड़ने का।
1: जी आपने बिल्कुल ठीक कहा मेजर।
0: कुछ रियासतें पाकिस्तान से जा मिली तो कुछ भारत से, और कुछ असमंजस में थे, यहां जाएं कि वहां जाएं। अभी तो सब एक ही था, एक हिंदुस्तान। क्या था बच्चों?
2: एक हिंदुस्तान।
0: उनमें से एक थे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह। उन्होंने कुछ समय मांगा जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा और मत जानने के लिए। भारत को यह मंजूर था, पर पाकिस्तान, जो जम्मू कश्मीर की जमीन को अपनी जमीन में मिलाने को आतुर था, उसे यह बात मंजूर नहीं थी। पाकिस्तान ने आक्रमण कर जम्मू कश्मीर को अपने वश में करने की ठान ली। पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर पर हमला 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ। हमले के लिए 20,000 कबायलियों के लगभग 20 लश्करों का संगठन बनाया था पाकिस्तानी सैनिकों ने, और उन्हें काम सौंपा गया था जम्मू कश्मीर की जमीन पर कब्जा करने का। महाराजा हरि सिंह को यह नागवार गुजरा, और उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान के साथ अपनी रियासत के विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। अब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था और उसकी रक्षा करना भारतीय सेना का कर्तव्य। हमारी फौज ने जरा भी देर नहीं लगाई। हिंदुस्तानी फौज की टुकड़ियां एक एक कर जम्मू कश्मीर पहुंचनी शुरू हुई। ऐसी ही एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा।
3: मेजर सोमनाथ शर्मा, एक डॉक्टर की तो यही सलाह है कि आप आराम करें। आपके हाथ पर प्लास्टर बंधा है, इस हालत में श्रीनगर जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है।
0: सर, मेरी कंपनी श्रीनगर जा रही है और मेरा उनके साथ जाना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे मौके पर अपनी कंपनी का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं आपकी राय का सम्मान करता हूँ, किंतु मुझे जाना। उनकी संख्या लगभग 700 थी और हम 100, यानी हमारा एक साथ। मेजर सोमनाथ शर्मा के लिए वो कठिन परीक्षा का समय था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक ओर तो अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने का प्रयत्न करते रहे।
4: शाबाश शाबाश, एक एक को नहीं छोड़ेंगे, ये चाहे तादाद में ज्यादा है लेकिन हम इनसे कम नहीं। डटे रहो, फायर फायर।
0: स्थिति की जानकारी दे रहे हैं।
4: सर, दुश्मन हमसे तादाद में 7 गुना ज्यादा है लेकिन अपनी पोजीशन नहीं।
0: उनकी मदद के लिए जा रहा है।
4: सर, हम लड़ाकू विमानों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास एम्युनिशन खत्म होता जा रहा है लेकिन हम हौसले से दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। हम चार चार दुश्मनों को अकेले मार रहे हैं। ओवर एंड आउट।
0: शर्मा ने स्वयं हवाई हमले के लिए धरती पर पहचान स्थितियां लगाकर टारगेट बनाया। दो संख्या में ज्यादा थे और इस हमले का उन पर कोई खास असर नहीं। मेजर श्रीनगर हवाई अड्डे पर कब्जा करना है। उन्होंने निश्चय किया कि जैसे तैसे वो दुश्मन को वहां रोके रखेंगे। वायरलेस पर मेजर शर्मा अभी अफसरों से बात कर ही रहे थे।
4: सर, सर, सर, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है। हम दुश्मन

तभी एक जोरदार धमाका हुआ। सेट ने भी उनका साथ छोड़ दिया, पर मेजर शर्मा बड़ी मुस्तैदी से एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर भागते रहे और जवानों को निर्देश देते रहे। उन्हें दुश्मन की गोलियों से बेखौफ एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक भागते देख भारतीय सैनिकों में भी खूब जोश भराया। उन्होंने सैनिकों को गोलियां भर भर कर मैगजीन दी, जिससे दुश्मन पर किए जा रहे जवाबी फायर की गति धीमी ना पड़े। मेजर शर्मा एक जगह मैगजीन में गोलियां भर ही रहे थे कि दुश्मन का एक बम उनके बगल में पड़े एम्यूनिशन के भंडार पर आ गिरा। इस धमाके से इस योद्धा ने वीर गति पाई।

0: लगभग 6 घंटे तक हमारे 100 सैनिकों ने 700 की संख्या वाले दुश्मन को रोके रखा। और बच्चों, उन्होंने श्रीनगर हवाई अड्डे को दुश्मन के हाथों में पड़ने से बचा लिया। मेजर शर्मा अंतिम सांस तक अपने जवानों का नेतृत्व करते रहे और इस तरह उन्होंने उत्कृष्ट वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें मरणोपरांत ये चक्र दिया गया था।
1: मेघा, मेघा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू?
0: मेघा, इस कहानी को सुनकर आंसू नहीं, जोश आना चाहिए। अपने देश के लिए कुछ करने का जोश। क्यों बच्चों?
2: यस सर, शाबाश।
1: हाँ तो बच्चों, ये थी मेजर सोमनाथ शर्मा की वीरता और बलिदान की कहानी। ऐसी और भी कई कहानियां हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे।
0: नंदिनी जी,
1: जी
0: मैं आपका और खासतौर से इन बच्चों का धन्यवाद करना चाहूंगा। इसलिए नहीं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ध्यान से सुना, बल्कि इसलिए कि इन बच्चों ने इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की।
1: जी,
0: इन बच्चों से मिलकर मुझे विश्वास हो गया कि ये वीरों की कक्षा है और इनमें भी कहीं ना कहीं कोई परम वीर छिपा है। क्यों बच्चों, ठीक कहा ना?
2: यस सर।
0: अच्छा, अब मैं चलता हूं।
1: जी।
0: अच्छा बच्चों, जय हिंद।
2: जय।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या,
1: प्रसून
0: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
1: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: उनकी जन्म जयंती पर।

0: शागिर्द फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही

और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला अरुण। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव।

0: किशोर कुमार की आवाज में अभिमान फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। इसे लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से। जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
1: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल। आज याद कर रहे हैं संगीतकार सचिन देव बर्मन और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को उनके जन्म जयंती पर, और उन्हीं के गीतों के जरिए यादों की महफिल कार्यक्रम आज गुलजार है। आइए सुनते हैं अनामिका फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: अनामिका फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार के आवाज में। इसे लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने, राहुल देव बर्मन की तर्ज।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आराधना फिल्म से गीत आपने सुना। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में संगीतकार सचिन देव बर्मन और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के गीत आपको सुनवा रहे हैं। चलिए सुनते हैं अंदाज अपना अपना फिल्म से ये गीत। अलका याग्निक और SP बालासुब्रमण्यम की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, तुषार भाटिया का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम इस कार्यक्रम में रोजाना करते हैं कि एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट करते हैं अपने फेसबुक पेज पर और उसमें छुपे होते हैं वो शब्द जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में हम शामिल करने वाले हैं। तो आज की इबारत आपको पहले सुना देते हैं। आज की इबारत है, उम्र का क्या है बढ़ती जाती है और ये दिल दिल तो बच्चा ही रहता है। तुम भले 60 के हो या 55 के, कहां भूलते हैं दिन बचपन के। वैसे बचपन ही क्यों, जवानी, प्रेम, प्यार, एक दूसरे से मिलने की हर घड़ी भी तो उन महकती यादों के साथ ही है जो हमने साथ साथ चलते हुए गुजारी है। कुछ भी कहो, इन चांदी से चमकते बालों में जो नरमी है वो बादलों में भी नहीं। तुम्हारे मीठे बोल आज भी धड़कनों को जवां बनाने का हुनर रखते हैं। वैसे हम भी कम नहीं, आज भी जिस गली से निकल जाएं, हसीनाएं जान छिड़कती हैं, आहें भरती हैं। पर क्या करें, तेरे चेहरे से नजर हटे तो कुछ देखें। उम्र की ये ढलती शाम भी तेरे जुल्फ के साए में बितानी है, ना इसके सिवा कुछ चाहा, ना इससे बढ़कर ये जिंदगानी है। तो ये हमारी आज की इबारत है जिसमें बहुत से ऐसे शब्द छुपे हैं जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। साथ ही एक थीम भी इसमें छुपी हुई है जो हमारे साथियों ने बिल्कुल सही पहचानी। वरिष्ठ नागरिक दिवस की शुभकामनाएं देते हैं हमारे साथियों को और हमारे साथियों ने उम्र को लेकर बहुत सी बातें लिख भेजी। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गूगल का जमाना तो अब आया, पुराने जमाने का असली गूगल अगर कोई है तो वरिष्ठ यानी सीनियर सिटीजन ही हैं, जिनके पास अनुभवों का खजाना होता है। पुराने जमाने में कोई अच्छे कार्य शुभारंभ करने से पहले या विकट परिस्थितियों में निकलने के लिए उनकी सलाह ली जाती थी। इस बात पर गुजराती मुहावरा भी है, गेड़ा गाड़ा वारे, यानी मतलब दलदल में फंसी बैलगाड़ी हो या जीवन रूपी गाड़ी हो, बुजुर्ग व्यक्ति अपने अनुभव से बाहर निकाल सकता है। तो इन्होंने वरिष्ठ श्रोताओं को और वरिष्ठ नागरिक दिवस पर सभी छोटे बड़े मित्रों को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। आप भी हमें भेजिएगा बहुत सी बातें। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि उम्र कैलेंडर की तारीखों से नहीं स्वयं के नजरिए से बढ़ती है। शरीर भले 55-60 का हिसाब रखने लगा है पर दिल ने घड़ी पहनना सीखा ही नहीं। वो आज भी उसी आंगन में कूदता है जहाँ बचपन में कूदता था, उसी गली में खड़ा है जहाँ पहली बार धड़कनें तेज हुई थी। लेकिन ढलती उम्र के साथ जब बालों में सफेदी आती है तो बढ़ती उम्र की निशानी नहीं होती बल्कि जीवन में मिले अनुभवों का प्रमाण पत्र होती है और दिल का बचपना मिजाज इस बात का सबूत है कि आपने अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने उस बचपने और जवानी को जिंदा रखा हुआ है। जो तो आज कोई भी गीत सुनकर जो मुस्कुरा देता है जहाँ जीवन की ढलती शाम भी किसी नए सवेरे से ज्यादा हसीन लगती है। भाई बेहतरीन बातें आप लिख भेजते हैं कोई भी विषय हो, लेकिन ये भी तो बताइए कि उम्र को आप किस तरह से देखते हैं। क्या कोई ऐसे काम है जिन्हें आप अब नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि ये सब करने की अब उम्र नहीं रही। बताइए हमसे और साथ ही बताइए कि जो गीत सुनवा रहे हैं उसे लिखा किसने है और संगीतबद्ध किसने किया है।

0: मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन का संगीत आपने सुना सुजाता फिल्म के इस गीत में। यह हमारे सवाल का सही जवाब था जो आपने बिल्कुल सही बताया।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें, तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: तो विविध भारती के जश्न में तो आप सभी शामिल होने ही वाले हैं, लेकिन अभी इस वक्त आप सुन रहे हैं सुरीला सफर कार्यक्रम, जिसमें आज हम वरिष्ठ नागरिक दिवस के मौके पर कुछ उम्र की बातें कर रहे हैं। हमारे एक साथी कहने की उम्र तो जीवन के मौन यौन परक शैशव बालक किशोर युवा प्रौढ़ वृद्ध और अतिवृद्ध जैसे विभिन्न पड़ावों का एक स्वरूप मात्र है। इसमें किशोरावस्था को उस मौन यौन परक रवानी की तीव्रता अपने नियत सुर लय ताल जैसे दर से मृत्यु पर्यंत नृत्य कर रही है, तो इस तरह से इन्होंने अपनी बातें लिख दी हैं। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तक बचपन था, आंगन में नंगे पांव दौड़ते हुए छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाते हुए बिना किसी चिंता के शाम तक खेलते हुए एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर पूरा बचपन एक सुंदर सपना लगने लगा। और शायद यही तो सफर है, बचपन की मासूमियत से उम्र की समझदारी तक, काले बालों की रवानी से चांदी की कहानी तक, और दूसरों के लिए जीते जीते एक दिन अपने ही भीतर लौट आने तक। मगर सच कहें तो यादों में आज भी वही बच्चा कहीं मुस्कुरा रहा है। वाकई अपने अंदर अगर बचपन जीवंत है तो बहुत सी बातें ऐसी लगती हैं कि जैसे कल की ही बात हो। हमारे एक और साथी कहने कि वक्त का पंछी बचपन और यौवन के पड़ावों से उड़ते हुए आखिरकार बुढ़ापे की दहलीज पर आ पहुंचता है। ढलती उम्र में प्रगल्भता और अनुभव का साथ बुजुर्ग इंसान को अधिक समर्थ बना देता है, साथ ही साथ खुद के भीतर उत्साह से भरे बचपन को जिंदा रखना, इसी में उसका बड़प्पन है, सुख समृद्धि है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीनियर सिटीजन दिवस की अनेक शुभकामनाएं इन्होंने दी हैं। ये बताइए कि वरिष्ठ नागरिकों को, क्योंकि अगर हमारे बहुत से श्रोता वरिष्ठ नागरिक हैं भी और बहुत से नहीं भी हैं, लेकिन उनके आसपास तो जरूर वरिष्ठ नागरिक हैं, तो हमें ये बताइए कि वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा किस काम के लिए टोका जाता है और उन्हें वो टोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो ये हमें बताइए आप। और साथ ही ये भी बताइए कि जिस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं उस फिल्म का

कल आज और कल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। यहाँ तक कि आपने तो सारे जवाब हमें दिए हैं कि किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज है और शैली शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है। यहाँ तक कि आपने ये भी लिख भेजा कि रणधीर कपूर, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर और बबीता इस फिल्म में नजर आते हैं। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि आज के युवकों को हम 60 प्लस वालों के विचार अच्छे नहीं लगते, ना ही उन्हें हमारी सलाह उनके मन को भाती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर इस दिन शुभकामनाएं सिर्फ ना दें बल्कि अपने वरिष्ठों को समय दें, उनकी बातें सुनें, उनके अनुभवों का सम्मान करें और उन्हें अपने जीवन का सक्रिय हिस्सा बनाए रखें, क्योंकि किसी घर में बुजुर्गों की मौजूदगी केवल एक रिश्ता नहीं बल्कि उस घर की स्मृतियों, संस्कारों और आशीर्वादों की छांव होती है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम तो सब कुछ करना चाहते पर देखो ना, जैसा पहले दौड़ते थे अब नहीं दौड़ पाते, और हाँ रस्सी भी तो नहीं कूद पाते, पर जो नहीं कर पाते वो क्यों सोचें, जो कर पाते हैं क्यों ना उससे खुश हों। तो हम वॉक करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, घर के सभी काम कर लेते हैं, अगर सहायिका ना आए तो झाड़ू पोछा भी कर लेते हैं। वैसे अब हम वरिष्ठ नहीं हैं अभी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं याद्याश्त के बारे में,

यानी कि वो कहने की याददाश्त के बारे में टोका जाता है जो बार बार, तो वो अच्छा नहीं लगता। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि एक था बचपन, ये जो गीत है लता जी का गाया हुआ, इसमें बचपन पूरा समाया हुआ है। बचपन को याद करते हुए करते हैं तो एक सुकून सुखद एहसास होता है, लेकिन जब बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक याद करते हुए आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि हमारे जीवन की यात्रा गाड़ी में सवार हुए बहुत से यात्री सफर बीच में ही छोड़ गए, उनकी यादों की गठरी बांधे हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि अक्सर ये गीत हम जब होंगे 60 साल के, मैं अपनी धर्मपत्नी को सुनाता हूँ और कहता हूँ बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की, तो धर्मपत्नी मुस्कुराकर गर्दन हिला देती है और मेरे से पूछती है और आप, मैं कहता हूँ कोई शक, हम तो हंसते ही हैं, साथ में बच्चे भी मुस्कुराते हैं। क्या ही बेहतरीन बात आपने कही। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत से साथियों ने बताया कि ये गीत उनकी लिस्ट में तो शामिल था। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चांदी से चमकते बाल किसी को अच्छे नहीं लगते, फौरन काले कर लेते हैं। क्या आप भी इनमें शामिल हैं या आप अपने चांदी से चमकते बालों के अनुभवों को सबको दिखाते हैं? चलिए, हमें और एक बात जो याद आई जो आपसे पूछनी है वो ये कि क्या बचपन की कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी याद है जो आपके मन में अब भी ऐसे ताजा है जैसे कल की ही बात हो? तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, बताइए किस पर फिल्माया गया है, यानी जो पर्दे पर नजर आते हैं वो कौन है।

0: वक्त फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज़ में। हमने पूछा था पर्दे पर कौन नजर आते हैं, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बलराज साहनी और अचला सचदेव।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: हमारे साथी कह रहे हैं बहुत सी बातें, वो कह रहे हैं कि हम तो अपने चांदी जैसे बालों को कलर कर लेते हैं पर उम्र छुपाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी एवरग्रीन ब्यूटी को बनाए रखने के लिए। उम्र तो हम इस धाक के साथ बताते हैं कि देखो इस उम्र में हम कितने एक्टिव और अपडेटेड हैं। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि बाल तो 50 पर सफ़ेद हो गए लेकिन आज तक हमने कभी डाई नहीं करवाया, अब तो 72 पहुँच गए। तमाम मौक़ों पर लोगों ने बाल काला करा लीजिए सलाह दी लेकिन मैंने कहा कि ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि एक नहीं कई सारी शरारतें जिनमें पुरानी मिठास हो, बारिश होती ही छत पर जाकर भीगना और फिर माँ की डांट से बचने के लिए चुपके से कपड़े बदल लेना, दोस्तों के साथ बिना बताए कहीं घूमने निकल जाना और लौट कर ऐसे बनना जैसे कुछ हुआ ही नहीं, किसी की आंखों पर हाथ रखकर पूछना कि बताओ मैं कौन, गली में खेलते खेलते हार जाए तो कहना चलो एक आखिरी बार और, बिना किसी वजह के जोर से हंसना और फिर दूसरों को भी हंसा देना। ये बचपन की ऐसी बातें हैं जो इन्हें याद आती हैं जैसे कि कल की ही बात हो। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि आज विश्व वृद्ध जन दिवस है, गीत जब हम होंगे 60 साल के, ये गीत तो इनकी पसंद पर और बहुत से साथियों की पसंद पर चल ही चुका है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि किस बातों पर टोका जाता है वरिष्ठ नागरिकों को, जो हमने पूछा उस पर वे कहने की बहुत बोलते हैं और बिना मांगे सलाह देते हैं, इस बात पर वरिष्ठ नागरिकों को अक्सर टोका जाता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि लगातार टोका जाता है जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। एक और साथी कह रहे हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा आप बाहर मत निकलो ये बात उन्हें कही जाती है, तब अंदर ही अंदर मायूस हो जाते हैं। क्यों जब हम 60-70 वर्ष के हो जाते हैं तब उनमें भी बचपन आ जाता है, जब वो बाहर घूमना उन्हें अच्छा लगता है, मेरी समझ ऐसी है। उनका ऐसा कहना है हमारे साथी का, बिल्कुल सही बात आपने कही कि जब बचपन का एक दौर वापस आ जाता है जब हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जो बाहर ना निकलने की सलाह दी जाती है वो इसलिए क्योंकि कभी कभी कहीं गिर जाते हैं या चोट लग जाती है, उससे चिंतित रहने की वजह से लोग घर के जो लोग हैं परिवार के सदस्य हैं वो मना करते हैं, उन्हें बहुत चिंता रहती है, लेकिन इसमें दोनों ही किसी तरह से उलझ जाते हैं। वहीं हमारे एक साथी कहने की उम्र भले ही गणित के अंकों की तरह बढ़ती रहती है लेकिन मन यादों के गलियारों में कुछ कुछ बचपन थोड़ा थोड़ा यौवन काल रहता ही है, अवस्था तो गतिशील है और अंतकरण बाल सुलभ रहता है, बाल्यकाल जीवन का स्वर्णिम सोपान होता है, इस अवस्था से जुड़ी जो यादें हैं वो बचपन की उम्र के बाद के लिए किसी राजशाही खजाने की जैसी होती है। यौवन की अवस्था की यादें भी कम हंसी नहीं होती लेकिन इस अवस्था में बहुधा जीविका के संघर्ष, पारिवारिक जिम्मेदारी का बोझ, थोड़ा कठिन दौर रहा करता है। फिर बचपन के बाद की अवस्था बालों में आई रजत सफेदी उम्र के बढ़ जाने का एहसास तो कराती ही है लेकिन उसमें जो कोमलता है वो बादलों में भी नहीं होती, जो प्रेम की परिपक्वता, जीवन से जुड़े अनुभव के साथ बुद्धिमता के भी द्योतक होती है। इस उम्र में बाल सुलभ बन यादों के पिटारे से कुछ न कुछ निकालने में लगा रहता है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखकर आज की इबारत बनाई गई है, शायद आज सीनियर सिटीजनशिप की सीनियर सिटीजन को धन्यवाद दे रहे हैं वो इस दिवस की, और कुछ यादें कुछ गीत इन्होंने अपनी पसंद के लिखे हैं। देखना है कि आपकी लिस्ट और हमारी लिस्ट कितनी मैच करती है आज। तो अब आपको कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाते हैं, आपको ये बताना है कि किस फिल्म का ये गीत हमने चुना है और साथ ही हमें ये भी बताइए कि ऐसा कौन सा काम है जो आप करते हैं और अपनी उम्र को मात देते हैं, ये हमें बताइए।

0: पति की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और बात हो रही है उम्र की। हमारे साथियों ने जो 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था गीत की कौन सी फिल्म का है हमने आपसे पूछा था, जब प्यार किसी से होता है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे कि हमारे एक मित्र कह रहे 100 साल तो नहीं मगर 25 साल जरूर हो गए प्यार करते करते। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उम्र को मात नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो तो आनी ही आनी है, लेकिन कार्यकुशल होना एक अलग बात है और अब उसके लिए सभी अपने आप को बौद्धिक और शारीरिक क्षमता के अनुसार प्रायः तैयार ही रखते हैं। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उम्र के साथ बाल सफेद हो जाते हैं लेकिन दिल तो जवान होता है और जवान ही रहना चाहिए हर वक्त। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सफेद बालों से वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती किंतु हम उम्र लोग भी अंकल कहने लगते हैं तब बालों को काला करने का विचार आता है। भई ये जो अंकल कहने की जो एक प्रथा है, अंकल और आंटी कहने की, ये बड़ी ही कह सकते हैं कि एक अजीब सी परंपरा है क्योंकि कई बार लोग हम उम्र को भी अंकल या आंटी कह देते हैं या कई बार वो अपने से छोटों को भी कह देते हैं इस तरह से, तो ये संबोधन तो बिल्कुल बंद होना चाहिए, हमें भी ऐसा लगता है। क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 100 साल पहले मतलब 1926 से 2026 में भी प्यार जारी है। भाई ये तो आपका एक चुटिला अंदाज है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैं तो मानती हूँ कि घर में कोई वरिष्ठ व्यक्ति हो तो एक चीज जो मुख्य तौर पर बनी रहती है वो है अनुशासन। व्रत त्योहार उनके होने से कुछ और ही चमक लिए होते हैं। ये संचार क्रांति का दौर है। मेरी मम्मी ने अभी हाल ही में स्मार्टफोन खरीदा और उन्होंने मोबाइल चलाना सीखा भी है, जैसे बचपन में खींच कर ले गया। कैसे वे एक एक अक्षर बड़े धीरज से सीखती थी, सिखाती थी। आज उसी धीरज की जरूरत हम सबको है और यही धीरज धीरे धीरे गायब हो रहा है। तो धैर्य धके और अपना बचपन याद करें, बुजुर्गों की हर बात सुने और समझें। हमारे एक साथी ने यही बात कही है, उन्होंने कहा है कि मोबाइल के बारे में एक से ज्यादा बार पूछने पर बच्चे झुंझला जाते हैं, तब हमें याद आता है कि उनका बचपन जब हम एक सवाल का जवाब 50 बार देते थे। घर के जो बुजुर्ग हैं वो इस बात को लेकर एक बात अक्सर कहते हैं, ऐसा हमने सुना है, कहते हैं कि जब तुम उस दौर में जाओगे जब हम उस दौर पे थे, यानी माता पिता बनोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हमने तुम्हें किस तरह से पाला है। तो क्या आपको भी ये बात सुनने मिलती है, किस तरह से, हमें बताइए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ना कल की चिंता थी ना आज का गम, कितने खुश मिजाज हुआ करते थे हम। बेशक पैसा कम था लेकिन बचपन में दम था। उम्र के साथ ज्यादा कुछ नहीं बदलता, बस बचपन की जिद समझौतों में बदल जाती है। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति के पास हर प्रश्न का उत्तर होता है लेकिन प्रश्न पूछने वाला कोई नहीं होता। दूसरी ओर उम्र के इस पड़ाव पर ऐसे लोग भी हैं जो शान से कहते हैं कि बचपन ही तो गया है, बचपना नहीं, और अपने आप को खेलकूद और मनोरंजन में व्यस्त रखते हैं। फिर भी हमारी जिंदगी की किताब में सबसे बेहतरीन चैप्टर बचपन होता है। वाकई आपने बिल्कुल सही बात कही। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उम्र के साथ साथ दिल बड़ा होता जाता है और उसके अंदर नए नए रिश्ते और दोस्त, नई नई रुचियां और शौक शामिल होते जाते हैं। जब हम बचपन में थे, यानी वो कह रहे जब हम यंग थे, तब हमारे पेन फ्रेंड हुआ करते थे और अब रेडियो फ्रेंड और वॉइस फ्रेंड हमारे बन गए हैं। तो इस तरह से भी हम अलग अलग तरीके से खुद को देख सकते हैं, ढाल सकते हैं। और अब आप ये सुन सकते हैं एक गीत जिसे हम आपको सुनवाने वाले हैं, और इस गीत को किस फिल्म से लिया है आपसे पूछते हैं यही सवाल, लेकिन आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको किस बात के लिए टोका जाता है और आपने किस बात के लिए सबको सबसे ज्यादा टोका है।

बहू रानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी कह रहे हैं कि आज के युवा भले ही इलेक्ट्रॉनिक युग में पैदा हुए हैं और उनके प्यार का ढंग भी एआई से प्रभावित हो रहा है। घर के बुजुर्गों का प्यार देखें, उनके आगे ये मॉडर्न प्यार बिल्कुल टिकता नहीं। जरा सी देर में गुटरगो और जरा सी देर में लड़ाई हो जाती है। हम बुजुर्गों में कैसा सामंजस्य था, भले भरा पूरा परिवार था लेकिन हमारी श्रीमती जी के साथ चाय पीने, खाने और सोने में कभी कोताही नहीं करती थी। कहीं जाना भी हो तो साथ में भी जाती, अकेले जाने नहीं देती थी। इतना प्यार जवानी में कहाँ था, तब इतनी परवाह कहाँ थी। बस हम कमाने में लगे थे और वे घर गृहस्थी और बच्चों में बिजी रहती थी। अफसोस, साल भर पहले हमें छोड़ गई। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि बचपन का वो मौज मस्ती और बेफिक्री का दौर, बचपन के सुनहरे दिन होते हैं और वो दौर के बाद जैसे जैसे कदम जवानी की ओर बढ़ते हैं तो अंदर उत्साह और जोश का संचार होता है। यही जोश और उत्साह भविष्य को संवारने में मदद करता है और युवावस्था से सामाजिक जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। फिर इस जिम्मेदारी को निभाते हुए हमको वरिष्ठ होने तक निभानी पड़ती है जिम्मेदारियां। हमारे जीवन के इन तीनों पड़ावों में सबसे सुनहरा दौर बचपन का होता है, जो कभी लौट कर नहीं आता। वहीं हमारे साथी कहने कि हम भी सीनियर हैं पर फिर भी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे टोकना नहीं पड़ता पर वो लोग हर बात पर टोकते हैं, खाने पीने में और रोका टोकी करना, डांटना। वैसे कई बार हम ये भी होता है कि सीनियर सिटीजन वाकई बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं और जिन चीज़ों की उन्हें मनाही होती है वो जब वो खाने लगते हैं तो फिर घर के बच्चों को तो टोकना ही पड़ता है, ना माने तो थोड़ा सख्त भी होना पड़ता है। तो ये भी आप देखिए कि अगर आपकी सेहत के लिए या आपके भले के लिए टोका जा रहा है तो वहाँ आपको थोड़ा खुद भी समझना पड़ेगा और अपने मन को काबू में रखना पड़ेगा। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उम्र की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते एक दिन ऐसा आता है कि घर की सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाता है। जिनकी वृद्धि होती है वही वृद्धजन कहलाते हैं। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कैसे आज की भारत में बताया कि समय के साथ शरीर तो ढलता है लेकिन प्रेम और आत्मा बूढ़े नहीं होते, और उम्र की तीनों अवस्थाओं को अलग अलग खानों में बांटने के बजाय एक ही धागे में उन्हें पिरोया गया है। जहां बचपन यादों में है, जवानी दिल की धड़कन में, और बुढ़ापा इन दोनों के अनुभवों को समेटे हुए एक शांत सुखद ढलती शाम का आनंद ले रहा है। भाषा शैली काव्यात्मक, रोमांटिक और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से भरी हुई है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उम्र भले ही बढ़ती जाए लेकिन दिल में बचपन की मासूमियत और जवानी की खूबसूरत यादें हमेशा बनी रहती है। प्रेम और प्यार में बिताई हुई हर मुलाकात, हर पल की यादें जीवन को महका देती है। चांदी से बालों में भी वही अपनापन, मीठे बोलों में वही मिठास और धड़कनों में वही चाहत रहती है। उम्र की इस ढलती शाम में किसी अपने का चेहरा, उसकी नजर और जुल्फ का साया साथ हो तो जिंदगी आज भी खूबसूरत लगती है। तो इस खूबसूरत जिंदगी के नाम ये गीत आपको सुनवाते हैं और आपको ये पहचानना है कि किसने इस गीत को लिखा है।

नौनिहाल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत। बोल किसके हैं यही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सीनियर सिटीजन डे पर सलाम है हमारे उन एवरग्रीन रॉक स्टार्स को, जिनके चांदी से चमकते बालों में बादलों जैसी नरमी है और इनके मीठे बोल आज भी धड़कनों को जवान बना देते हैं। ऐसा हमारे साथी कह रहे कि पापा का नया स्मार्टफोन सीखना हो या मम्मी की पुरानी सहेलियों संग गपशप, इनकी जिंदगी की ढलती शाम भी किसी सुरीले सफर से कम नहीं। तो आज अपने घर के इन एवरग्रीन बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनका पसंदीदा गाना गुनगुनाइए और उनके तजुर्बों को एक जादू की झप्पी दीजिए। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जीवन के हर पड़ाव हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, चाहे बचपन हो, जवानी हो या फिर बुढ़ापा। हम जीवन भर विद्यार्थी ही रहते हैं। एक ओर बचपन हमें पुस्तकों के माध्यम से नैतिकता सिखाता है, वहीं दूसरी ओर जवानी हमें संघर्ष और सामाजिक जीवन और सामाजिक ज्ञान का बोध करवाती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जीवन का सफर महकती यादों का सफरनामा है, जिसमें खूबसूरत यादों के साथ जीवन का अनुभव होता है, जो किस्से कहानियों के रूप में बयान होता है। हर किस्सा कोई ना कोई सबक दे जाता है। उम्र एक पड़ाव है, जिंदगी तो बस जिंदा दिली का नाम है, क्योंकि दिल हमेशा जवान रहता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उम्र की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते कितने मौसम बीत गए हैं, बालों में चांदी उधर आई पर मन के रंग लाल पीले हैं। लोग भले ही कहे कि उम्र ढल रही है, पर हम तो कहते हैं कि उम्र की शाम सुहानी है, हम दोनों का साथ है अगर तो हर दिन एक नई कहानी है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं क्या कि आज की भारत में गीत पहचानने में उन्हें उलझन हुई, लेकिन कुछ गीत उन्होंने पहचाने और हमें ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि उनके जो भी गीत हैं वो सारे शामिल हो चुके हैं। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये जीवन का चक्र है। बचपन की शरारतें जीवन के जवानी के मीठे पल, दो दिलों का टकराना बुढ़ापे में, उन सुनहरे पल को याद करना, शरीर जरूर कमजोर हो जाता है पर दिल हमेशा जवान रहता है। हमें इस जज्बात में जीना है, जिंदगी को खुशनुमा बनाना है। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं, मेरे लिए तो सबसे वरिष्ठ, सबसे बड़े ज्ञानवर्धक विविध भारती है, जो मेरे पिताजी ने सुनी, मेरे दादाजी ने सुनी, परिवार ने सुनी, अभी मैं सुन रहा हूँ, अब आने वाला कल मेरे बच्चे सुनेंगे। तो सबसे बड़े विविध भारती के ये वरिष्ठ उद्घोषक है, जो हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी से रूबरू कराते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बुढ़ापा अजीब है, हमारे दादा दादी एक दिन नहीं जाता जब झगड़ा नहीं करते हों, लेकिन एक पल एक दूसरे से दूर भी नहीं रह सकते। दादी को अगर दादाजी खाना ठीक से न खाए तो खुद भी ठीक से नहीं खाती हैं। उनको एक ही बात की टेंशन है कि मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। तो एक वक्त के बाद ये दोनों आपस में एक सोल की तरह बन जाते हैं, ऐसा इनका कहना है। बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज की रचना शाश्वत सत्य को रेखांकित करती है कि शरीर भले ही उम्र की सीढ़ियां चढ़ रहा हो, पर मन और भावनाएं हमेशा तरोताजा रहती हैं। बचपन की मासूमियत से लेकर जवानी के प्रेम और मुलाकातों तक हर पल की यादें बुढ़ापे में जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाती हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उम्र भले ही अभी 26 की है, पर दिल सदियों पुराना प्यार समझता है। तुम्हारे मीठे बोलों पर ये दिल आज भी हद से ज्यादा धड़कता है। वैसे तो नजरें फिराने को हंसी चेहरे बहुत हैं इस महफिल में, पर क्या करें, ये दिल तो सिर्फ तुम्हारी जुल्फ के साए में ठहरता है। भाई क्या बात है। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि ये गीत किस फिल्म का है, आवाज भी पहचान लीजिए।

0: अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: विविध भारती के जश्न में तो आपका इंतजार रहेगा ही, लेकिन हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बस मैं यही कहना चाहूंगा कि उस घर के लोग बड़े भाग्यवान होते हैं जिनके घरों में बुजुर्ग होते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद से भी पहले महत्वपूर्ण होता है और ये नहीं भूलना चाहिए कि आगे चलकर हम भी बुजुर्ग होंगे। बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, ओल्ड इज गोल्ड। वहीं हमारे एक साथी कह रही है, मैं तो सीनियर सिटीजन में आ गई हूं पर मैं अभी भी बच्चों की तरह ही सोचती हूं। मेरा अपने से छोटों में मन लगता है। मैं अपने आप से ही फेसबुक, यूट्यूब, गूगल और भी साइट्स देखती रहती हूं। विविध भारती में भी एक्टिव हूँ। फेसबुक के कई म्यूजिक ग्रुप पर भी एक्टिव हूँ। तो इसी तरह से अगर आप एक्टिव रहते हैं तो उम्र का जो असर है, उम्र की जो भी ऐसा कहते हैं कि इतनी उम्र हो गई अब ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें बिल्कुल दूर होती चली जाती हैं। और आपको देखकर हम तो बस यही कहेंगे जो गीत कहने वाला है आपके लिए। फिल्म का नाम बताइएगा।

0: नजर नहीं हट।
1: कभी कभी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं, जब तक हम अपने मन को बच्चे जैसा रखते हैं तब तक हम कभी बूढ़े नहीं होते। बहुत ही अच्छा संदेश, और इसी संदेश के साथ आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

नमस्कार, मैं हूं यूनुस खान। आज वरिष्ठ नागरिक दिवस है। जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती जा रही हैं, जीवन शैली बेहतर हो रही है और हमारी जीवन अपेक्षा बढ़ती चली जा रही है, यानी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा आज वरिष्ठ नागरिकों का हिस्सा है, बुजुर्गों का हिस्सा है। बुजुर्ग हमारे समाज का एक बहुत जरूरी अंग है। उन्होंने अपनी एक शानदार जिंदगी बिताई और अब वो सेवानिवृत्त जिंदगी बिता रहे हैं। उन्हें भी अपना प्यार चाहिए, उन्हें भी परिवार के लोग चाहिए जो थोड़ी देर उनके साथ बैठें, बातें करें, उनकी समस्याओं के बारे में, दुनिया भर के बारे में उनसे विचार विमर्श करें और उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करें।

बुजुर्गों को सिर्फ अपना समय देने की ही जरूरत नहीं है, बल्कि समय के साथ साथ जिस तरह से तकनीक बदल रही है, समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, उन्हें इस पूरी धारा में शामिल करने की जरूरत है। ये होना चाहिए कि नई पीढ़ी थोड़ी देर उनके पास बैठे, उन्हें मोबाइल चलाना, मोबाइल की नई तकनीक सोशल मीडिया सिखाए, उन्हें कंप्यूटर या टैबलेट चलाने के गुर सिखाए, उसकी ट्रिक सिखाए, और उन्हें ये भी बताए कि कैसे वो अपने जीवन को रचनात्मक बना सकते हैं। कई घरों में ये भी देखा गया है कि नई पीढ़ी के लोग पत्रिकाओं को पढ़कर अपने बुजुर्गों को सुनाते हैं। ये भी एक तरीका है बुजुर्गों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का। अब हमें ये सोचना है कि हम अपने परिवार और समाज के बुजुर्गों के साथ किस तरह अच्छा बर्ताव कर सकते हैं और उनकी उंगली पकड़कर जिंदगी के सफर में आगे बढ़ सकते हैं।

जिंदगी को जीकर ही समझा जा सकता है। बुजुर्गों के पास जीवन का एक विराट अनुभव है और ये अनुभव नई पीढ़ी के लिए एक बहुत जरूरी मार्गदर्शक बन सकता है। नई पीढ़ी के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो बुजुर्गों को दरकिनार न करें, हाशिए पर न रखें, बल्कि उनके अनुभवों से सीखें, क्योंकि दुनिया की जैसी समझ बुजुर्गों के पास होती है वो नई पीढ़ी के पास आ ही नहीं सकती। उन्होंने जिंदगी का एक लंबा सफर बीहड़ रास्तों पर तय किया है, अपनी जेब में अनुभवों को जमा करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते चले गए हैं। इसलिए बुजुर्गों से हमें आशीर्वाद भी लेना है, उनके अनुभवों से सीखना भी है और उनके साथ बैठकर समाज को बेहतर बनाना है।

ये थी आज की त्रिवेणी। आज है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। हमें अपने आसपास के बुजुर्गों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी बात के साथ इजाजत लेता हूं मैं, आपका दोस्त यूनुस खान।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों के चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में खाद्य सुरक्षा तथा सहयोग का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा की। पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में 9 नागरिक मारे गए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में

0: पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवभव है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए देश को जिस तरह के प्रशासन की जरूरत है उसे यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान काफी हद तक संभव बनाएंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से ही युवा देश सेवा करने के सपने लेकर संघ लोक सेवा आयोग के पास आते रहे हैं और यूपीएससी ने यह पक्का किया है कि उन्हें सिर्फ मेरिट के आधार पर ही परखा जाए। उन्होंने बताया कि अभी सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 30% है। सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की औसत खुदरा कीमतों में अगस्त के उच्चतम स्तर से 15% की गिरावट आई है। ये गिरावट सरकार द्वारा चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में इसकी सुचारू आवाजाही को आसान बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का असर दिखाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र बलों के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो जोर दिया जा रहा है वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी लागू की जानी चाहिए। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने और उन्हें आत्मसात करने तथा देश और दुनिया भर में बदलते मानकों के साथ तालमेल बिठाने का आग्रह किया।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशियंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
1: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से लंबित महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
3: छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी के जल बंटवारे का विवाद पिछले कई वर्षों से लंबित है। ओडिशा ने नवंबर 2016 में केंद्र सरकार से विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण गठित करने की मांग की थी। बातचीत से समाधान नहीं निकलने के बाद मार्च 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया। ओडिशा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऊपरी हिस्से में बनाए जा रहे जल संसाधन परियोजनाओं से गैर मानसूनी मौसम में उसके हिस्से में पानी का प्रवाह प्रभावित होता है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष मुख्य रूप से अपने हिस्से के जल के उपयोग और राज्य की सिंचाई, औद्योगिक तथा घरेलू आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। हाल के महीनों में केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के बीच बातचीत, तकनीकी सहयोग और आपसी सहमति के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक वैध राष्ट्रीय उपायों को भोजन का शस्त्रीकरण बताए जाने के

0: खिलाफ चेतावनी दी है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के एक सत्र के दौरान ये बात कही। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि साझा मकसद ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि भोजन सुरक्षा स्थिरता और सहयोग का जरिया बना रहे। केंद्रीय मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसे लागू करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान व्यापार और आर्थिक सुरक्षा के लिए यूरोपीय आयुक्त मारो सेफकोविच के साथ बातचीत की। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दुबई में कैप्टन स्मिथ मच्छार के परिवार से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राजदूत ने सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
1: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जांच में घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा। ये भी जांच की जाएगी कि घटना का संबंध किसी आतंकी गतिविधि से था या इसमें पहले से कोई योजना शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबिल पुल ने नदी के उत्तरी और दक्षिणी तटों को जोड़कर लोगों की जिंदगी में किस तरह का बदलाव लाया है।
2: 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोगीबिल पुल के उद्घाटन ने असम में परिवहन के लिए एक नया क्षितिज खोल दिया। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। बोगीबिल पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। डिब्रूगढ़ ऊपरी असम का एक प्रमुख शहर है और यह पूरे क्षेत्र के साथ साथ पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र है। 4.94 किलोमीटर लंबा यह डबल डेकर रेल कम रोड पुल भारत में अपने तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। हालांकि इसकी आधारशिला 1997 में रखी थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य वर्षों तक काफी हद तक रुका रहा। बाद में एनडीए सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। 2018 में पुल का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने इसे उस क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन रेखा करार दिया था।
1: ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। भाई और बहनों, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। इससे असम और अरुणाचल के बीच की दूरी सिमट गई है।
2: आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए कुछ ही घंटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। पहले आने जाने की इस यात्रा में 2 दिन तक का समय लग जाता था। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। देश भर में कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया है। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि कल हुए हमलों में कुनार के सुल्तान जिले और हेलमंद के गर्मसे जिले में 3 मकान भी नष्ट हो गए। और अब जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: भारत ने एशियाई खेलों में नौकायन स्पर्धा में आज अपना पहला पदक जीता। जापान में पुरुषों की स्केफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने शानदार निरंतरता का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता और इन खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है। भारत पदक तालिका में 62 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है, जिनमें 10 स्वर्ण, 21 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों की चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: किशोर कुमार की आवाज में चलती का नाम गाड़ी फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत, और इससे ठीक पहले आपने सुना तीसरी मंजिल फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव।

0: तीन देवियां फिल्म के गीत में मोहम्मद रफी को आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल आप सुन रहे थे। राहुल देव बर्मन का संगीत समाधि फिल्म के इस गीत में आपने सुना।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें, तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में मेरे सनम फिल्म का ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।

इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली। बस कुछ ही पलों के बाद

0: की सहेली।
1: नमस्कार सभी सखियों को, सभी सखाओं को, और साथ ही आज हमारे साथ हैं कौन? नेहा।
2: तो आरती जी, नेहा शर्मा का नमस्कार आपको भी और सभी सुनने वालों को भी।
1: बिल्कुल। और नेहा, आज बहुत दिनों बाद हम लोग एक साथ आए ना।
2: और इतने सारे दिन लेकर आए।
1: आज समझ लो दिनों की, यानी कि दिवस की बहार है पूरी।
2: हाँ,
1: तो हम लेकिन बीच बीच में, बात बात में हम अपने दिवस की बात भी करते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमें बता देना चाहिए कि आज हम कौन कौन से विषय लेके आए, ताकि जो हमारे श्रोता है जो सुन रहे हैं वो अपने विचार हमारे साथ साझा कर सके। तो आज हम लेकर आए हैं कहानी पद्मश्री के अंतर्गत लक्ष्मी

0: बरुआ जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, उनके जीवन संघर्ष के बारे में बात करेंगे। और साथी क्या लेकर आए हैं?
1: मुझे कुछ कहना है, हमारे साथियों ने कहना शुरू कर दिया है, संगीत का जादू। हमने कहा था इस विषय पर कुछ कहें तो उन्होंने इतनी सारी बातें कहनी शुरू कर दी है। और उपयोगी टिप्स में आज हम बात करेंगे वृद्ध जनों की देखभाल किस तरह से हो,
0: कैसे करनी चाहिए। कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई साइंस प्रोजेक्ट है, बस कुछ चीजों को हमें ध्यान रखना है, अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी सहायता करनी है, बस सहायता, एक सहायक की तरीके से हमें काम करना है, उनके अपने की तरह से काम करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये सारी चर्चा हम करेंगे, साथ में बात करेंगे, लेकिन एक गीत सुनने के बाद, है ना?
1: देखिए, आते संगीत,
0: क्योंकि संगीत का दिन है ना, तो संगीत के दिन की शुरुआत अगर गीत से करें तो सबसे बढ़िया।
1: तो कार्यक्रम में भी संगीत का जादू छाने देते हैं और कार्यक्रम में पहला गीत आने देते हैं।
0: बिल्कुल।

0: आरती जी, संगीत की तो इतनी बातें हो गई, लेकिन आपने जब कहा कि इतने सारे दिवस हैं
1: हाँ
0: तो दिन भी ऐसे घूमने लगा हमारा भी, क्या क्या है, कौन कौन से दिवस हैं जरा बताइए तो,
1: बहुत
0: सस्पेंस क्यों है इतना?
1: बिल्कुल, और इतने स्वादिष्ट दिवस है ना,
0: हाँ,
1: बहुत मजा आ जाएगा। क्योंकि देखो, एक तो है शाकाहार दिवस,
0: हाँ
1: यानी कि अच्छी अच्छी चीजें खाइए, फल फ्रूट, फल नहीं माफ
0: हाँ
1: कीजिएगा, अब हम खा सकते हैं सब्जियां, बढ़िया
0: हाँ
1: बढ़िया। वैसे शाकाहार में फल भी
0: फल भी
1: आता
0: खा
1: है,
0: सकते हैं।
1: सब्जियां
0: हाँ
1: आती हैं,
0: हाँ
1: सब कुछ आता
0: जब
1: है।
0: उपवास करते हैं तो बस फलाहार
1: हाँ,
0: बोल
1: फल
0: बोल के जो
1: खाते हैं।
0: खाते हैं
1: हाँ, वो फलाहार भी
0: हम
1: वही है,
0: जी
1: तो सब्जियां हरी हरी खा सकते हैं, बढ़िया।
0: हाँ
1: और हमारा खून भी बढ़ाती हैं, हमारा जो दिमाग है उसको भी शार्प करती हैं, तेज करती हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो शाकाहार में बहुत सारे गुण भी समाए, और साथ ही हम बात करेंगे, पूछेंगे बल्कि अपने साथियों से, जो श्रोता है उनसे, कि उन्हें क्या पसंद है, चाय की कॉफी।
0: लेकिन
1: वैसे
0: ये क्यों
1: तुम्हें क्या
0: पूछ रहे हैं
1: पसंद
0: आप,
1: है?
0: ये क्यों पूछ रहे हैं आप, शाकाहारी में ये सब कैसे आ
1: देखो,
0: गई?
1: एक तो शाकाहार दिवस है,
0: हाँ
1: समझो ना, थोड़ी सा जो हम हिंट दे रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, बताना चाह रहे
0: समझ
1: हैं।
0: तो गए हम भी कि कॉफी या चाय में से क्या पसंद है, तो हम अपना जो जवाब है वो बचा के रखेंगे उस समय के लिए जब हमारे सुश्रोता अपने जवाब दे देंगे तब।
1: बिल्कुल, आप लोग भी बताइए आपको क्या
0: हाँ
1: पसंद है, चाय की कॉफी?
0: फिर पता
1: बिल्कुल
0: चलेगा कि आज सखी सहेली के बाद चाय मिलेगी या कॉफी मिलेगी
1: बिल्कुल।
0: या दोनों ही नहीं मिलेगा जी
1: नहीं, कॉफी या चाय में से आप बताइए आपको क्या पसंद है,
0: जी
1: तो क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ हमारा दिवस है ना।
0: और जो शाकाहारी दिवस आज है हम बता रहे हैं, तो दिन भी थोड़ा हरा भरा है और शाकाहारी लोगों की मतलब बातें करें, शाकाहारी जिन्हों खाते हैं, मतलब सभी खाते हैं, शाकाहारी तो सब होते
1: बिल्कुल,
0: हैं क्योंकि सभी एक ना एक कभी ना
1: शाकाहार
0: कभी
1: के
0: तो
1: साथ
0: शाकाहारी
1: में, शाकाहार के
0: शाकाहार
1: साथ
0: के
1: में भी
0: साथ में कुछ
1: आप।
0: कुछ और दूसरे आहार भी लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना शाकाहारियों की, इनकी थाली को देख कर, सब्जियां देखकर डॉक्टर भी बोल देते कि भाई वाह, रंगों का पूरा पैलेट ही यहाँ पे भरा हुआ है।
1: बिल्कुल
0: तो विश्व शाकाहारी दिवस में हम यही बात कर सकते हैं कि शाकाहारी भोजन और पौधों से मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनके संतुलित खान पान के बारे में सोचने का मौका ये दिन हमें देता है।
1: बिल्कुल। लेकिन आज हम कोई भारी भरकम से आपको भाषण नहीं देने वाले हैं
0: नहीं दे
1: कि
0: रहे?
1: हाँ, कि आपको ये करना चाहिए,
0: अरे
1: वो करना
0: जी
1: चाहिए। आपको जिस कलर की, जिस रंग की सब्जी पसंद है
0: हाँ
1: आप खाइए, जो फल पसंद है वो खाइए। और देखिए, खाने के समय भाषण सुनना ऐसे ही लगता है जैसे कि गर्मा गर्म पकौड़े सामने रखे हों, और कोई कहे पहले इसमें से आप कैलोरी गिननी, कि आपको कितना इसमें से, आपको आपके वजन बढ़ाने वाली
0: हाँ
1: चीजें हैं
0: हाँ
1: इसमें, ऐसी चीजें वैसी चीजें, तो उस समय तो हमें लगता है ना कि हम बस एंजॉय करें उसको, आनंद उठाएं उस पकौड़ों का।
0: हाँ
1: तो वैसे ही है, शाकाहार दिवस के बारे में बात करेंगे, तो हम अपनी अपनी बात करिए, आप बताइए कि भाई आपको कौन सी सब्जी पसंद है, क्या
0: हाँ
1: खाना अच्छा लगता है आपको, मतलब कौन सी सब्जी को किस तरह से बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं एक ही
0: जी
1: सब्जी को, तो ये बता सकते हैं आप। और साथ ही बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा आपके जो जो प्लेट रहती है उसमें किसका राज रहता है, आलू का, गोभी का, टमाटर का, मिर्ची का, किस चीज का सबसे ज्यादा रहता है बोल
0: नहीं अभी तो लग
1: वाला?
0: रहा है आलू ही जीत जाएगा वैसे, लेकिन पनीर भी कुछ कम नहीं है क्योंकि पनीर कुछ घरों के लिए तो सब्जी नहीं है बल्कि परिवार का एक सदस्य जैसा होता है। कहते कि क्या
1: बिल्कुल,
0: बनेगा ते पनीर,
1: हाँ,
0: कल कल क्या बना था पनीर, आज क्या बनेगा पनीर,
1: कोई
0: आज थोड़ा
1: कोई
0: सा
1: आ
0: अलग
1: रहा
0: बना
1: है
0: है
1: तो भी पनीर, कोई
0: हाँ
1: नहीं आ रहा है तो
0: तो
1: भी
0: भी पनीर, और बहुत
1: पनीर।
0: दिनों से खाया नहीं इसलिए भी पनीर तो पर कुछ अलग अलग पनीर की भी बहुत सी रेसिपी होती है, तो अलग अलग बनाते हैं कि कभी क्या बनेंगे, तो शाही पनीर बनेगा, कभी कुछ पनीर का अलग अलग चीजें, कभी भुर्जी बन जाती है पनीर की, तो
1: हाँ,
0: पनीर भी अपने आप को रंगों में अलग अलग
1: बिल्कुल,
0: रूपों में ढाल
1: हरा
0: लेता
1: भरा भी
0: है।
1: पनीर हो जाता है जब
0: हाँ
1: हम उसमें कोई हरी सब्जी मिला के बना लेते हैं।
0: और सही बात ये भी है कि शाकाहारी भोजन बोलते साथ ऐसे जो कहते हैं ना घास फूस बोलते कई बार लोग, तो वो
1: हाँ,
0: घास फूस नहीं, ऐसा नहीं कि सलाद की प्लेट लेकर बैठ गए तो ही शाकाहारी, भाई शाकाहारी व्यंजनों की जो बातें हैं वो
1: बिल्कुल,
0: तो अपने आप में ही है क्योंकि इतनी सारी विविधता है हमारे ही रसोई में, हम जब देखते हैं शाकाहारी खाने की तो ऐसा लगता है कि खाना खा लें कि इसकी फोटो खींच लें, इतना कलर रहता है, इतना रंग
1: सच
0: रहते
1: में
0: हैं,
1: सच
0: तो
1: में
0: बड़ा आनंद भी आता है।
1: बिल्कुल। और दाल, चावल, रोटी, सब्जियां, फल, अनाज, दही, दूध, पनीर, मेवे, कई तरीके के जो पौधे होते हैं वो उनपे जो आधारित फल होते हैं, फ्रूट होते हैं, और ये सब्जियां होती हैं, शाकाहार होता है। तो अगर संतुलित भोजन हो तो शाकाहारी थाली जो होती है वो स्वाद और पोषण दोनों से भरी हुई हो सकती है।
0: जी
1: और शाकाहारी भोजन में भी संतुलन बहुत जरूरी होता है, कि एक ही चीज अब मत खाते रहिए कि
0: हाँ
1: हमने पनीर खाने, तो पनीर चला ही चला जा रहा है, चला ही चला जा रहा है,
0: हाँ
1: बाकी चीजों को भी मौका दीजिए अपनी स्वाद को पहचानने का। तो दालें हैं और प्रोटीन के और भी बहुत सारे स्रोत हैं, और साबुत अनाज हो गए, मौसमी फल सब्जियां हैं, मेवे हैं, बीज हैं, और बहुत से आवश्यकता अनुसार जैसे कि आप दूध दही का भी सेवन कर सकते हैं, उसको भी तरह तरह से बना सकते हैं, तो इससे पौष्टिकता तो आती है और साथ ही विविधता भी आती है खाने में।
0: और हरी सब्जी को देख के ऐसे प्लेट से भागने लगते हैं, बोले अरे अरे हरी सब्जी क्यों खानी है।

0: और
1: होता है।
0: कोफ्ता, वाह हाँ, क्या क्या बात है।
1: देखिए लौकी पे ही हमारा कुछ अलग सा ऐसा प्रेम जागृत हो चुका है।
0: कहने की मतलब कहने का मतलब है कि एक छोटी सी एक सब्जी जिसपे आप नहीं खाना चाहते हाँ, वो किस तरीके से कितने कितने तरीके से बन सकती है।
1: तो इस तरह से बन सकती है, व्यंजन विधियों में तो हम बताते ही हैं, लेकिन जब इतनी बातें होगी खाने की, जब ज्यादा बातें हो जाती है ना, तो हमें एक गीत चला लेना चाहिए,
0: क्योंकि थोड़ा थोड़ा हटे वहां से
1: दिमाग और थोड़ा जो मुंह में पानी आ गया उसका क्या किया जाएगा।
0: बिल्कुल, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा।

सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आनंद। सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे।

0: तो आरती जी, 3 तारीख का जो जश्न है वो तो बड़े जोर शोर से होने वाला है, और हमारे सभी सभी जो श्रोता हैं वो भी फेसबुक पेज के जरिए लाइव सुनेंगे,
1: बिल्कुल,
0: शायद
1: सबको
0: देख सकते
1: इंतजार
0: हैं, या
1: होगा।
0: लाइव सुनना तो सुनने तो मिलेगा ही उन्हें।
1: बिल्कुल। और अब हम बढ़ते हैं अगले अपने सेगमेंट की तरफ, जो
0: जी
1: कि है कहानी पद्मश्री की। तो आज हम लेकर आए हैं जिनकी कहानी, वो है लक्ष्मी बरुआ, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता।

0: जी, और कभी कभी समाज को बदलने के लिए किसी बड़े पद की नहीं, बस एक बड़े सपने की जरूरत होती है, और एक ऐसा सपना जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए देखा जाए जिनकी आवाज उठाने के लिए उनके साहस की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल। और आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो ऐसी प्रेरणादायक महिला हैं, क्योंकि इन्होंने बैंक को सिर्फ पैसा जमा करने और कर्ज लेने की जगह नहीं माना, बल्कि उसे महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सम्मान का माध्यम भी बनाया। जैसा कि आपने नाम कहा, लक्ष्मी बरुआ हैं ये, और असम की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी महिला है। उनका जीवन विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के प्रयासों के लिए जाना जाता है।
0: बिल्कुल। और लक्ष्मी बरुआ का जन्म हुआ आसाम के जोरहाट जिले में हुआ था उनका जन्म, और उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था। परिवार की कमजोर आर्थिक परिस्थितियों के चुनौतियों के बावजूद शिक्षा और समाज के लिए बहुत कुछ करने का उनका हौसला जो था वो बना रहा।
1: 1973 में प्रभात बरुआ से इनका विवाह हुआ और इसके बाद इनकी जिंदगी ने नई करवट ली। प्रभात प्रगतिशील सोच के मालिक थे और लक्ष्मी के लिए वो सुलझे हुए जीवन साथी और मेंटोर दोनों साबित हुए, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ उन्हें कॉलेज की अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि 1980 में जब वो जोरहाट के वाहना कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने में कामयाब हुई, तब प्रभात ने उन्हें नौकरी करने के लिए भी प्रेरित किया।
0: बहुत बड़ी बात है ये
1: जी,
0: उस समय के लिए खास तौर पर। और विवाह के बाद परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्होंने समाज के लिए काम करने का अपना संकल्प छोड़ा नहीं। ग्रामीण विकास, वयस्क शिक्षा, जरूरतमंद महिलाओं की सहायता और वंचित लोगों के बीच काम करते हुए उन्होंने उन्हें बहुत करीब से देखा था कि आर्थिक निर्भरता जो होती है वो महिलाओं के लिए जो उनका जीवन होता है उसको कितना सीमित कर देती है।
1: जी। तो लक्ष्मी बरुआ ने बैंक में काम करते हुए एक ऐसी समस्या को महसूस किया जो आज हमें तो छोटी लग सकती है, लेकिन उस समय बहुत बड़ी थी। जैसे कि गरीब और कम पढ़ी लिखी महिलाएं जो बैंक तक आती थीं, लेकिन बैंकिंग की जटिल प्रक्रियाओं और आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण उन्हें कई बार मदद ही नहीं मिल पाती थी।
0: बिल्कुल। और यहीं से उनके मन में सवाल उठा कि अगर बैंक की व्यवस्था इन महिलाओं तक आसानी से नहीं पहुंच सकती तो क्यों ना ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो महिलाओं की जरूरतों को समझे। और 1983 में उन्होंने जोरहाट के दक्षिण में महिला समिति की शुरुआत की।
1: और महिलाओं के साथ काम करते हुए उन्होंने महसूस किया कि छोटी छोटी आय अर्जित करने वाली महिलाओं के पास भी सुरक्षित बचत और वित्तीय जानकारी के पर्याप्त साधन नहीं थे। महिलाओं के लिए बैंक खोलने का विचार उनके मन में 1990 के आसपास आकार लेने लगा था।
0: बिल्कुल। लेकिन सपना देखना तो आसान था इतनी बड़ी बात को, लेकिन उसे सच करना उतना आसान भी नहीं था। लक्ष्मी बरुआ को कई कठिनाइयों और अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा। लगभग 8 वर्षों तक उन्होंने प्रयास किए और उसके बाद उनका सपना वास्तविकता की दिशा में बढ़ सका, और अंततः 1998 में जोरहाट में कनकलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना हुई।
1: और इस संस्था का उद्देश्य केवल बैंकिंग सेवा देना नहीं था, इसका उद्देश्य था महिलाओं में बचत की आदत को विकसित करना, उन्हें वित्तीय जानकारी देना, स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराना और आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनाना। और ये बैंक अपने स्वरूप में बहुत ही खास था।
0: ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित था और इसके संचालन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बैंक ने कम आय वाले लोगों और महिलाओं तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया। छोटी बचत से लेकर ऋण और वित्तीय जागरूकता तक इस पहल ने बैंकिंग को उन महिलाओं के करीब लाने का प्रयास किया जो पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से दूर थी।
1: और एक छोटा सा विचार है आरती जी, और ये छोटे से विचार ने ही धीरे धीरे हजारों खातों और अनेक परिवारों के जीवन को प्रभावित किया। लक्ष्मी बरुआ की सोच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था कि महिला को सिर्फ सहायता देना नहीं है बल्कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर देना होगा।
0: यही सबसे बड़ी बात है कि अवसर देना चाहिए उनको, और क्योंकि जब किसी महिला के पास अपनी कमाई होती है, बचत होती है, बैंक खाता होता है और आर्थिक फैसले लेने का आत्मविश्वास होता है तो उसका प्रभाव केवल उस महिला तक सीमित नहीं रहता है और उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है।
1: हाँ, और बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ता है इसका असर, घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, धीरे धीरे पूरे समाज पर पड़ता है। और यही कारण है कि लक्ष्मी बरुआ की कहानी केवल बैंक की कहानी नहीं है बल्कि आत्मसम्मान की कहानी है।
0: बिल्कुल। उनके सामाजिक और महिला सशक्तिकरण के कार्यों को अनेक स्तरों पर सम्मान भी मिला। 2016 में नारी शक्ति पुरस्कार से जुड़े सम्मान के माध्यम से कनकलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कार्य को भी राष्ट्रीय पहचान मिली और लक्ष्मी बरुआ को देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और फिर आया वर्ष 2021 जब सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया।
1: और ये सम्मान उनके लिए नहीं बल्कि उन असंख्य महिलाओं के संघर्ष और आत्मनिर्भरता की कहानी के लिए महत्वपूर्ण पहचान बना जिनके लिए उन्होंने वर्षों तक काम किया। लक्ष्मी बरुआ का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि सच्चा बदलाव वही है जो किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समुदाय को अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत दे। तो जब महिलाएं काम करती हैं, कहते हैं ना वो जिस तरह की बात है कि महिला अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार पूरा समाज शिक्षित होता है, उसी तरह से जब एक महिला ये सोचती है कि महिलाओं के लिए उन्हें कुछ करना है या समाज के लिए कुछ करना है तो बदलाव जरूर आता है।
0: बिल्कुल। और एक बदलाव हम लेके आते हैं कि एक गीत संगीत में से कोई गीत सुन लेते हैं।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: तो आरती जी, हम तो बातें कर रहे हैं लेकिन हमारे साथियों ने लिखना शुरू कर दिया है कि कौन कौन सी सब्जियां उनके घर में बनती हैं।
5: अच्छा,
4: तो हमारे एक साथी कह रहे हैं, हम तो सब्जी आजकल गोभी की ज्यादा खाया करते हैं। कल आलू की सब्जी खाई थी, आलू भी स्वादिष्ट थे। आगरे के थे वो मीठे होते, पंजाब का आलू स्वादिष्ट नहीं होता।

0: है भाई, हमें तो
1: अच्छा
0: आलू एक जैसा ही लगता है
1: बिल्कुल।
0: साला
1: और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि सही कहा आपने, आलू ही जीतेगा, सबसे ज्यादा आलू पसंद है हमारे घर में सबको, पनीर तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे पनीर तो
0: चलो
1: सभी को पसंद होता है, चलिए आपको पसंद नहीं है
0: नहीं,
1: तो
0: सबको
1: आप
0: पसंद
1: आलू
0: नहीं
1: खा
0: होता है,
1: सकते हैं।
0: सभी को आलू भी
1: हाँ
0: पसंद नहीं होता, सभी को कुछ भी
1: बिल्कुल,
0: चीजें
1: क्योंकि
0: पसंद नहीं।
1: आलू में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन मिल जाता है, मिल जाता है, कहते
0: हाँ
1: हैं ना उसमें आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
0: हमारे एक साथी कह रहे, कल ही हमने हमारे घर पनीर बनाया था, छोटी वाली बहन ने बकायदा प्यार से दही मटर छोले और आलू मिक्स कर करके बनाया था,
1: अरे वाह
0: लेकिन बाद में पता चला कि आज तो वो उपवास है, फिर क्या हुआ, वो रह
1: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि प्लेन रोटी के साथ पनीर की भुर्जी अच्छी लगती है, जैसे कि तुमने बताया था नहीं,
0: हाँ
1: क्योंकि उसमें मसाले कम जाते हैं और पनीर का रियल टेस्ट मिलता है। ये तो सही बात है, मसाले कम डालो तो उसका जो स्वाद है ना वो निखर के आता है।
0: बिल्कुल, और पनीर की बात भी एकदम निराली है, क्योंकि एक दिन जैसा सफेदी लिए पनीर होता है ना, उसको इतना ज्यादा मसाले में डालने में ऐसा लगता है कि कुछ तो बेचारे को हम बहुत परेशान कर रहे हैं ऐसा लगता है ना।
1: बिल्कुल
0: हमारे एक साथी जो अलग अलग बातें तो लिख रहे हैं, लेकिन अभी देखिए
1: हाँ।
0: सब्जी की जो बातें उन्होंने लिखी, आलू आलू सबके साथ चल जाता है,
1: सबके साथ
0: तो
1: बिल्कुल
0: आलू हमें सिखाता है कि हमें उसकी तरह बनना चाहिए, कि हम सबके साथ
1: सबके
0: घुल
1: साथ
0: मिल
1: एडजस्ट
0: जाए
1: हो जाए।
0: और अकेले भी हमें खाया जा सके, यानी खाया
1: हाँ
0: तो नहीं जा सके बट अकेले भी हम चल सके अपने जीवन
1: बिल्कुल
0: में, और
1: हाँ
0: सबके साथ मिलकर भी चल सके।
1: बिल्कुल
0: लेकिन पनीर को हमेशा किसी न किसी चीज की जरूरत होती है ना,
1: हाँ
0: खाली
1: ये तो
0: पनीर
1: है।
0: भी खाया जाता है, अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप उसे सेक के खाते हैं, भले चाट मसाला डाल के खाते हैं,
1: लेकिन
0: तो उसका जो
1: पनीर
0: टेस्ट बढ़ जाता है।
1: वो तो है नहीं है, लेकिन पनीर को बैगन के साथ नहीं खा सकते ना, आलू को आप
0: हाँ
1: बैगन के साथ भी खा
0: आलू को
1: सकते
0: किसी
1: हैं,
0: के आलू को पनीर के साथ भी खा सकते
1: बिल्कुल आलू को पनीर
0: हैं
1: के साथ और खा सकते हैं, और साथ ही जो बैगन के साथ में आलू खा सकते हो, ऐसी सब्जियां जिनके साथ नहीं पनीर नहीं खा सकते उनके साथ भी आलू चल सकता है, यानी कि आलू जीतता है,
0: तो आलू को हम जिताएं, उससे पहले एक अंतराल ले
1: अंतरा
0: लेते
1: ले
0: हैं।
1: लेते हैं।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली।
1: सखी सहेली,
0: सिर्फ हम आलू गोभी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे संगीत।
1: हाँ बिल्कुल, आलू गोभी की हमने बात कर ली है जी। अब हम संगीत पे आते हैं। तो संगीत कुछ सुरों का मेल भर नहीं है, बल्कि वो एहसास है जो बिना कुछ कहे दिल तक पहुंच जाता है। यानी कि जब हम गीत सुनाते हैं, जब कहते हैं ना कि हमने कार्यक्रम के बारे में बता दिया, सब विषय बता दिए, अब पहले गीत, यानी कि शुरुआत हम जब कार्यक्रम की संगीत से करते हैं ना, तो पूरा जो कार्यक्रम है वो संगीतमय हो जाता है ना, एक रिदम में आ जाता है।
0: हाँ, जब हम बहुत देर तक बातें करते रहते हैं तो बीच में एक संगीत आता है, तो एक अलग सी अनुभूति भी होती है, भाव अलग हो जाते हैं।
1: और कभी कोई धुन हमें हंसा देती है, तो कभी वही धुन अनकहे आंसू भी ले आती है।
0: और कभी ऐसा भी महसूस किया हो हमारे श्रोताओं ने कि कोई पुराना गीत अचानक जब सुनाई देता है तो हम बरसों पीछे लौट जाते हैं, वही कमरा, वही मौसम, वही चेहरे और वही अधूरी सी कहानी। संगीत के पास यादों को सहेज कर रखने की एक अनोखी शक्ति होती है, और एक धुन जिसे हमने शायद वर्षों से नहीं सुना है, लेकिन पल भर में अगर हमने उसे सुना तो पल भर में बीते हुए समय का पूरा दरवाजा खोल देती है।
1: कभी कभी लगता है ना, जब कोई पुराना गीत सुन रहे होते ना, तो एकदम से खो जाते हैं उसी में, उस पूरा दृश्य हमारे सामने आने लगता है। तो संगीत खुशी में हमारा साथी है और उदासी में हमारा हमराज। जब हम थके हुए होते हैं, जब हमारा मन थका हुआ होता है, कोई मधुर राग भीतर जैसे धीमी सी रोशनी जला देता है। जब दिल किसी बात से भारी होता है, संगीत उस दर्द को शब्द दिए बिना समझ लेता है। और शायद इसीलिए कई बार हम किसी से अपनी परेशानी नहीं कह पाते, लेकिन एक गीत सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ, यही तो मैं महसूस कर रहा था। बिल्कुल
0: हाँ, तो वो गीत सारी बातें हम तक साझा कर देते हैं। संगीत की खूबसूरती भी तो यही है कि इसे समझने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं है। शास्त्रीय राग हो, लोकगीत हो, भजन हो, या कोई सादा सी कोई धुन हो, हर सुर अपनी तरह से मन को छूता है। अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग भी एक ही संगीत पर मुस्कुरा सकते हैं।
1: बिल्कुल, और बचपन में माँ की लोरी से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक संगीत हमारे साथ चलता है। त्योहारों में भी गीत है, प्रार्थनाओं में स्वर है, प्रेम में धुन है।

0: और विदाई में भी संगीत की एक धीमी सी प्रतिध्वनि सुनाई देती है, जैसे जीवन की कहानी शब्दों से नहीं सुरों से भी लिखी जाती हो।
1: हाँ, और शायद संगीत का सबसे बड़ा जादू भी तो यही है ना आरती जी, कि हम हमें हमारे भीतर से मिला देता है। कुछ देर के लिए अगर दुनिया की भागदौड़ जो होती है वो रुक जाती है, आंखें बंद करते हैं और हम अपने ही मन की आवाज सुनने लगते हैं संगीत में डूबकर।
0: और इसीलिए जब कभी मन उदास हो कोई प्यारी सी धुन को आप सुन सकते हैं। हो सकता है समस्या वही रहे लेकिन उसे देखने का हमारा जो नजरिया है वो बदल जाए, क्योंकि संगीत हमेशा परिस्थितियां नहीं बदलता, कभी कभी वो हमें इतना बदल देता है कि वही परिस्थितियां हमें थोड़ी आसान लगने लगती हैं।
1: और संगीत सुनाई सिर्फ नहीं देता है बल्कि महसूस होता है, याद बनता है और कभी कभी जीवन भर हमारे भीतर गूंजता रहता है। और यही कारण है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिषद और यूनेस्को समाज में संगीत कला को बढ़ावा देने और शांति और भाईचारे के आदर्शों को स्थापित करने के लिए 1 अक्टूबर का दिन संगीत जागरूकता दिवस के रूप में मनाए जाने के रूप में हमें मान्यता मिली है। संगीत को हम इस दिन मनाते हैं या कहें कि जागरूक किस तरह से हो सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी कई बार संगीत की जो पद्धतियां हैं इस्तेमाल की जाती हैं, जिसे हम अलग अलग अलग अलग रागों से संबंधित अगर आप बातें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से राग को पढ़कर अलग अलग भावों से आप निजात पा सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं।
0: बिल्कुल, और कई कई अब तो अस्पतालों में भी एक संगीत थेरेपी भी दी जाती है लोगों को, मरीजों को, जिससे कि वो अपने अंदर से खुश हो सके, उनके अंदर एक उम्मीद जाग सके।
1: हाँ।
0: तो ये जागरूकता दिवस है। और हमारे जो साथी हैं क्या क्या लिख रहे हैं, एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि संगीत तो मेरी रूह है, जान है, जिंदगी है, जब से होश संभाला है तब से संगीत और गीत सुनती आई हूँ, और विविध भारती मेरे रेडियो ट्रांजिस्टर और अब फोन में बजता ही रहता है, मेरे किचन, बाथरूम और आराम करते समय, सोते समय भी बजता है, क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन के अंतर्गत आ गई हूँ, पर मुझे शुरू से ही पुराने फिल्मी गीत संगीत बहुत पसंद है। और उन्होंने कहा कि केएल सहगल, पंकज मलिक, सीएच आत्मा और हेमंत कुमार, लता रफी, गीता दत्त बहुत पसंद है, आजकल के गीत बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ गीत हैं जो उनको आज के भी अच्छे लगते हैं।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे साथी के लिए संगीत का जादू ऐसा जो सिर चढ़कर बोलता है, विविध भारती इसमें मेरी सबसे प्रिय और सहयोगी रही है उन्हें और एक और साथी कहते हैं कि संगीत का जादू तो मेरे सिर चढ़कर बोलता है, ऐसा मेरे घर के लोगों का कहना है। सच भी यही है, मैं खुश रहती हूँ तो संगीत सुनती हूँ, दुखी होती हूँ तो संगीत सुनती हूँ, बहुत गुस्से में होती तब भी संगीत चलता ही रहता है। हालांकि मेरी मम्मी बोलती घर में कुछ भी हो जाए इसका रेडियो बंद नहीं होता। वैसे आजकल की बात नहीं है बल्कि जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तब भी रेडियो सुने बिना मेरी पढ़ाई नहीं होती थी।
0: बहुत बहुत ही अच्छी बात है। तो और संगीत, एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि संगीत केवल फिल्मी संगीत तक ही सीमित नहीं है, उसको इतना ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि हर तरफ व्याप्त है संगीत। हवा की रागनी में घुला है संगीत, झूमते वृक्षों में, बहते दरिया में है संगीत, भंवरे की गुंजन में है संगीत, मंदिर की बजती घंटियों में है संगीत, गौरी की बजती पायल खनकती चूड़ियों में है संगीत, आसमां से बरसती बूंदों में है संगीत, पक्षियों के मधुर कलरव में है संगीत। सच में रूह का सुकून है ये संगीत।
1: वाह, क्या बात हमारे साथियों ने कही है। तो इन संगीत से जुड़ी बहुत सी बातें हमारे साथियों ने भेजी है, पर क्यों ना इस वक्त एक संगीत
0: एक
1: सुनिए।
0: बिल्कुल गीत तो सुनना ही चाहिए
1: जी।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: और मन झूमने लगता है आरती जी जब संगीत की बात हो। हमारे साथी लिखते हैं कि संगीत एक ऐसी अलौकिक कला है जो बिना किसी भाषा और सीमा के सीधे दिल से जुड़ती है। ये सिर्फ सुरों और ताल का मेल नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं की सबसे पवित्र अभिव्यक्ति है। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब संगीत बोलना शुरू करता है।
4: बिल्कुल। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि जब भी अपने बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस कि जब भी मेरे पतिदेव से जब मैं नाराज होती हूँ या गुस्सा होती हूँ तो वो मुझे गीत गाकर मनाते हैं जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एकदम से खिलखिला उठती हूँ। भाई क्या बात है।
3: और हमारे साथी कह रहे हैं कि संगीत एक ऐसा जादू है जो बिना शब्दों के भी दिल की बात कह देता है। इसकी मधुर धुनें कभी चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं तो कभी आंखों में पुरानी यादों की नमी भर देती है। संगीत में मन को सुकून देने, थकान मिटाने और उदास दिल को संभालने की अद्भुत शक्ति होती है। कोई धुन हमें बचपन की गलियों में ले जाती है तो कोई गीत किसी अपने की याद दिला देता है। सुर, ताल और शब्द जब मिलते हैं तो भावनाओं की एक खूबसूरत दुनिया बन जाती है। शायद इसलिए संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस होता है। यही संगीत का असली जादू है जो दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचता है।
4: क्या बात है, बहुत अच्छी तरह से लिखा है। एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि मैं तो लोक गीतों की भी बहुत शौकीन हूं और प्रादेशिक हो या किसी भाषा को उनको लोक गीत बहुत पसंद है। तो गीत वो तो कोई भी हो सकता है, लोक गीत हो या किसी भाषा का हो, संगीत तो संगीत है फिर। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि जहां शब्द थम जाते हैं वहां संगीत बोलना शुरू करता है। शायद इसीलिए संगीत केवल सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। जहां शब्द खामोश हो जाते हैं वहां संगीत दिल की भाषा बनकर बोलता है।
3: तो हमारे कई साथियों ने से एक ही तरह की बातें लिखी क्योंकि संगीत से जुड़ी जो भावनाएं हैं वो एक तरह से हम सबकी एक ही है। हमारे कह रहे हैं कि सुर ना सजे का गांव में एक साथी ने लिखा है, सुर के बिना जीवन सुना। संगीत का जादू वो अदृश्य शक्ति और प्रभाव है जो बिना किसी भाषा की सीमा के सीधे मन और आत्मा को छू लेता है। ये भावनाओं को जगाने, थकान मिटाने और लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। संगीत हमारी गहन भावनाओं को व्यक्त करता है जिन्हें कई बार साधारण शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। तनाव भरी भागदौड़ के बीच संगीत सुनने से मन को असीम शांति और ताजगी मिलती है। पुराना संगीत सुनते ही इंसान पल भर में अपनी पुरानी यादों और बीते हुए पलों में पहुंच जाता है। संगीत की कोई भाषा नहीं होती, ये हर संस्कृति और देश के लोगों को एक सूत्र में पिरोता है। लेकिन यहाँ आरती जी एक बात कहना जरूरी है कि भाई संगीत तो बहुत अच्छा लगता है, हम सुनते भी हैं, पर ऐसा नहीं हो कि हम जब सड़क पे जा रहे हैं तो संगीत कानों में हमने लगा लिया, हेडफोन लगा लिया और हमने सोचा कि चलो सुनते सुनते ही जाएंगे आज हम, और उस वक्त संगीत आपको अगर कहीं किसी दूसरी दुनिया में या किसी दूसरी यादों में आपको खोने के लिए मजबूर कर देगा तो सड़क नहीं, पर नहीं, आपका चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
4: बिल्कुल। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, थोड़ी सावधानी, ये भी कोई भी चीज सावधानी के साथ अगर करी जाए तो बहुत अच्छी होती है। तो सड़क पे चल रहे हैं या आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप संगीत को थोड़ा देर के रोक दें, तो वो आप जब कहीं बैठे हैं या कहीं आप आराम से अपने घर में या इस तरह से कभी हैं तो आप तब सुनिए कहीं। लेकिन बाहर जाते समय या रेलवे स्टेशन पे, कई लोग ट्रैक पे जब चलते हैं है ना, ट्रेन की वो पार कर रहे होते हैं रेल लाइन के, तो वहां पे भी आप ये सब मत लगाएं तो अच्छा रहता है, नहीं तो बहुत सारी दुर्घटनाओं का कारण बन जाता है।
3: और अगर आप सार्वजनिक स्थान पर हैं और सफर कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आपने एकदम जोर से जो लगा देते हैं ना संगीत की भजन, आप भजन भी सुन रहे हो, चाहे कोई बहुत ही अच्छा संगीत भी आप सुन रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि किसी और को भी वो संगीत पसंद आ रहा हो। और तेज आवाज में जब संगीत चलाया जाता है तो कभी कभी जो उसकी जो खूबसूरती है वो खो जाती है, तो वो भी आपको उससे भी बचना चाहिए।
4: और अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इससे दूसरों को भी हो सकता है, किसी को खराब या किसी को परेशानी हो रही हो, कोई बीमार हो या कोई परेशानी हो सकती है, तो संगीत को उतना ही सुनिए जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो।
3: तो संगीत को जो मधुरता उसकी है उसकी मधुरता बनी रहे, बस इसका ध्यान रखना चाहिए,
4: जैसे लड़ाई झगड़े ना हो। और दूसरी चीज है कि आप, क्योंकि आप बाहर लगा, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं उस समय आप तेज आवाज में सुन रहे हैं तो हो सकता है दुर्घटना का कारण बन जाए, कोई सामने वाले को किसी को परेशानी हो जाए, तो आप चीजों को ध्यान में रखते हुए आप संगीत को सुनिए। और एक हमारे साथी है जो लिख रहे हैं कि संगीत केवल सात सुरों का संगम नहीं है बल्कि आत्मा की भाषा है जो बिना किसी शब्दों के सीधे दिल तक पहुंचती है। बहुत अच्छी बात लिखी उन्होंने भी।
3: बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे जो साथी हैं उनकी भावनाएं और हमारी भावनाएं बिल्कुल मिल रही है आपस में, क्योंकि एक तरह से संगीत के लिए अगर कहा जाए तो कुछ यही बातें हम कह सकते हैं जैसे भावनाएं हमारे साथियों ने भेजी हैं, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर, मतलब हम दोनों कहने का ये अर्थ है कि हम सब मिलकर एक गीत सुन लें।
4: बिल्कुल गीत सुनते हैं संगीत के समय।

0: तो आरती जी ये बातें तो हो गई, लेकिन एक जो सबसे जरूरी बात है वो तो हमने की नहीं।
1: कौन सी जरूरी बात नहीं की हमने?
0: इतने सस्पेंस आपने ले आया, लेकिन वृद्ध जनों की देखभाल के उपयोगी टिप्स जो हमें देने थे और हमारे साथियों ने ढेर सारे कमेंट्स के जरिए बताया।
1: हम उसी पे आ रहे हैं, हम लोग उसी पे तो आ रहे हैं अब, और क्योंकि हमारे साथियों ने कितना सारा तो लिख के भेजा है, बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, तो हम ले लेते हैं अपने साथी का पहला कमेंट जो लिखते हैं कि सभी को वरिष्ठ नागरिक दिवस पर शुभकामनाएं दे रहे हैं और हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। वैसे देखा जाए तो इन्हें स्वस्थ और हर हाल में खुश रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है, पर आजकल के जो युवा वयस्क हैं वे तो समझदार हैं पर इन्हें शायद और जागरूक होने की जरूरत है। वरिष्ठ नागरिकों को आदर सम्मान और हर तरह से उनका ख्याल रखने की जरूरत है। एक तरह से नई पीढ़ी उनसे बहुत कुछ सीख सकती है, उनके पास बहुत सारे अनुभव तो होते ही हैं।
0: और हमारे साथी कह रहे हैं कि हमारे घरों में कहा जाता है बुजुर्ग हमारे दरवाजे की शोभा होते हैं, तो उन्हें अपनी शोभा बनाएं, घर के कोने में पड़े हुए शोपीस नहीं बनाएं। और एक और साथी कह रहे हैं कि आज का दिन बुजुर्गों की देखभाल और उनकी देखभाल की जागरूकता के लिए मनाया जाता है, तो उन्होंने इसकी हमें बधाई दी है।
1: अच्छा, और साथ ही हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि मेरे मम्मी जो 83 वर्ष की आयु की हैं वे मेरे साथ रहती हैं और वो वॉकर से चलती हैं और उनको मतलब खाने में परेशानी होती है कि उनके दांत में भी दांत भी नहीं है, तो लिखते हैं कि मेरी वाइफ उनको सब खाना क्रश करके मतलब पीस के देती हैं, उनको ब्रश स्नान जैसे सारे कामों में हेल्प करते हैं वो और दवाई वगैरह सब अच्छे से देते हैं। ये सब चीज़ें लिखी है कि पूरी चीज़ें सब काम करते हैं उनका। उनके पास सादा कीपैड का फ़ोन है, उनको स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, तो मैंने अखबार लेना और टीवी से केबल और मतलब उनको कनेक्शन चालू करवा दिया ताकि उनका टाइम पास हो और दुनियादारी से वो अपडेट रहें, तो उनसे वो बात करते हैं जब शाम को अपने जॉब से आते हैं तो वो बात भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है अपने साथ में अपने जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो बुजुर्ग हैं उनके साथ में बैठना, उनके साथ बातें करना, खाना पीना, यही चीजें हैं बस देखभाल के लिए, और कुछ आपको नहीं करना होता है कुछ ऐसा।
0: हमारे साथी वही कह रहे हैं कि बुजुर्ग होना कोई अभिशाप नहीं बल्कि ये जीवन का एक सम्मानित और सुंदर पड़ाव है जिसपे अनुभव की परिपक्वता और गरिमा होती है। बुजुर्गों के पास जीवन का लंबा अनुभव और ज्ञान होता है जो आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करता है। वे हमारे समाज की अनमोल धरोहर है जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से परिवार और समाज को सींचा है। हर उम्र की एक गरिमा होती है जिसे हमें ईमानदारी से स्वीकार करके खुशी से अपना कर जीना चाहिए।
1: बिल्कुल। एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि वृद्ध जनों की देखभाल की बात मैं क्या करूं जब मैं खुद 75 पार कर चुका हूं और घर में तो सभी दादा कहते ही हैं। अब विविध भारती फेसबुक पेज पर जुड़े हमारे सभी साथी भी दादा कहकर पुकारते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। घर के सदस्य सभी मेरी अच्छी देखभाल रखते ही हैं, बाकी मैं खुद अपनी देखभाल रखता हूं। रोज सुबह विविध भारती जागो सुबह हो गई सुनते हुए व्यायाम प्राणायाम कर लेता हूं, शाम को इवनिंग वॉकिंग करने जाता हूं और रात ढलती जाए रात सुनते हुए शुभ रात्रि हो जाती है। अब मैं सखी सहेली शुरू होने से पहले एक छोटी सी झपकी लेता हूँ, तो अपनी झपकी से उन्होंने देखिए झपकी भी अपनी तोड़ी और हमारे लिए लिखा भी उन्होंने, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और हमारे साथी ने लिखा है कि वृद्धजनों की देखभाल उनके शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक शांति और भावनात्मक जुड़ाव का ध्यान रखकर पूरी गरिमा और स्नेह के साथ करनी चाहिए। बुजुर्गों की सही देखभाल के लिए मुख्य बिंदु उन्होंने बताया कि रक्तचाप मधुमेह और अन्य पुरानी बीमारियां अगर हों तो समय समय पर जांच कराएं, डॉक्टर जो निर्देश दें उसके अनुसार उन्हें दवाई दें, भोजन में प्रोटीन विटामिन डी कैल्शियम ताजे फल और हरी सब्जियां शामिल करें, पानी की कमी से बचाने के लिए उन्हें समय समय पर पानी पिलाते रहें और इसके अलावा सबसे बड़ी बात उन्हें अकेला न रहने दें। कुछ कमियों के बावजूद परिवार में एक सहारे के साथ बहुत खुश रहते हैं हमारे जो वृद्ध जन होते हैं, तो उन्हें बहुत लग्जरी सुख सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि प्यार और देखभाल सम्मान की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल, वो सम्मान आप प्यार देते हैं तो बस वो देखभाल हो गई, इससे ज्यादा बड़ी देखभाल तो और क्या होगी जब आप उनके साथ थोड़ा सा समय बिताते हैं। तो इसी के साथ एक छोटा सा गीत सुन लें।

0: तो बहुत शुक्रिया। हम किस लिए कह सकते हैं कि हमारे साथी चाय को पसंद करे, कॉफी को नहीं।
1: वैसे आज कॉफी दिवस है लेकिन चाय
0: हाँ
1: ने बाजी मार ली है,
0: कोई बात नहीं,
1: डिक्लेयर हो
0: हमारा
1: गया
0: आलू भी
1: विनर।
0: जीत गया। आप आपकी चाय जीत गई तो कोई बात नहीं, हमारा आलू भी जीत
1: आलू
0: चुका
1: भी
0: है।
1: जीता है।
0: और हमारे एक साथी लिख रही कि चाय मुझे बहुत पसंद है, सुबह ब्लैक कॉफी पीता हूँ। देखो कॉफी
1: अच्छा।
0: पी रहे हैं वो, और कह रहे नाश्ते के बाद दूध वाली चाय। इतनी चाय की बात हो रही है, अभी कोई आया तो चाय तो मुझे बनाना ही है, कॉफी ज्यादा पी लेता हूँ खासकर शाम को, तो रात को मेरी नींद गायब जाती है। मतलब मिली जुली सरकार चल रही है यहाँ पर, इन्हें
1: बिल्कुल।
0: कॉफी और चाय दोनों पसंद
1: दोनों
0: आ रही
1: दोनों
0: है।
1: चल रही हैं। तो एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि मुझे चाय और कॉफी दोनों पसंद है, आइस टी भी पसंद है इनको, और ये जो भी चीजें बनती हैं घर में खा लेते हैं। इन्होंने इन्होंने बोला ये टिंडे भी खा लेते हैं। इन्होंने सब्जियों के बारे में बताया कि
0: भरवा
1: ये
0: टिंडे
1: सब्जियां भी स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। तो भरवा टिंडे, भरवा शिमला मिर्च, और सच बोलूं तो करेले की सब्जी भी फेवरेट है। क्या बात है सच में।
0: कुछ हमारी टीम के लग रहे हैं। और हमारे एक साथी ने कहा मुझे चाय बहुत पसंद है, जब भी कभी यार दोस्त मिलते हैं तो चाय की चुस्की तो होती है, बैठे बैठे गप्पे हो जाती है, और इस बीच कुछ खाने को हो जाए तो कचौड़ी या दाल मंगोड़े की बात ही क्या। मतलब
1: सच
0: प्रोग्राम
1: में।
0: के बीच में अगर खाने की बातें होती है तो हमें ऐसा लगता है कि अभी हमें जाकर चाय पकौड़ी कुछ खाना चाहिए। अब
1: बिल्कुल।
0: हमें ये सोचना भी पड़ेगा कि घड़ी भी आज हमारा साथ दे रही है, तो घड़ी भी ये इशारा कर रही है कि हम जाएं चाय पकौड़े खाएं, कॉफी भी पी सकते हैं।
1: कॉफी
0: हम कॉफी
1: कॉफी
0: पियेंगे
1: आज
0: या
1: तो
0: चाय
1: कॉफी
0: पियेंगे?
1: पियेंगे, आज तो कॉफी पियेंगे क्योंकि आज कॉफी दिवस है, तो कॉफी तो
0: हाँ,
1: पीनी ही पड़ेगी
0: तो
1: हमें।
0: ये भी बताते चलें कि कॉफी दिवस अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन ने 2015 में पहली बार मिलान में इटली में से बना मनाना शुरू किया था उन्होंने, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो लाखों किसानों और श्रमिकों का समर्थन करना था जिनकी आजीविका इस फसल पर निर्भर करती है। और
1: बिल्कुल।
0: फिलहाल ये निर्भर करता है कि समय तो कह रहा है कि बिल्कुल अब आप अलविदा कह दें, तो स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा,
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

नमस्कार, पेश है एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ किया। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। वस्तु और सेवा कर संग्रह में इस वर्ष सितंबर माह में कुल 14.7% की वृद्धि दर्ज की गई और यह 2,03,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया, संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन किया। रक्षा मंत्री ने सैन्य नर्सिंग सेवा के 101वें स्थापना दिवस पर उन सभी नर्सिंग कर्मियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही वह राजपत्र अधिसूचना फर्जी है, जिसमें दावा किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सभी शनिवार सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं। विभिन्न मंत्रालय आज नई दिल्ली में कर्तव्य भवन के पास स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत एक दिन एक घंटा एक साथ श्रमदान गतिविधि का आयोजन कर रहा है। भारत जापान एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा। आज दूसरे फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हराया। जापान एशियाई खेलों में भारत पाकिस्तान को हराकर हॉकी के फाइनल में पहुंचा और भारत ने एशियाई खेलों में नौकायन के क्षेत्र में अपना पहला पदक जीता। मनु फ्रांसिस और प्रिंस किरुसिंकल नोबेल के ने पुरुषों के स्किफ स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम को सेमीफाइनल में कांस्य पदक मिला। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। बनी रहिए हमारे साथ और आपके लिए जल्द हाजिर होगा हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: आकाशवाणी।
1: नंदन वंदन अभिनंदन कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में आप सभी का स्वागत है।
0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की आज के इस अंक में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और आज आप सभी के समक्ष ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आपके लिए आपके शहर में आयोजित किया जा रहा है सेकेंड एडिशन ऑफ शेखों एफ इंडियन एयरफोर्स मैराथन, जिसको सिम के नाम से जाना जाता है, सिम 2026। और इस मैराथन के बारे में आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी, जो हैं सेक्रेटरी एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, आप हैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सेखों इंडिया एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स मैराथन, और आप ऑनररी सेक्रेटरी जनरल सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी भी हैं। तो हम तहे दिल से सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी का। सतेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद गीतिका जी।
0: और ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि आज संदेश टू सोल्जर्स इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, अपने जो श्रोता हैं उन तक पहुंचाने वाले हैं कि कैसे भले ही इस साल नहीं अगले साल से ही वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाल ही में आपने सुब्रतो कप इसका आयोजन किया, 65th एडिशन था, 18 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक सुब्रतो कप चला। जिस तरह से सुब्रतो कप आयोजित किया जा रहा है और आकाशवाणी के माध्यम से भी हम नित्य प्रति अपने श्रोताओं को बताते हैं कि किस तरह से टीम्स खेल रही हैं, कौन सी टीम्स हैं जो जीत रही हैं और किस तरह से जोश का माहौल वहां बना होता है मैदानों में, यहां हम आकाशवाणी के माध्यम से अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं, आप ये हमें बताएं कि इस साल का जो सुब्रतो कप आपने आयोजित किया, यानी कि इंडियन एयरफोर्स जो हमेशा कार्यरत रहता है स्पोर्ट्स को जन जन तक पहुंचाता है, किस तरह से रहा ये 65th एडिशन सुब्रतो कप का?
1: 65th एडिशन बहुत ही रोमांचक था। जैसा आपने कहा 18 अगस्त को शुरू हुआ। हम ये फुटबॉल टूर्नामेंट 3 कैटेगरी में कराते हैं, अंडर 17 गर्ल्स, अंडर 17 बॉयज एंड अंडर 15 बॉयज। तो अंडर 17 गर्ल्स 18 को अगस्त को शुरू हुआ था दिल्ली में और उसका 27 अगस्त को समापन हुआ। झारखंड की टीम जो एक रिमोट लोकेशन जाती है गुमला, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और वो जीती। जो अंडर 15 बॉयज था वो 1 से लेकर 9 सितंबर बेंगलुरु में हुआ, जहाँ वेस्ट बंगाल की टीम जीती। और जो ग्रैंड फिनाले था अंडर 17 बॉयज, वो 15 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक हुआ। ग्रैंड फिनाले हमारा अंबेडकर स्टेडियम में होता 25 सितंबर को और सीआईएससी की टीम जीती। मैं सब श्रोतागणों को बताना चाहूँगा कि ये लगता एक महीने का हमारा टूर्नामेंट है, बट इसकी जो तैयारी है वो पिछले 6 से 7 महीने पहले शुरू हो जाती है। इसमें हर स्टेट की टीम पहले

0: तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल के फाइनली स्टेट की एक टीम आती है, स्कूल की टीम, जो यहाँ परफॉर्म करती है। तो इस पूरे, अगर आप देखें, ये स्प्रेड जो है इस टूर्नामेंट का, वो एक महीने का नहीं, कम से कम 6 से 7 महीने का है। तो बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और हम एज ऑर्गेनाइजर तो हमने बहुत ही ज्यादा इंजॉय किया, बहुत रोमांचक था
1: जी। कहते हैं ना कि एक दूसरे के साथ जब आप बच्चों की बात करें तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज होता है, ऊर्जाओं का एक्सचेंज होता है। और हमारे युवा भी, बच्चे भी चाहते हैं कल चलकर फोर्सेज ज्वाइन करेंगे, इंडियन एयरफोर्स में हम पायलट बनेंगे, ऑफिसर्स बनेंगे। और इसी मुहिम के साथ इंडियन एयरफोर्स हमेशा कार्यरत रहता है। जैसे कि हमने कहा कि स्पोर्ट्स की दुनिया में तो बच्चे नाम कमा रहे हैं और हमारे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहीं ना कहीं हम फोर्सेज से ही सीखते हैं। अब बात करते हैं कि सीखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन क्या है, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप कृपया करके हमें फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखों के बारे में जरूर बताएं। निश्चित रूप से उनका इस मैराथन से ताल्लुक जरूर है। आप कृपया करके हमें बताएं कि उनका जो योगदान रहा भारतीय वायुसेना, अगर उसकी बात की जाए, अतुलनीय रहा। मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। और आपके मुख से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहते हैं कि आपकी बात जन जन तक पहुंचे।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो एक मिसाल हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए, नहीं पूरे इंडिया के यूथ के लिए। वो बहुत ही यंग थे, 25-26 साल के थे जब उन्होंने 1971 की वॉर में हमारे दुश्मन के जहाज़ों को बड़ी बहादुरी से गिराया, उनसे लड़ाई करी, मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र मिला। वो अकेले ऐसे ऑफिसर हैं इंडियन एयरफोर्स के जिनको परमवीर चक्र से वो सम्मानित हैं। तो यही एक उनको यूनिक चीज़ बनाती है, जिसके इनके नाम से और इनके जो इनकी पदवी है उसको मद्देनजर रखते हुए उनकी याद में हमने ये सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन शुरू करी।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है। अगर हम सेकंड एडिशन की बात करें, और सेकंड एडिशन अपने साथ बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी उम्मीद, और कहते हैं कि जब हम अंतिम छोर में होते हैं ना, तो हम अगले की तैयारी करना शुरू करते हैं। अगर हम रेट्रोस्पेक्शन करें पहले एडिशन का, तो पहला एडिशन उसकी क्या खास बात थी और इस एडिशन में क्या कुछ खास होने वाला है, आपके माध्यम से जानना चाहते हैं।
0: पहला एडिशन हमारा 2 नवंबर 2025 को हुआ था। दिल्ली मेन सेंटर था रेस के लिए, पर हमारे बाकी जो भारतीय वायुसेना के एयरफोर्स स्टेशंस हैं उनमें 45 लोकेशंस अक्रॉस इंडिया, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कंट्री, ये मैराथन ऑर्गेनाइज कराई गई थी सेम डेट पे, सेम टाइम पे। और तो रनर्स की जो टोटल अगर आप नंबर्स बोलें, दिल्ली में वो 12,000 थे और ऑल ओवर इंडिया को अगर हम पूरा समअप करें तो अराउंड 45,000 People ran on that day.
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है। और उसी उम्मीद को आप आगे, यानी कि इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना, उसे कहते हैं ना कि हम मिसाल कायम करते हैं और फिर उस जब हम चैलेंजेस फेस करते हैं फिर सोचते हैं इससे बेहतरीन आगे और किया जाएगा। लाइफ का यही दस्तूर है कि हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। अगर अब सेकेंड एडिशन की बात की जाए, सेकेंड एडिशन ऑफ सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन, जिसे हम सिम के नाम से भी जानते हैं, इस एडिशन में क्या कुछ खास है, अपने आप में परिपूर्ण है, मैराथन की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन एक सवाल और मन में मेरे जहन में आता है सेकंड एडिशन के बारे में बात करने से पहले, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है जो ये मैराथन हर साल कराई जा रही है?
0: ये कंसेप्ट जो था हमारे प्रेजेंट चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, वो अपने आप में एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हैं। तो उनका विजन था कि सेखो साहब बहुत यंग थे जब उन्होंने शहादत दी, तो चाहते कि जो एयरफोर्स का यूथ है और इंडिया का यूथ है वो कोलैबोरेट करें, इसलिए एयरफोर्स मैराथन लेके आए जिसमें डिफेंस पर्सनल भी भागते हैं और सिविलियंस भी भागते हैं। तो एक उद्देश्य है कि फिट इंडिया मूवमेंट की तरफ इसको मूव करना है। एयरफोर्स में तो के एक सिस्टम है जहाँ पे आपको फिटनेस पैरामाउंट है, पर हम चाहते हैं कि ये अमेलगमेट करें हम सिविलियंस के साथ भी, एंड इसको एक यूनिक प्लेटफॉर्म देके इसको आगे बढ़ाएं।
1: जी, और कहीं ना कहीं एक सिविलियन लाइफ के साथ, कहते हैं ना कम्युनिकेशन, संवाद, मुझे लगता है शायद इस मैराथन के माध्यम से आसानी से हो जाता होगा।
0: बहुत लोग जुड़ते हैं और जो जुड़ जाते हैं वो सिर्फ जुड़ के ही रहना चाहते हैं।
1: जी, बहुत बढ़िया। अब अगर जब सेकेंड एडिशन की हम बात कर रहे हैं सिम के, तो कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किन किन राज्यों में हो रहा है, इसके बारे में भी हमें जानकारी दें।
0: जैसे कि मैंने बताया, सिम 4 अक्टूबर 2026 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली एडिशन होगा, और हमने कुछ मेजर सिटीज़ हैं अक्रॉस इंडिया।

0: बिल्कुल कह सकते हैं। हमारा एयरफोर्स डे जो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, 8 अक्टूबर 1932 में इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। इस बार हमारा 94th एयरफोर्स डे है एंड एयरफोर्स डे वीक इज गोइंग ऑन, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये पार्ट ऑफ एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन है।
1: बहुत खूब, आपने बोला 94th हम एयरफोर्स डे मनाने जा रहे हैं, तो इस मैराथन से हमारी क्या उम्मीदें हैं?
0: देखिए, पिछली बार जैसा मैंने पहले भी कहा कि पिछली बार हमारे 45,000 रनर थे, तो इस बार हमारे हमें उम्मीद है कि नंबर डबल होगा और हम जो 94th का फिगर है, 94th एयरफोर्स डे, हम उस नंबर को पाना चाहेंगे।
1: जब हौसले बुलंद हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, और भारतीय वायुसेना इसी बात की मिसाल है और इस मिसाल को कायम कर रही है। सेकेंड एडिशन ऑफ सेको इंडिया एयरफोर्स मैराथन 2026, यानी कि सिम 2026, इसका आयोजन किया जा रहा है 4 अक्टूबर को। विंग्स ऑफ करेज, जी, जब हमारे ये जाबाज हवा में उड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम भारतीय धरती से परचम लहराते हैं जीत का।

एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीता कन्याल, और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी, जो आपको जानकारी दे रहे हैं सेकंड एडिशन ऑफ सिखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन 2026, जिसे आप सिम 2026 के नाम से भी पुकार सकते हैं। और जब जब आप पुकारेंगे तब तक भारतीय वायुसेना आपके साथ होगी और आपके निरंतर अविरल बहती रहती है, जैसे कि हवा, जैसे कि परिंदे, और भारतीय वायुसेना की ये मुहिम आपके लिए ही है। बस हम जानना चाहते हैं आपसे सतेंद्र जी कि बहुत से लोग सुनने के बाद आतुर हो रहे होंगे कि काश हम भी क्योंकि

0: कि सिविलियंस के लिए ये भी मैराथन खुली हो, हम भी कैसे इसका हिस्सा बने? तो कैसे हिस्सा बन सकते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है, आप हमारा मार्गदर्शन करें।
1: ये जो मैराथन की रजिस्ट्रेशन थी वो हमारी वेबसाइट है seco-marathon.in, आपको उस पे साइट पे जाके रजिस्टर करना होता है। वो हर साल ये साइट कांस्टेंट यही रहेगी, लास्ट ईयर भी यही थी, कंटिन्यू रहेगी। अगर इस बार एडिशन की बात की जाए सिम 2026 की, तो 1 जुलाई 2026 को रजिस्ट्रेशन ओपन हुई थी और 15 सितंबर को ये रजिस्ट्रेशन बंद हो गई। तो हमें 10 दिन चाहिए होता है इस इवेंट को कराने के लिए, तो 15 सितंबर को हमने बंद करके अब वी आर फोकसिंग ऑन टू कंडक्ट द इवेंट, प्रिपरेशन ऑफ द इवेंट।
0: जी जी, तो कहते हैं कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जिस तरह फर्स्ट एडिशन सफल रहा, हम कामना करते हैं कि सेकंड एडिशन, जो हमारे उद्देश्य हैं, वो पूर्ण हो। और कहते हैं कि जब हमें कोई जानकारी प्राप्त होती है तो हमें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि जिंदगी यानी कि भारतीय वायुसेना आपको फिर मौका देगी, थर्ड एडिशन में आप जरूर हिस्सा ले पाएंगे। और जैसा कि आपने स्वयं कहा कि आप साइट पर जाकर ज्यादा से ज्यादा जानकारी अर्जित कर सकते हैं, तो अगले साल जब आप हिस्सा बनना चाहें तो आप साइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन कर अगले एडिशन का हिस्सा जरूर बन सकते हैं। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि जानकारी हमेशा काम आती है, आज नहीं तो कल जरूर। अब अगर बात की जाए वो लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेकेंड एडिशन में, वो भी बहुत उत्सुक होंगे कि हम इस महाआयोजन का हिस्सा बन रहे हैं, क्या क्या हमारे लिए वहाँ फैसिलिटीज उपलब्ध हैं, किस तरह से हम रुक करेंगे, तमाम बातें जहन में चलती हैं। उन लोगों के लिए क्या प्रावधान है?
1: हाँ, मैं आप जो करंट सिचुएशन है मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। आज हमारा एक्सपो स्टार्ट हो गया है मैराथन का, जो सुबह 11 बजे से लेकर 7 बजे तक होगा तेजस ग्राउंड रेस कोर्स में, और कल भी होगा 11 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो जिनकी बिप कलेक्शन और बाकी जो हमारे गुडी बैग्स हैं वो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। रेस डे जो 4 अक्टूबर को है, उसमें एक तो इसमें यूनिक है, हमने दिल्ली मेट्रो से टाई अप किया हुआ है, तो सबको हर जो जितने भी रनर्स आ रहे हैं उनको हम एक फ्री टिकट दे रहे हैं दिल्ली मेट्रो की। वो येलो लाइन, वायलेट लाइन और ब्लू लाइन, इन तीनों को उसकी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंच सकते हैं जहां पे इवेंट है। 4:30 फर्स्ट फ्लैग ऑफ, 5:30 है, तो 4:30 के आसपास आप वहां पहुंच जाएं। और एज फार एज फैसिलिटीज कंसर्न, हम जैसे आप एंटर करेंगे आपके लिए एसी वॉशरूम्स अवेलेबल हैं, सेंटर आपके लिए सारे हाइड्रेशन जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो अवेलेबल है। एन रूट आपको हाइड्रेशन, एनर्जी ड्रिंक्स, एनर्जी बार एंड अ प्रॉपर मेडिकल कवरेज थ्रू आउट द रूट एंड विद इन द एरिना ऑफ JLN विल बी अवेलेबल टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स।
0: जी, एक्सपो में और कुछ क्या खास होने वाला है? क्योंकि जब हम एक्सपो जाते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि शायद हम भारतीय वायुसेना से और भी ज्यादा रूबरू हो पाएंगे, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी अर्जित करने के लिए हम उस गंतव्य तक जरूर पहुंचते हैं। तो वो लोग जो एक्सपो का हिस्सा बनेंगे वो निश्चित रूप से मैराथन के बारे में जानकारी तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्या और कुछ खास है जिसको देखने के लिए हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वहां पहुंचे?
1: बिल्कुल, एक्सपो एक यूनिक एक्सपीरियंस है। अगर लास्ट टाइम गए हमने एक ओपन अरेना में रखा था, पर इस बार हमने एक ह्यूज स्ट्रक्चर, जर्मन टेंट्स लगाए हैं, एयर कंडीशनड है वो। अगर मैं आपको फ्लो के थ्रू ले जाऊं, आप जैसे एंटर करते हैं तो एक वॉल लगी हुई है जहां पे सारे पार्टिसिपेंट जो इस बार पार्टिसिपेट करें, एक एक इंडिविजुअल का नाम वहां लिखा हुआ है, तो वहां चेक कर सकते हैं आई एम पार्ट ऑफ दैट इवेंट और नॉट। अंदर स्टॉल्स लगे हुए हैं, डिफरेंट स्टॉल्स हैं, हमारा एयरफोर्स का स्टॉल भी है, हमारी बैंड की परफॉर्मेंस लाइव है और क्राउड बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक है। मैं अभी 2 घंटे पहले की बात बताता हूँ, लोग इंडियन एयरफोर्स की ट्यून्स पे वहाँ डांस कर रहे थे, दे वर एंजॉयिंग द फुल फ्लो। तो एक यूनिक एक्सपीरियंस है, यू मस्ट गो। दूसरा, एक इंडियन एयरफोर्स फैसिलिटी दे रही है, तेजस ग्राउंड इज जस्ट नियर टू लोक कल्याण मेट्रो स्टेशन, जहाँ से हम बस की फैसिलिटी दे रहे हैं। जो लोग अपना मेट्रो से आ रहे हैं तो वो बस से हम कम्यूट कराएंगे, उनको ड्रॉप करेंगे मेट्रो स्टेशन से टू द वेन्यू एंड बैक, तो इस फैसिलिटी को जरूर अवेल करें।
0: जी, एक प्रश्न और यहाँ उठता है कि क्या ये एक्सपो सिर्फ पार्टिसिपेंट्स के लिए ही खुला हुआ है, या आम जनमानस जो सेकेंड एडिशन का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं पर उनके मन में जिज्ञासा है कि चलो तेजस ग्राउंड चलते हैं और इस एक्सपो के माध्यम से ज्यादा जानकारी अर्जित करते हैं, क्या वो लोग भी वहां पहुंच सकते हैं?
1: इन्हें दिल बहुत बड़ा है, हम ओपन अपने दोनों ओपन हैंड से सबको वेलकम

0: करते हैं,
1: आसमान जितना, बिल्कुल आसमान जितना बड़ा,
0: आसमान स्पेस तक हम आउटरीच करते हैं, तो आए और इस एक्सपीरियंस का मजा लें।
1: वाह क्या बात है, तो आपके लिए ये बहुत ही प्यारी सुखद जानकारी, भले ही आप सेको इंडियन एयरफोर्स मैराथन 2026 इसका हिस्सा ना बन पाए हो, समय पर रजिस्ट्रेशन ना कर पाए हो, लेकिन जैसा कि विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी ने कहा कि भारतीय वायुसेना का दिल आसमान से भी कहीं ज्यादा बड़ा, कहते हैं कि स्काई इज द लिमिट, जिसका कोई अंत नहीं, वो अंतहीन है, वो है भारतीय वायुसेना। तो दिल बहुत बड़ा है, आप जाएं और कहीं ना कहीं आपके मन में जिज्ञासा जरूर बनेगी, जरूर उठेगी कि काश मैं भी भारतीय वायुसेना में होता, या काश मेरे बच्चे भी कल भारतीय वायुसेना में अपनी सर्विसेज दें। और ये आचार व्यवहार का एक सुखद माध्यम है, जिससे मोहब्बत की जाती है उससे मिलने जरूर जाना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। आप तेजस ग्राउंड इस एक्सपो को देखने के लिए जरूर पहुंचें, और आप सभी के लिए, सभी श्रोताओं के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए ये नगमा हमारी ओर से।

0: कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के आज के संग में आप सभी का पुनः स्वागत है। आप सभी से साझा करना चाहेंगे दोबारा सेकंड एडिशन ऑफ सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन 2026 यानी कि सिम 2026 इसका आयोजन किया जा रहा है 4 अक्टूबर को। और इसके संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी, जो सेक्रेटरी हैं एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड में। आप ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन और आप ऑनररी सेक्रेटरी जनरल हैं सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी के। तो आपका पुनः स्वागत करना चाहते हैं हम सत्येंद्र साहब। अब बात ये उठती है कि हम ना कभी कभी बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं कहीं जाने से पहले। वो सारे पार्टिसिपेंट्स जो इस मैराथन का हिस्सा बनने वाले हैं एक दिन पहले ही ना मन में कहते हैं कि पेट में जो तितलियां हैं उड़ने लगती हैं,
1: बटरफ्लाइज
0: कि कल सुबह जल्दी उठना है, पहुंचना है, क्या होगा, कैसे होगा, उन तमाम लोगों के लिए क्या प्रावधान है?
1: अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी एक्सपो में अगर आप जाओ तो वहाँ पे हमने सारा लेआउट्स टाइमिंग्स वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ दे रहे हैं, पर नेवरदलेस उसके बाद भी हम एक ट्रिगर मैसेज थ्रू व्हाट्सएप एंड एन ईमेल सबको भेजेंगे बिफोर द इवेंट कि उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कहाँ पे रिपोर्ट करना है, क्या क्या एन रूट होने वाला है, पूरी जानकारी उसके अंदर होगी तो वो अपनी बटरफ्लाइज सेटल कर सकते हैं एडवांस में।
0: क्या बात है, और अपनी बटरफ्लाइज को वहाँ वहीं उड़ाएं मैदान जंग
1: कह रही हूँ,
0: क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम फोर्सेज का हिस्सा बनते हैं, फोर्सेज के साथ कदम से कदम मिलाते हैं तो वो सारी तितलियां उड़ने के लिए आतुर हो जाती हैं।
1: बिल्कुल।
0: अब सवाल ये होता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो निश्चित रूप से 4 अक्टूबर को पहुंच जाएंगे समय से पहले ही, लेकिन समय क्या है, किस वक्त रिपोर्ट करना है?
1: हाँ, पहला जो हमारा फ्लैग ऑफ है 21 किलोमीटर का वो 5:30 बजे है, तो हमने जो रिपोर्टिंग टाइम नॉर्मली 1 घंटा पहले रहता तो 4:30 उनको रिपोर्ट करना है। वो रिपोर्ट करेंगे और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर आएंगे, उसके बाद उनका जुम्बा सेशन होगा, वार्म अप होगा और फिर 5:30 फ्लैग ऑफ होगा।
0: वाह क्या बात है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि जिनके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप अगर कुछ है या अपने वेरिफिकेशन के लिए उनको क्या दस्तावेज दिखाने होंगे, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे भी पहुंचे गंतव्य पर जो ये कहें कि हम इस कार्यक्रम का हिस्सा है लेकिन आप भारतीय वायुसेना के परिसर, उस वक्त भारतीय वायुसेना का परिसर है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम या वो अन्य गंतव्य जो अलग अलग शहरों में अलग अलग स्टेशन पर आयोजित किया जा रहा है ये मैराथन, तो वहां पर सिक्योरिटी और आइडेंटिफिकेशन

0: बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसके लिए क्या फैसिलिटी है।
1: आज जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो चल रहा है तो हम बिब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जिसमें नाम और उनके डिटेल्स होते हैं, तो ये सब बिब सारे नर्स को दी जाती है और एक मैंडेटरी आइडेंटिफिकेशन है जो उनको उस दिन अपनी टी शर्ट के साथ पहन के दौड़ना है। तो जो उसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है जो रीड करता है मूवमेंट्स के लिए, तो ये बिब जो पहन के आएंगे उनको ही जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होंगे अलाउ करेंगे, अदरवाइज बाकी लोग एंटर नहीं कर पाएंगे।
0: जी, तो आपके लिए प्रतिबंधित है अगर आपके पास, जैसा कि हमें सत्येंद्र साहब ने कहा, विंग कमांडर सत्येंद्र सिंह शंकर साहब ने, कि अगर आपके पास अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए बिब नहीं है तो आप अंदर एंट्री नहीं पा सकते हैं। लेकिन उम्मीद कायम रखिए अगले साल आपको फिर मौका मिलेगा। अगर आप इस मैराथन रेस की बात की जाए तो उसकी यूनिकनेस क्या है, क्या खास बात है?
1: ये अपने आप में बहुत ही एक यूनिक रेस, मैं इसलिए कहूँगा, मैराथन्स होती हैं अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड होती हैं, पर ये मैराथन के साथ एक, इसको हम इवेंट काउंट करेंगे बिकॉज ये शोकेसिंग इंडियन एयरफोर्स की भी है। आज हम सिविलियन वर्ल्ड के साथ मिलके कदम से कदम बढ़ा रहे हैं, अगर हम उनको कुछ दें तो हम इंडियन एयरफोर्स लाइट भी उन्हें दिखाना चाहते हैं। तो नॉर्मली अगर आप कोई मैराथन देखो, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आउटर एरिया से हो जाती है, वहीं पे से शुरू वहीं पे ख़त्म हो जाती है, लोग अपना मेडल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, थोड़ा छोटा मोटा प्रोग्राम होता है और अपने घर चले जाते हैं। बट ये एक टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस है, जब लोग दौड़ के वापस आएंगे, अपना मेडल लेंगे, अपनी रिफ्रेशमेंट्स लेंगे, तो उन सबको हम अशर करेंगे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर, जहाँ पे आपको इंडियन एयरफोर्स का एक्चुअल रौद्र रूप देखने को मिलेगा।
0: क्या बात
1: है? इन टर्म्स ऑफ स्काई डाइविंग हमारी एयर वॉरियर ड्रिल टीम है वो परफॉर्म करेगी, हमारी बैंड है वो परफॉर्म करेगी, एंड मेनी मदर मोर एक्टिविटीज। तो आप एक इवेंट है जो आपको मिस आउट नहीं करना है, आपको सिर्फ रेस नहीं, रेस के पोस्ट रेस के जितने इवेंट्स हैं वो भी जरूर देखने।
0: मैं सोच रही हूँ कि मैंने कुछ मिस कर दिया है समय पर रजिस्ट्रेशन ना करवा कर।
1: जैसा आपने कहा कि हमेशा मौका मिलता है,
0: बिल्कुल, और भारतीय वायुसेना जैसा कि आपने कहा कि विशाल है और आसमां की तरह है, आसमां को छूने जैसी बात है, तो ये आपको मौके देती रहती है और निश्चित रूप से अगला एडिशन और भी सुखद होगा। लेकिन इस एडिशन की अगर बात की जाए, और विंग कमांडर सत्येंद्र सिंह धनकर जी ने कहा है कि बहुत यूनिक है, इसका हिस्सा बनिए और फिर देखिए जो अनुभूति आप अपने साथ अपने घर लेकर जाएंगे, आप ताउम्र उसको दोहराएंगे और कहेंगे कि अगले एडिशन में भी हम हिस्सा जरूर बनेंगे इस मैराथन का। अब बात आती है, जैसे कि आपने स्वयं बताया कि अलग अलग स्टेशन पर एक साथ ही कार्यक्रम होने वाला है, ये इवेंट होने वाला है, तो क्या सच में बताइए एक साथ होने वाला है?
1: ये बिल्कुल, ये तो आप कहते हैं ना, एयरफोर्स प्रिसीजन पे बिलीव करती है, जो हमारा मिशन है वो प्रिसीजन है, तो हमारा मिशन यही है कि एक ही टाइम पे शुरू होना, एक ही टाइम पे खत्म होना, एक ही दिन करना, तो ये हमारा प्रिसीजन को हम सबको दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम इतना हमारा जबरदस्त प्रिसीजन है कि हम उसको आउटरीच कर सकते हैं, बेशक हम कोलोकेटेड ना हो, अक्रॉस इंडिया स्प्रेड हो, पर हम उसको अचीव कर सकते हैं।
0: ठीक उस तरह जिस तरह से हमारा एक कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स है जो ठीक 4 बजे अलग अलग केंद्रों पर सुनाई देता है, तो आपके और हमारे बीच में एक समानता तो यह हो गई कि हम प्रेसिशन यानी कि डिसिप्लिन समय को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, और फोर्सेस की यही खास बात है और आकाशवाणी की भी यही खास बात है कि समय हमारे लिए सर्वोपरि है, सही समय पर बड़ी बड़ी जंग जीती जा सकती है।
1: जब भी हम आई थिंक एक मंच पे एक ही चीज डिस्कस कर रहे हैं,
0: वह क्या बात है, और हम चाहेंगे कि इस मंच के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, हम यूं ही एयरफोर्स भारतीय वायु सेना का परचम लहराते रहे। परचम आप लहरा रहे हैं लेकिन उस परचम को हम अपने हाथों में ले दुनिया तक पहुंचाएं। अब एक बार फिर से बात आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि इसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा और अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो है मैराथन के लिए लोग भागेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे मन से तन से और यही सोचेंगे कि हमें जीत हासिल करनी है। एक बार दोबारा से हमारे सभी सुनने वालों को ना इन कैटेगरीज के बारे में आप बताएं, और ये भी बताएं कि जब हम किसी प्रतिस्पर्धा में का हिस्सा बनते हैं तो जीत में हम चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले, वो अवार्ड्स जो इस मैराथन के माध्यम से उन तमाम पार्टिसिपेंट्स को मिलने वाले हैं उसके बारे में भी जिक्र करें।
1: हाफ मैराथन्स नॉर्मली 3 कैटेगरी में होती है, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। 21 किलोमीटर 10 किलोमीटर टाइम रन होता है, मतलब कंपटीशन होता है, 5 किलोमीटर नॉर्मली फन रेस होता है, पर हमने ऐसा नहीं किया। हम चाहते हैं तीनों कैटेगरी में कंपटीशन हो, तो हमारे 21K, 10K और 5K तीनों कॉम्पिटिटिव हैं, और तीनों में जो भी ओपन कैटेगरी एंड डिफेंस कैटेगरी में जो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएंगे सबको प्राइज मिलेगा, एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी

0: वहीं पे होगी जेएलएन में, एंड एक अच्छा अमाउंट है, 25 लाख के आसपास हमने ईयरमार्क किया है फॉर द इवेंट. तो ऑल द बेस्ट फॉर द पार्टिसिपेंट.
1: डिफेंस पर्सनल और सिविलियंस के लिए अलग अलग अवार्ड कैटेगरीज हैं.
0: हर रेस में डिफेंस के लिए अलग है और सिविलियंस के लिए अलग है. जो जिन्होंने जैसे डिफेंस ने रजिस्टर किया तो वो उसमें कॉम्पीट करेंगे, और सिविलियंस का जो हुआ है उसमें कॉम्पीट करके दोनों को अलग अलग प्राइज मिलेंगे. कैटेगरीज दोनों के लिए अलग अलग है
1: जी, क्योंकि हमारे भारतीय वायुसेना के या डिफेंस पर्सन्स जो हैं वो तो सक्षम हैं, और किसी भी कहते हैं जंग पर लड़ना उनके लिए नामुमकिन बिल्कुल नहीं है. लेकिन कहते हैं कि जहां हमने ये सोच लिया कि बस ये जीत हमारी है, वहां आधा काम खत्म. हमें हमेशा तैयार रहना है, हमेशा अपने आप को गियर अप करना. यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और मैं जानना चाहती हूँ, जब भी कोई पार्टिसिपेंट रजिस्टर करता है तो उस वक्त उसकी शारीरिक सक्षमता कितने मायने रखती है? क्या उसे कोई मेडिकल फिटनेस फॉर्म सबमिट करना होता है?
0: ये अगर आप फॉर्म देखें तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है सारे मैराथन्स की, कि उसको ही और शी हैज़ टू टेल के ही इज़ मेडिकली फिट टू अंडरगो. उसको अपने सेल्फ डिक्लेरेशन करनी पड़ती है, और हम उसको कंसिडर करते हैं. अगर कोई इंसान सेल्फ डिक्लेयर कर रहा है तो वो फिजिकली फिट है.
1: जी, सबसे पहले अपने शरीर को हम स्वयं जानते हैं, और जब हम ये मानते हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं, तो हम यही कह रहे हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं. अब यही सवाल मैं डिफेंस पर्सनल के संबंध में पूछना चाहूंगी. वो डिफेंस पर्सनल जो इस इवेंट का हिस्सा बन रहे हैं, उनका भी वेरिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे डिफेंस पर्सनल ऐसे भी होंगे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अब भले ही सेवा में नहीं है, फोर्सेस में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सेवाओं का हिस्सा रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन किस माध्यम से होता है?
0: ये इसको स्मूथली हम ईज करने के लिए हमने एक्सपो में एक काउंटर्स बनाए हैं, वेरिफिकेशन काउंटर्स, जहां पे हमारे सर्विंग और रिटायर्ड पर्सनल ऑफ ऑल आर्म फोर्सेस वो आ सकते हैं. वो अपना आईडी कार्ड दिखा के वो अपने बिप कलेक्ट कर सकते हैं. तो प्रोसेस बहुत स्मूथ है, इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. आप जाएंगे वहाँ पे, बहुत ईज है, डिफरेंट काउंटर्स हैं, आप अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं.
1: वाह क्या बात है. कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो. लेकिन हम यही कहेंगे कि यहाँ आपको आसमां छूने का मौका दिया जा रहा है, आप बिल्कुल बिना किसी भय के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, क्योंकि भारतीय वायुसेना आपके साथ है, आपके लिए कार्यरत है, और आपको ये सुनहरा मौका दे रही है कि आप हिस्सा बन सके सेकेंड एडिशन ऑफ सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन सिम 2026.

0: व्यक्तिगत रूप से कहूं तो आज मुझे बहुत बहुत आनंद आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी एयरफोर्स स्टेशन में बैठी हुई हूं, और भले ही हमारे साथ यहां पर विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी यूनिफॉर्म में हैं, पर ना जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे इस नीली पोशाक ने ना अपनी रंगत स्टूडियो के अंदर बिखेरी हुई है और मैं इस रंग में बहती चली जा रही हूं और आसमान के किसी छोर को ना पकड़ने की कोशिश कर रही हूं। आपको दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, और भारतीय वायुसेना जो हर साल, जो कहूंगी मैं कि हर वक्त यही कोशिश करती है कि स्पोर्ट्स के माध्यम से सभी भारतवासियों को जोड़े, और इसकी पहल, इसकी मुहिम सुब्रतो कप और अब सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन के माध्यम से की जा रही है। ये सेकेंड एडिशन है, फर्स्ट एडिशन का आप खुद साक्षी रहे हैं, किस तरीके का माहौल होता है?
1: अगर मैं कहूँ, मतलब वो कहते हैं गूज़बम्प्स, तो ये एक पहला वर्ड होगा। अब मैं अपने श्रोतागण को बोलना चाहूंगा कि मेरी आवाज के माध्यम से इमेजिन करें कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की हरी घास, ओपन एरिना, व्हाइट फ्लड लाइट वहां पे है, हमारी जो टी शर्ट की थीम है वो व्हाइट कलर है विथ ट्राई कलर थीम, तो जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान में तारे होते हैं ना, एक तारों की पूरी चादर बिछी हुई है, तो अगर कोई हाइट पे खड़ा होकर देखे तो उसे ऊपर भी तारे दिखेंगे और जमीन पे भी तारे दिखेंगे, तो ऐसा माहौल होता है कि मन करता है बस ये देखता ही जाए।
0: वाह, क्या बात है, आपने कहीं ना कहीं कहते हैं रेडियो के माध्यम से वैसे भी हमारे जो श्रोता है ना, उनके आंखों के आगे चित्र घूमने लगते हैं, मेरी आंखों के आगे साक्षात आपके शब्दों से चित्र बनने लगे हैं और मैं महसूस करने लगी हूँ कि कितना भव्य माहौल वहाँ होने वाला है। आप खुद को महसूस करने वाले हैं उन हवाओं में, फिजाओं में, जिनकी कल्पना आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने भर मात्र से कर ली होगी। भले ही आपके मन में द्वंद्व भी होगा, परेशानी भी होगी कि हम क्यों इसका हिस्सा ना बन पाए, क्योंकि हम कहते हैं कि जिंदगी आपको

0: दूसरा मौका जरूर देती है, तो तीसरे एडिशन का आप हिस्सा जरूर बन पाएंगे। अब बात करें और जानकारी हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हम अर्जित कर सकें। हमें भारतीय वायु सेना पर पूरा पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ज्यादा हमारे जो भारतीय हैं वो जुड़ेंगे और अगली मर्तबा फिर आएंगे। अगर हम बात करें वहाँ जिस तरह की फैसिलिटीज आपने जैसे बताया कि यहाँ पे की गई हैं, रूट्स और मैप्स, उसके लिए क्या हमारे पास वहाँ पर प्रावधान है? कितना आसान, कितना सरल है जब हमारे पार्टिसिपेंट्स वहाँ दौड़ेंगे, चलेंगे, भागेंगे, उनके लिए आप बताएं।
1: जो रेगुलर रनर्स है, अगर जे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में देखा जाए तो 21, 10 और 5 के का स्टैंडर्ड रूट रहता है। इसकी पूरी जानकारी हमने एक्सपो में दे रखी है, बट ये सारी जानकारी थ्रू मेल भी लोगों के पास गई हुई है। फिर मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन दोबारा बताना चाहूँगा कि 21 किलोमीटर जो है वो पूरा ल्यूटेंस दिल्ली में घूमते हुए कर्तव्य पथ पे जाती है, और जब वापस हम आते हैं तो जो हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल है जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी है, उसके राउंडल के थ्रू आती है। तो एक यूनिक चीज़ है, नॉर्मली रेसेस वहाँ से नहीं होती हैं, पर हमने परमिशन ली है वहाँ की, तो आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस देंगे। और जो 21 किलोमीटर के रनर्स होते हैं नॉर्मली 7, 7:15 के आसपास वहाँ से निकल रहे होते हैं, और उस टाइम सनराइज हो रहा होता है, तो वो एक ऐसा पिक्चरिस्टिक माहौल होता है कि आपको थकावट भी आपकी दूर हो जाती है और आनंदित हो जाते हैं। एज फार एज 10K गोज, तो 10 किलो भी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से निकल के लोधी रोड के एरिया के आसपास सर्कुलर रूट है, वहां पे करते हुए वापस आएगी, और 5 किलोमीटर भी उसका जस्ट हाफ है, उसी रूट पे रहेगी।
0: बहुत खूब, तो आपके लिए पूरे प्रावधान, पूरी फैसिलिटी भारतीय वायुसेना ने कर रखी है, बस आप उस कार्यक्रम का हिस्सा बनना है। अब एक ना बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, अगर आपकी इजाजत से पूछ लूं, वो जो गुडी बैग आप देने वाले हैं उसमें पार्टिसिपेंट्स को क्या क्या मिलने वाला है? कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले मन में उत्सुकता होने लगी कि क्या क्या मिलने वाला है।
1: काफी कुछ मिलने वाला है, अगर आप गुडी बैग को ही देखें तो उसमें शेखो साहब की फोटो है, सबसे बड़ी, तो आप मनमोहक हो जाएंगे उस गुडी बैग को देख के। गुडी बैग के अंदर हमारा एक एयरक्राफ्ट का मॉडल है, एक जो हम अपने ओवरऑल्स पे एक सेखो का पैच, नॉर्मली जैकेट से है उस पर एक पैच लगाते हैं, पैच है उसके अंदर अवेलेबल, एनर्जी बार है उसके अंदर, एक रिस्ट बैंड है जब भी आप भागेंगे और आपको पसीने आएंगे उसको सुखाने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी टी शर्ट। इस बार हमने रीबॉक के साथ कोलैबोरेशन किया है और एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट है जो आपको रनिंग का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देगी।
0: बहुत खूब, एक बात कहूँ, आप गुडी बैग नहीं दे रहे हैं, आप सपने दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ मैं उसी दौर में फिर पहुंच जाऊं जब मैं फिर एफओस का एग्जामिनेशन देने के लिए खुद को तैयार करूं। तो सपने दे रहे हैं यहाँ पर विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी, आप जरूर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे कह रही हूँ, सेकेंड एडिशन ऑफ सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन सिम 2026, और उम्मीद की लौ कायम रखिए, थर्ड एडिशन आपके लिए और भी शानदार होगा। लेकिन वर्तमान की अगर बात की जाए तो
1: किसी का ये आप सर ने सही बोला, सपने देखेंगे जब भी तो पूरे होंगे।
0: बिल्कुल, लेकिन अगर कोई सपने दे दे अपने हाथों से तो उससे बड़ी बात दुनिया में शायद कुछ और हो नहीं सकती। एक सवाल हमारे पास और है, अक्सर हम जब कहीं जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारा बैगेज होता है। अब हम सोचते हैं खासतौर पर जब मैराथन में जब हम दौड़ेंगे भागेंगे तो उस वक्त हमारे सामान का क्या होगा, तो इसके लिए क्या फैसिलिटी है?
1: इसके लिए फैसिलिटी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में है, जब जैसे आप एंट्री करेंगे हमने बहुत बड़े बैगेज काउंटर्स बनाए हुए हैं जहां आप अपना बैगेज सुरक्षित डिपॉजिट कर सकते हैं, और जब आपकी रेस खत्म होती है वहां से वापस ले सकते हैं।
0: जी बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल निश्चिंत तो होकर जाइए, आपकी सुरक्षा, आपके सामान की सुरक्षा भारतीय वायुसेना करने वाला है इस मैराथन में। अब अक्सर ना हमारे साथ क्या होता है, टिकट मिला है, टिकट दिया है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, दोस्त तुम चले जाओ। अक्सर हमारे साथ ये होता है। तो क्या इस मैराथन में कोई पार्टिसिपेंट ऐसा कर सकता है कि मैं नहीं जा पा रहा हूं तो अब मेरा घर का परिजन, मेरा दोस्त चला जाए?
1: काश ऐसा हो पाता, बड़े नॉन ट्रांसफरेबल है।
0: जी, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि बिब आपका पूरा वेरिफिकेशन देगा, पूरा आपका ब्यौरा देगा कि आप वही हैं जो अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो इस बात को आप जहन में बिठा लीजिए जनाब कि आपको पूरी एहतियात के साथ यहाँ पर पहुँचना है। यहाँ पर मैं कुछ नाम लेना चाहूँगी और उसके बाद आपसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो पूछना चाहेंगे। आज मैंने इस कार्यक्रम में व्हाट्सएप नंबर का जिक्र नहीं किया, उसके बावजूद बहुत से संदेश यहाँ तक हमें मिले हैं, और वंदे मातरम लिखा है हमारे पास, सरवाड़ से संदीप आया है, अरकेड़ी पंडित चन्नप्पा का संदेश भेजने वालों में और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिनमें

0: द्वारका सेक्टर 15 से शंकर का संदेश है, वंदे मातरम में यश शिंदे मुंबई से इन्होंने लिख भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का आपके संदेश। तफसील से मैं कमांडर साहब को, विंग कमांडर साहब को सुनाऊंगी, लेकिन यहां समय की नजाकत है, सिर्फ नाम पढ़ पाऊंगी। पंकज अमरावती संदेश भेजा है, यशवंत आडमुटे इन्होंने संदेश भेजा है महाराष्ट्र से, बीकानेर से हमारे पास संदेश आया है, मंसूर अली का दमदार संदेश टू सोल्जर्स इन्होंने लिख भेजा है वंदे मातरम, तमिलनाडु से हमारे पास आया है ये संदेश, नाम नहीं लिखा, विजय कुमार भी इन्होंने संदेश नाम भेजा है, और चंपावत तनकपुर उत्तराखंड से संदेश आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। अनिल कुमार का हमारे पास संदेश है, आज समय कम है लेकिन संदेशों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। अब यहां पर आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल जो मैं पूछना चाहूंगी, स्पिरिट ऑफ सिखों क्या है ये हमें बताएं।
1: ये एक हमने पहल करी है इस एडिशन से, हमने देखा है कि मैराथन्स में काफ़ी लोग होते हैं जो किसी इश्यूज के वजह डिप्राइड होते हैं, किसी अंग में कोई डिफेक्ट होता है या अदरवाइज कोई एक्सीडेंटल इश्यूज हो जाते हैं, या कुछ लेडीज़ होती हैं जो ओल्ड एज होती हैं वो साड़ी वगैरह पहन के भागती हैं, कुछ कॉस्ट्यूम्स इस तरह की होती हैं, तो ये शो करता है कि हाँ ये दीज आर डेडिकेटेड। जैसे सेखो साहब का स्पिरिट था इतना हाई इंडिया के लिए, ऐसा ही इन लोगों के लिए यूनिकनेस है कि इनका स्पिरिट इतना हाई है कि इतने चैलेंजेस के बाद भी उनको वो एक अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं और वो इस रेस में भाग रहे हैं। तो हमारी वहाँ टीम रहेगी जो असेस करेगी ऐसे हमारे धावकों का, और उनको हम फेलिसिटेट करेंगे रेस के बाद।
0: बहुत कुछ। एक बात और, महिलाएं और पुरुष दोनों की तादाद आप अगर कंपैरिजन, तो खैर सवाल नहीं उठता, लेकिन अगर बात की जाए जितना बढ़ चढ़कर पुरुष हिस्सा लेते हैं, महिलाएं भी आपने फर्स्ट एडिशन में देखा होगा, तो महिलाओं का भी इसी तरीके की प्रतिक्रिया रहती है,
1: काफी योगदान रहता है। मैं कहूंगा बराबर तो नहीं, मैं 60-40 की रेशियो तो 100% रहती है।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है। तो अगली बार मैं भी हूँ, इसीलिए यहाँ पर अपना नाम दर्ज करवा रही हूँ, खासतौर पर विंग कमांडर सत्येंद्र सिंह धनकर जी को। अब एक बार दोबारा से उन सभी स्टेशन का नाम ले लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की ना अपने राज्य से, अपने जहां पे भी एयरफोर्स स्टेशन है, एक आत्मीयता जुड़ी होती है, और लगता है अच्छा हमारे शहर में, हमारे जो शहर का जो एयरफोर्स स्टेशन है राज्य का, यहां पर भी है, उनका नाम ले लीजिए।
1: तो जैसा मैंने पिछली बार नॉर्थ टू साउथ गया था, अब मैं सोचता हूँ रिवर्स एक्शन करते हैं, अब साउथ टू नॉर्थ चलते हैं। तो अगर साउथ इंडिया में जाए तो तिरुवनंतपुरम पहला स्टेशन है, बेंगलुरु दूसरा स्टेशन है, उसके बाद और ऊपर सेंटर में आए तो ग्वालियर है, ईस्ट में जाए तो गुवाहाटी है, वेस्ट में मुंबई और जोधपुर है, और नॉर्थ इंडिया में चंडीगढ़।
0: तो आप कहीं से भी हैं, आपके लिए सुनहरा मौका है, आप इसका हिस्सा बनिएगा। हम जानते हैं आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली हैं, 15 सितंबर को रजिस्ट्रेशन समाप्त तो हो गए थे, लेकिन जैसे कि हम बहुत उम्मीदवान हैं, ऊर्जावान हैं, और हमारी ऊर्जा हमें अगले साल की ओर भी रुख कर रही है, लेकिन अगले साल के लिए आपको जानकारी तो फिर भी चाहिए होगी, तो हम धनकर साहब से निवेदन करना चाहेंगे कि साइट का नाम दोबारा बता दें, जिससे कि हमारे वो श्रोता जो इस बार न सही अगली बार हिस्सा बन पाए इस मैराथन का।
1: अगर आप गूगल पे डालेंगे sekhoifmarathon.in, ये साइट का नाम है, आप एक बार इसको देख लें। मैं अर्ज करूंगा जो नहीं भी पार्टिसिपेट कर पाए फिर भी इस साइट को एक बार विजिट कर लें, फ्यूचर में भी यही साइट रहने वाली है, हम इसी पे अपने नेक्स्ट एडिशन कंटिन्यू करेंगे।
0: बहुत खूब, हम दिल से एक बार फिर धन्यवाद देना चाहते हैं विंग कमांडर सत्येंद्र सिंह धनकर जी का, और हम यही चाहते हैं कि हर मर्तबा हम आपके साथ यूं ही हर शो में शामिल हों, आपसे बात करें, और सेकेंड एडिशन ऑफ सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन सिम 2026 सफल हो, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने हमेशा जीतना सीखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका,
1: धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, एंड ऑल द बेस्ट।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। प्रस्तुत है युवाओं का दैनिक और पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, युवाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की युवाणी सफर की हम सफर, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अलका चौधरी। दोस्तों, आज के सफर में हम आपसे बात करेंगे स्वच्छता के नए आयाम। आज के डिजिटल युग में स्वच्छता हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, ये कोई बताने की बात नहीं है। आज के तकनीकी युग में स्वच्छता केवल झाड़ू लगाने या कचरा उठाने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि तकनीकी नवाचार और डिजिटल जागरूकता ने इसके स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया है। स्वच्छता के लिए मोबाइल ऐप ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, जैसे स्वच्छता ऐप। इस ऐप के जरिए कोई भी नागरिक अपने आसपास के कचरे या गंदगी की फोटो खींचकर प्रशासन को भेज सकता है। और दोस्तों, डिजिटल ट्रैकिंग के कारण नगर निगमों को तय समय सीमा के भीतर उस समस्या का समाधान करना होता है। इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स और सेंसर टेक्नोलॉजी ने कचरा प्रबंधन को स्मार्ट बना दिया है, जैसे स्मार्ट डस्टबिन। आजकल कई शहरों में ऐसे डस्टबिन लगाए जा रहे हैं जो भर जाने पर अपने आप नगर निगम के कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज देते हैं, जिससे सही समय पर कचरा गाड़ी आकर कचरा ले जाती है। और दोस्तों, कचरा गाड़ियों में GPS ट्रैकिंग लगाया जाता है, जिससे मालूम चल सके कि गाड़ी हर इलाके में जा रही है। इसके अलावा डिजिटल रिसाइकलिंग प्लेटफॉर्म, अब कई ऐसी वेबसाइट और ऐप उपलब्ध हैं जो कि घर बैठे आपका ई कचरा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट खरीदते हैं और उन्हें वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकल करते हैं। डिजिटल युग ने स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाने में मदद की है।

दोस्तों, आज 1 अक्टूबर है जो कि सैन्य नर्सिंग सेवा का स्थापना दिवस है, जो भारतीय सशस्त्र बलों में महिला नर्सिंग कर्मियों के योगदान और समर्पण को सम्मानित करता है। इसकी शुरुआत सन 1926 में हुई थी। यह भारतीय सशस्त्र बलों की एक मात्र पूरी तरह से महिला कोर है, जो युद्ध, शांति और आपदा के समय सैनिकों और उनके परिवारों की सेवा करती है। दोस्तों, इस सेवा का मुख्य आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि स्वयं से पहले सेवा और करुणा के साथ

देखभाल करना। ठीक उसी तरह से जिस प्रकार एक माँ बाप अपने बच्चों की सेवा करते हैं, उनके नाज नखरे उठाते हैं, उनके लिए अपने सुख चैन अपना कैरियर तक दांव पे लगा देते हैं, केवल उनके पालन पोषण के लिए

माता पिता अपने बच्चों के सही तरीके से परवरिश के लिए और ऐसा करना उन्हें कोई बोझ नहीं लगता, ये तो उनकी खुशी है, उनका कर्तव्य है। हम अपने जीवन की प्रथम शिक्षा अपने माता पिता से ही ग्रहण करते हैं। सही गलत, अच्छे बुरे का ज्ञान हमें अपने माता पिता से ही प्राप्त होता है। या यूं कहिए कि हम जो कुछ भी अपने जीवन में सफलता पाते हैं, वो सब हमारे माता पिता के मेहनत का फल होता है। दोस्तों, हमारे माता पिता हमें हमेशा हर कदम पर जागरूक बनाते हैं, हमारे कर्तव्यों को, हमारे अधिकारों के बारे में हमें बताते हैं। पर जब वही माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो हम उन्हें बोझ समझने लगते हैं, जो कि गलत है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, हमें भी उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करना चाहिए, उन्हें सम्मानजनक जीवन शैली भी देनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

वेलकम बैक दोस्तों, युवाड़ी कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज है 1 अक्टूबर। आज के दिन 1847 में एक ब्रिटिश समाज सुधारक, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था, जिनका नाम एन बेसेंट था। एनी बेसेंट भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई थी। इनका जन्म लंदन में हुआ था। इनके पिता विलियम बर्टन पर्सवुड एक विद्वान और चिकित्सक थे। इनकी माता एमिली रोश मारिश एक आयरिश महिला थी। इनके पिता का निधन बचपन में हो गया था। इनका बचपन बहुत कष्टों में गुजरा, पर इनमें सीखने का गुण बचपन से ही था। इन्होंने 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, जो बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। इतना ही नहीं दोस्तों, इन्होंने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में योगदान दिया और भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके कार्य हमेशा हमें प्रेरित करते रहेंगे।

0: वेलकम बैक दोस्तों, FM 102.7 पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण और कार्यक्रम है युववाणी और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त अलका चौधरी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 1 अक्टूबर है और आज हम मना रहे हैं एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि। आइए इनके बारे में और हम जानते हैं वार्ता के माध्यम से। वार्ता का विषय है इतिहास के पन्नों में अमर नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। वार्ताकार हैं राहुल यादव।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल यादव है। आज मुझे जिस महान व्यक्तित्व पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला है वह केवल एक सैनिक नहीं बल्कि भारत की आत्मा और अंतरात्मा की आवाज थे। साथियों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेक वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, लेकिन कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने हथियार उठाने से ज्यादा साहसिक काम किया, अन्याय के सामने ना कहना। भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल एक राजनीतिक आंदोलन और बड़े नेताओं तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उन असंख्य गुमनाम और अल्प ज्ञात वीरों के त्याग, साहस और नैतिक दृढ़ता से भी बना था जिन्होंने अन्याय के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया। ऐसे ही एक महान नायक थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जिनका नाम भारतीय इतिहास में विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। वे न केवल एक साहसी सैनिक थे बल्कि मानव

मानवता, नैतिकता और देश प्रेम के सच्चे प्रतीक भी थे। दोस्तों, वीरचंद सिंह गढ़वाली का जन्म 25 दिसंबर 1891 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। सीमित साधनों के बावजूद उनके मन में देशभक्ति और सत्य के प्रति गहरा सम्मान था। युवावस्था में वे भारतीय ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए और गढ़वाल राइफल्स का हिस्सा बने। एक सैनिक के रूप में वे अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और साहस के लिए जाने जाते थे। परंतु उनकी असली पहचान उस समय बनी जब उन्होंने सैनिक होने के साथ साथ एक जागरूक और संवेदनशील नागरिक होने का परिचय दिया। दोस्तों, सन 1930 में घटित पेशावर कांड भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। उस समय ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पठानों और स्वतंत्रता सेनानियों का आंदोलन चल रहा था। ब्रिटिश अधिकारियों ने निहत्थे भारतीय प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया। यह आदेश गढ़वाल राइफल्स के सैनिक को दिया गया, जिसका नेतृत्व वीरचंद सिंह गढ़वाली कर रहे थे। उस निर्णायक क्षण में उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी और स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे अपने ही देशवासियों पर गोली नहीं चला सकते। यह निर्णय अत्यंत साहसिक था, क्योंकि सेना में आदेश न मानना एक गंभीर अपराध माना जाता था। इसके परिणाम स्वरूप वीरचंद सिंह गढ़वाली और उनके साथियों को कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा। उन्हें कठोर कारावास की सजा दी गई और वर्षों तक जेल में अमानवीय यातनाएं सहनी पड़ी। लेकिन इन कष्टों के बावजूद उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। उनका यह बलिदान अहिंसा, मानवता और नैतिक साहस का अनुपम उदाहरण बन गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वीरचंद सिंह गढ़वाली का जीवन अत्यंत सादा और प्रेरणादायक रहा। उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, परंतु सत्ता, पद और वैभव के सदैव दूर रहे। उनका उद्देश्य केवल समाज और देश की सेवा करना था। वे हमेशा सैनिकों के अधिकारों, आम जनता की समस्याओं और नैतिक मूल्यों की बात करते थे। दोस्तों, वीरचंद सिंह गढ़वाली का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा साहस केवल हथियार उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होने में है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि एक सैनिक का सबसे बड़ा धर्म अंधा आज्ञा पालन नहीं, बल्कि मानवता और सत्य की रक्षा करना है। आज के युग में जब भी नैतिक मूल्यों का क्षरण दिखाई देता है, उनका जीवन हमें ईमानदारी, कर्तव्य और देश प्रेम का मार्ग दिखाता है। वीरचंद सिंह गढ़वाली का साहस केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं था, वे अपने कर्तव्य और अनुशासन के लिए भी जाने जाते थे। अपने साथियों के बीच उनका सम्मान और आदर इस बात का प्रमाण था कि वह केवल बहादुर ही नहीं, बल्कि एक प्रेरक नेता भी थे। उन्होंने अपने जीवन में यह साबित किया कि सच्ची वीरता केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता, नैतिक साहस और कर्तव्य निष्ठा में निहित है। उनके संघर्ष और परिश्रम ने उनके साथियों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया। साथियों, उनकी वीरता और देशभक्ति को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सैन्य सम्मान सर्वश्रेष्ठ वीरता पदक से सम्मानित किया। यह सम्मान उनके अदम्य साहस, अनुशासन और देशभक्ति का प्रतीक है। उनके जीवन की कहानी आज भी युवाओं को प्रेरित करती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। उनके साहस की गाथा सुनकर हम भारतीय के हृदय में गर्व की भावना जाग उठती है। अंततः कहा जा सकता है कि वीरचंद सिंह गढ़वाली भारतीय वीरता और देशभक्ति का प्रतीक हैं। उनका जीवन साहस, अनुशासन, समर्पण और नेतृत्व का अद्भुत उदाहरण है। उनका व्यक्तित्व हमें यह प्रेरणा देता है कि कठिनाइयों के सामने डरना नहीं चाहिए और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। उनका जीवन आज भी हर भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। उनकी गाथा हमें सिखाती है कि वीरता केवल युद्ध में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में नैतिक साहस और कर्तव्य निष्ठा के माध्यम से प्रकट होती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि एक विचार है। ऐसा विचार जो हमें अन्याय के सामने झुकने से मना करता है। उनका नाम न केवल इतिहास के पन्नों में, बल्कि हर उस भारतीय के हृदय में अमर है जो सत्य, साहस और देश प्रेम में विश्वास रखता है। वीरचंद सिंह गढ़वाली

0: सत सत नमन, धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता। वार्ता का विषय था इतिहास के पन्नों में अमर नाम वीर चंद सिंह गढ़वाली। वार्ताकार थे राहुल यादव।

0: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति रानी रासरी की है और प्रस्तुत करता है सचिन कुमार वर्मा।
1: दिल की धड़कन, बीट का वाइब्रेशन,
2: आपकी चॉइस, हमारा डेडिकेशन।
1: कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
3: हेलो हेलो
4: हेलो
2: आपके दिल की आवाज आपके रेडियो सेट पर।

0: कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस सफर में आपके साथ हूँ रानी राजश्री। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आपसे बातचीत का ये सिलसिला।
1: हेलो फरमाइश
0: जी, कार्यक्रम हेलो फरमाइश सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: जी मैम नमस्कार।
0: जी सर, अपना परिचय दें सर।
1: जय हीरामन बाबा रेडियो श्रोता संघ, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश से विनोद नारायण कुशवाहा बोल रहा हूँ मैं। आज मेरा पहली बार फोन लगा इस प्रोग्राम में।
0: बहुत अच्छी बात है सर, आपने पहली बार प्रयास किया और फोन लग गया।
1: जी जी मैम, प्रयास तो करते रहते हैं, लेकिन हम प्रयास जब तक करते हैं सफलता न मिल जाए, ट्राई अगेन करते रहो।
0: बिल्कुल सर, और ये जो कोशिश है यही हमारी सफलता का राज है।
1: जी जी मैम, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, काम चाहे जो भी हो, प्रयास लगातार करते रहना चाहिए, सफलता जरूर हासिल होगी।
1: लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं,
0: हार नहीं होती। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। और सर बताएं अपने बारे में, अपने शहर के बारे में बताएं।
1: मध्य प्रदेश में अशोकनगर जिले की तहसील है ईसागढ़, हम वहीं पर रहते हैं।
0: जी जी,
1: खेती बाड़ी का काम करते हैं। अभी सोयाबीन है, मक्का है और धान लगी हुई है।
0: अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है इसके बारे में भी बताएं।
1: परिवार तो मैम बहुत बड़ा है, कुछ लोग गांव पे रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं। मम्मी जी हैं, पापा जी हैं, एक सिस्टर है, एक बहन भैया है हम, और तीन बच्चे हैं मैम, दो लड़की एक लड़का।
0: बहुत बढ़िया सर, जैसे कि हम लोग देखते हैं अक्सर घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनके प्रति थोड़ा सा ध्यान कम कर देते हैं, उनकी केयर कम कर देते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आज रेडियो के माध्यम से।
1: जी मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हमारा बचपन था
0: जी,
1: जब वो हमारी सेवा करते थे माताजी पिताजी हो,
0: फिर
1: जब हम बीमार हो जाते हैं या कोई समस्या होती है तो वो हमको तुरंत उपचार करवाते हैं। जब उनका समय था तो उन्होंने हमको भरपूर साथ दिया। बुजुर्ग हो गए, उनका बुढ़ापा आया, तो उसी प्रकार हमको भी उनकी सेवा करनी चाहिए जिस प्रकार उन्होंने हमारा साथ दिया।
0: बिल्कुल सर, क्योंकि कहते हैं ना बाल्यावस्था और वृद्धावस्था दोनों एक समान वो चलते रहते हैं, और केयर उतनी ही जरूरत होती है, प्यार उतना ही जरूरत होता है। तो सर आज फरमाइश क्या रहेगी कार्यक्रम में आपकी।
1: जी मैम, आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है और ऐसा लगता है कि सुनकर दिल गार्डन गार्डन हो जाता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर बताएं फरमाइश क्या रहेगी आपकी।
1: सरस्वती चंद्र है फिल्म का नाम। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के।
0: और लता जी का ये खूबसूरत सा गीत हम सुनवाते हैं आपको।

0: हेलो
1: जी, कार्यक्रम हेलो फरमाइश सर।
0: रानी जी, नमस्ते
1: नमस्ते सर, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
0: जी। थैंक यू सो मच। प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बचोड़ा, तहसील नागदा, उज्जैन से।
1: तो सर बताएं, क्या खबर है आपके शहर की, आपके आसपास के माहौल की, उसके बारे में बताएं।
0: जी, काफी अच्छा मौसम है, साफ मौसम है और सोयाबीन की कटाई हो रही है यहाँ पर। कल हमने भी अपनी सोयाबीन की फसल निकाली है
1: जी
0: जी, और अभी काफी अच्छा मतलब पैदावार हो गई है साथ
1: जी जी और सर, ये कहते हैं
0: जी।
1: ना कि खेती बाड़ी से एक जो लगाव होता है वो हमें प्रकृति के साथ जोड़ने में भी बहुत सहायता होता है।
0: जी बिल्कुल, जब खेत में काम करते हैं ना, एक दूसरे से बातें भी होती रहती है
1: जी जी
0: और उनके बारे में जानकारी मिलती रहती है और काम में बड़ा मन लगा रहता है जब मोबाइल पे कार्यक्रम भी सुनते हैं तो।
1: मतलब काम भी करते हैं और साथ में रेडियो भी चलता रहता है।
0: जी बिल्कुल, और जब थोड़ा सा टाइम निकाल के कॉल भी लगाते हैं
1: बिल्कुल सर। सर,
0: जी।
1: अगर हम लोग जैसे समाज के बारे में अक्सर हम लोग जागरूक रहने की बात करते हैं, तो उसमें एक समस्या सर ये आती है, घर के जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, उनके प्रति जो थोड़ा सा लगाव है, थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है आजकल। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आज?
0: जी, इसके लिए ये कहना चाहेंगे कि बड़े बुजुर्गों का साथ रहेगा ना तो
1: जी
0: उनके जो भी काम में होगा अच्छा रहेगा, और काम के प्रति और बुजुर्गों के साथ दोनों मिलकर अगर साथ रहेगा, क्योंकि बुजुर्गों को जिंदगी का काफी अनुभव होता है और
1: बिल्कुल
0: जो चीजें हमें नहीं पता होती है उन लोगों को पता होती है, तो हम उनसे बेहतर सीख सकते हैं।
1: बिल्कुल, वो एक ऐसे वृक्ष की तरह होते हैं हमारे लिए कि उनकी छत्र छाया में अगर हम बढ़ें, सीखें, तो बहुत कुछ जानने और समझने का मौका मिलता है।
0: जी बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बुजुर्गों से दूर रहते हैं, उनकी बातें नहीं मानते हैं, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि बुजुर्गों का सम्मान करें, साथ में रहे, और वो जो भी कहेंगे ना हमारी भलाई के लिए ही
1: और
0: कहेंगे।
1: बिल्कुल, उनके अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये जो सफर है जीवन का, इसके बारे में हमें बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है।
0: जी बिल्कुल
1: तो सर, आज फरमाइश क्या रहेगी आपकी?
0: रानी जी, बताना चाहेंगे फिल्म का नाम है आपकी कसम,
1: जी
0: और गाने के बोले करवटे बदलते रहे सारी रात।
1: बिल्कुल सर, तो हम आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार सर, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है
0: आपका। शुभ चिंतक बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर से संवाद कर रहा हूँ।
1: सर बहुत बहुत कार्यक्रम में स्वागत है सर। सर बताएं आपके शहर के बारे में, क्या कुछ मौसम है, क्या कुछ माहौल है?
0: जी, हमारा शहर एक ऐतिहासिक शहर, इसका पुराना नाम औरंगाबाद। यहाँ पे बीबी का मकबरा
1: जी,
0: दक्खन का ताज महल कहते हैं, जो आगे

0: राज्य प्रतिकृति है
1: जी,
0: और इसके 7 किलोमीटर के अंतर पर दौलताबाद का किला, वहां से 7 किलोमीटर के बाद खुलताबाद है जहाँ औरंगजेब की कब्र है
1: जी जी
0: और खुलताबाद से 1-4 किलोमीटर के एलोरा की गुफा है जो बड़े पहाड़ियों में शिल्प कला का एक अद्वितीय ऐसा नमूना है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज में गिना जाता है।
1: हम लोगों ने इतिहास में ये चीज पढ़ी भी है और आज भी ये चीजें बताई जाती है। आज रेडियो के माध्यम से हमारी आपकी बात हो रही है, तो युवा वर्ग के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आज?
0: युवा वर्ग ने अपने देश के प्रति वफादारी और देश की प्रगति उन्नति कैसे हो इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक, शैक्षणिक और मेडिकल, इंजीनियरिंग सभी क्षेत्रों में अग्रसर करे ताकि दुनिया की ताकत में हम जीना जाए और अपना हौसला बुलंद रखे।
1: बिल्कुल, और युवाओं को मतलब ये हौसला भी रखना चाहिए और हौसले को कभी छोड़ना नहीं चाहिए अपनी मातृभूमि के लिए। तो सर, आज कार्यक्रम में फरमाइश क्या रहेगी आपकी?
0: अभी भारतीय उन्नति में महिला वर्ग का भी बहुत सहभाग है, तो इस मुद्दे को देखते हुए फिल्म लड़की का गीत है, मैं हूँ भारत की नार, लड़ने मरने को तैयार, मुझे समझो ना।

0: हेलो।
1: जी कार्यक्रम हलो फरमाइश।
0: हाँ नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते सर, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, आपका परिचय दें।
0: गंगाधर सावनकर, नांदेड़ महाराष्ट्र।
1: जी सर, तो सर बताएं अपने आसपास के माहौल, अपने शहर के बारे में कुछ बातें बताएं।
0: हमारा जो शहर है कुंडलवाड़ी शहर,
1: जी
0: जिला
1: जी
0: नांदेड़ में, और यहाँ पर किसान लोग रहते हैं ज्यादा
1: जी
0: करके, खेती करते हैं।
1: मतलब वो पूरा जो इलाका है, जो आपका शहर है, वो पूरा खेती के ऊपर बेस्ड है।
0: हाँ
1: बहुत अच्छा सर कि आप सभी लोग मिलकर खेती कर रहे हैं, और खेती में करने वाले लोग प्रकृति के बहुत करीब भी होते हैं, समझते हैं
0: जी जी
1: उस
0: जी
1: चीज के कि कितना मूल्यवान है ये प्रकृति हमारे लिए।
0: जी जी
1: तो सर ये जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, जो गर्मी पड़ रही है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए?
0: पौधे लगाने चाहिए, पेड़ पेड़।
1: बिल्कुल,
0: हाँ
1: पौधे लगाने चाहिए, उसको सींचना चाहिए ताकि वो
0: बिल्कुल
1: एक
0: बिल्कुल
1: स्वस्थ पेड़ के रूप में बड़ा हो सके।
0: बिल्कुल।
1: तो सर और बताएं आपके परिवार में कौन कौन है?
0: परिवार बड़ा है मेरा, दो बेटे हैं, बुआ है, पोत्री है, घर
1: अच्छा, और सर
0: वाले हमारे।
1: रेडियो कब से सुनते हैं?
0: मैं 92 से,
1: 92 से।
0: हाँ बोल तो फोन इन कार्यक्रम में सहभाग हो रहा हूँ,
1: अच्छा,
0: और
1: और
0: बचपन से सुनता हूँ।
1: क्या बात है, यानी कि जुड़ाव ये अभी तक लगातार चला आ रहा
0: जी
1: है
0: जी जी
1: आपके काम
0: क्योंकि
1: के
0: वो
1: साथ भी।
0: जमाने में रेडियो सुनना बोल तो लाइसेंस होना पड़ता
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात कहा आपने। तो सर आज बताइए कि क्या कहना चाहेंगे जो बुजुर्गों के प्रति, जो हमारा जो नजरिया थोड़ा सा जो बदल रहा है, इसके बारे में क्या
0: जी
1: कहना
0: जी बिल्कुल
1: चाहेंगे?
0: बहुत बदल रहा है। ये जो नया पीढ़ी है,
1: जी
0: बुजुर्गों की बात सुनना इसलिए बहुत अच्छा रहेगा। आज के पीढ़ी में पूरे
1: जी
0: प्लास्टिक के ऊपर डिपेंड रहेगा है हर चीज, चाय पी रहे प्लास्टिक में, खाना खा रहे प्लास्टिक में,
1: जी
0: शरीर के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो रहा।
1: अब बिल्कुल, और इस चीज को रोकने के लिए जो हमारा युवा वर्ग है वो बहुत बड़ा कदम उठा सकता है, इसको रोकने के लिए प्रयास कर सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो सर आज फरमाइश क्या रहेगी कार्यक्रम में आपकी?
0: पारस मनी फिल्म का
1: जी
0: हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये गाना सुनने का कुछ
1: बिल्कुल सर,
0: दोस्तों नाम ले तो दी।
1: बिल्कुल सर बताएं।
0: आकाशवाणी ग्रुप के तुकाराम जाधव जी है, धीरज राबड़ी है, भगवान सिंह जी है, तनुश्री है, केसरी सिंह राजपूत जी है, सुनील झा है, और राजेंद्र गंगवार जी, उधर लाल टेलर जी, सभी
1: जी
0: को सुनना है दीदी। बहुत
1: तो बिल्कुल, आपके
0: बहुत
1: साथ
0: धन्यवाद
1: साथ
0: आपका।
1: आपके सभी दोस्तों के लिए ये गीत, धन्यवाद सर।

0: श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और कार्यक्रम में मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो हम सफर रानी राजश्री। और कार्यक्रम में आज का सफर बस यहीं तक। आकाशवाणी के माध्यम से कार्यक्रम में हमसे जुड़े रहिए, बातचीत का ये सिलसिला यूं ही बनाए रखिए।
1: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति थी रानी रासरी की और प्रस्तुतकर्ता थे सचिन कुमार वर्मा।

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 6 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में समाचार होंगे भोजपुरी में हमारे गोरखपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में अत्याधुनिक उपकरण से सुसज्जित इंटरसेप्टर गार्डियन के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में शामिल भेले। ए मौका पर मुख्यमंत्री पूर्व डीजीपी पद्मश्री प्रकाश सिंह के किताब संघर्ष का विमोचन कैले। मुख्यमंत्री कीर्ति चक्र से मरणोपरांत अलंकृत प्रदेश पुलिस का वीर सेनानी स्वर्गीय सुनील कुमार के धर्मपत्नी के सम्मानित कैले। ए दौरान वहां के राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार आ मुख्यमंत्री वीरता पुरस्कार से अलंकृत पुलिस कर्मियों के सम्मानित कैले। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री उम्मीद जतौनी की प्रदेश का पुलिस सरकार के अपराध अपराधियन के प्रति जीरो टॉलरेंस के नीति के प्रभावी ढंग से आगे बढ़ौले का काम करी।
1: मुझे प्रसन्नता है कि आज मुझे यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़े हुए एसटीएफ और अन्य विभिन्न विंग से जुड़े हुए सिविल पुलिस से जुड़े हुए भी 16 पुलिस अधिकारी और कार्मिकों को हम लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रपति के वीरता पुरस्कार से और 10 पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों को हम लोगों ने यहाँ पे मुख्यमंत्री के वीरता पदक से सम्मानित भी किया है। मैं इन सभी जवानों को भी हृदय से बधाई देता हूँ।
0: केंद्र सरकार यह महीना के 15 तारीख से चीनी व्यापारियन बदे भंडारण के अवधि के घटा के 15 दिन कह दिले हो। भंडारण का सीमो 1000 कुंतल तय कह दिल गई बा। उपभोक्ता मामलन का मंत्रालय कहले हो कि त्योहारन के मौसम में जमाखोरी रोकले आ उपभोक्ता लोगन के आसानी से चीनी का सप्लाई सुनिश्चित करे बदे सरकार चीनी भंडारण के नियम में बदलाव कैले हो। सर्वोच्च न्यायालय दीपावली से पहले पड़ाकन पर पुरहर रोक लगौले से मिना कह देले हो। आ एकरे खातिर कौनो संतुलित उपाय अपनौले का सुझाव देले बा। एगो रिपोर्ट।
2: शीर्ष न्यायालय ने कहा कि दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। न्यायाधीश M.M. सुंदरेश और P.B. वराले की खंडपीठ ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, जबकि दिन भर पटाखे जलाने की अनुमति देने से पर्यावरण और बुजुर्ग तथा बीमार लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में वायु प्रदूषण के दौरान पटाखों पर पाबंदी से जुड़े एक लंबित मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने यह बात कही। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 बरिस पूरा कर रहा हमें। उनकर जतरा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प आ लगतार जनसेवा के भावना से प्रेरित रही हो। यही सेवा सुशासन के सोच के साथ सरकार बरिस 2047 ले विकसित भारत के लक्ष्य के दिशा में कार कर रही हो। समावेशी विकास आज सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जिंदगी में बदलाव ले का कोशिश कर जा रहा बा। हमने के खास श्रृंखला में आज हमने के आप लोगों के जानकारी दे रहा हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह सोच के कौने तरियन धरातल पर उतर ले हवे।
3: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इसके तहत कौशल विकास, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत के हर युवा को शिक्षा का समान अवसर देना है।
4: राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्राथमिकता है भारत के हर युवा को शिक्षा के समान अवसर मिले। समान शिक्षा का मतलब है शिक्षा के साथ साथ संसाधनों तक समानता पहुंचनी चाहिए।
3: सीतापुर के ओम प्रकाश वर्मा ने बताया कि नई शिक्षा नीति व्यवहारिक, कौशल आधारित और तकनीकी शिक्षा पर जोर देने वाली है।
5: इस नई शिक्षा नीति से कौशल विकास के कार्यक्रमों में तकनीक का प्रयोग और व्यवहारिक शिक्षा पर जोर दिया गया।
3: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन केवल पाठ्यक्रम में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और अवसरों से सशक्त बनाना है। दीपक श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार, सीतापुर।
0: आज से प्रदेश व्यापी विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुरुआत हो गई। एकरे तहत करीब एक दर्जन सरकारी विभाग आपसी तालमेल के साथ महीना भर संचारी रोगन पर नियंत्रण के गतिविधियन का आयोजन करी है। गोरखपुर में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव अभियान का उद्घाटन कैले। यह मौका पर महापौर, मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी, नगर आयुक्त अजय जैन, एडी हेल्थ डॉक्टर बीएम राव और सीएमओ डॉक्टर राजेश झा के सतही सज्जो मौजूद अधिकारियन ना कर्मचारियन के संचारी रोगन पर नियंत्रण में योगदान दहले का शपथ दियौलें। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।

आइए अब हम जान लेते हैं अपने शेष कार्यक्रमों के बारे में कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से। गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत का समय होगा रात्रि 9:45 पर। पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर और रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

रात्रि 8:45 पे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। ये दोनों ही समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम सबरस का समय होगा शाम 7:31 पर। कार्यक्रम सुगम संगीत का समय होगा रात्रि 8 बजे और रात्रि 8:30 पर।

ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे ग्राम जगत शाम 6:10 पर। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ। FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 6:10 होने को हैं।

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब
1: सब पंचन
0: पंचन
1: के
0: के
1: राम
0: राम राम,
1: राम राम राम भैया।
0: राम राम नैना बहन।
1: और बताओ क्या हाल चाल बा।
0: हाल चाल तो सब ठीक ठाक हो। देखा आज एक विशेष दिवस भी हो, बुजुर्ग दिवस, और हर साल 1 अक्टूबर के मनावल जाला अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में। और संयुक्त राष्ट्र संघ 14 दिसंबर 1990 के एकर घोषणा के लिए रहल, और पहली बार 1 अक्टूबर 1991 के दिवस मनावल शुरू कल गई। और एकर उद्देश्य बुजुर्गन के प्रति सम्मान, देखभाल और उनके अधिकार के प्रति समाज के जागरूक करना है।
1: बिल्कुल
0: तो यही के वजह से जो बाकी ये मनावल जाला। और सबसे महत्वपूर्ण की जो भारत के बात अगर कही जाए तो निश्चित रूप से वृद्ध लोगों के आशीर्वाद लेवल के बहुत बात कहल जाला। एक श्लोक के माध्यम से भी जानल जाला कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोप सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जौन व्यक्ति नित प्रति बढ़ लोगन के अभिवादन करला
1: हाँ
0: और वृद्ध लोगन के सेवा करला, उनकर चार चीज के वृद्धि होखला, आयु, विद्या, यश और ताकत।
1: हाँ
0: और जेकरे पास ये चार चीज हो गेल तो समझ जा कि जीवन के सब कुछ मिल गेल
1: मिल
0: उनके। तो
1: गई।
0: हम लोग के कर्तव्य भी है कि वृद्ध जनान लोगन के जौन बाकी अनुभव से हम लोग के सीखे के चाहिए। काहे कि केवल उनकर जौन झुर्रीदार चेहरा हो जाला तो
1: हाँ
0: कि ये न समझल जाए कि जौन बाकी ऐसे ही व्यक्ति रहल, बल्कि कहें न कहें कि अनुभव के क्रम में कितना धूप झेलले हो, कितना काम किले हो, कितना जौन बाकी नसीहत ले ले हो, एके वजह से उनकर जौन बाकी ए तरीके के होला। और साथ साथ जौन बाकी उनके स्वास्थ्य और खान पान पर विशेष ध्यान देवे के
1: देवे
0: चाहिए
1: चाहिए।
0: और अकेलापन नहीं छोड़े के चाहिए।
1: बिल्कुल
0: अधिकाधिक देखिए आप कभी कभार कि जौन वृद्ध लोग अकेले रहत रहत होला का कि उनकर स्मरण शक्ति खत्म हो जाला,
1: हाँ सोचा
0: अपन
1: कैसे।
0: अपने बचवा लोगन के भी नहीं पहचान पावे लोग। यहाँ तक कि जो है कि एक तो घटित घटना सामने देखल के अपन बिटिया से ही पूछ रही थी उनके महतारी कि जौन बाकी तुर का नाम हो और जौन बाकी तुर ब्याह हो गिल हो।
1: अच्छा
0: तो मतलब कि ये
1: अकेलापन।
0: अकेलापन के चलते टेंशन के वजह से उनके जो है बाकी बहुत कुछ उनके बात सुने के चाहिए लोगन के,
1: बिल्कुल
0: खाली कुछ न कहें, वो जो बतावत हों तो जाना कि ओके सुनने और कहा कि और कैसे होला। तो इनके मतलब ये समझ में आला कि हम बहुत कुछ बतावत थी
1: हाँ तो
0: और
1: ये लोग
0: ओके सीख,
1: समझाते हैं
0: हाँ
1: सुना था।
0: समझा था, सुना सुना था, और हमें जो बाकी और कुछ बतावे कहे के चाहिए। तो ऐसे जो बाकी ऐसे में वृद्ध लोगन के बहुत ही प्रसन्नता होखला, कम से कम 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा तक
1: समय
0: उस
1: देवे के चाहिए
0: समय
1: उनके
0: देवे के
1: साथ।
0: चाहिए, बैठे के चाहिए, तब जाकर के उनकर स्वास्थ्य अच्छा हो सकला। जो भी बात कहें उनके ध्यान से सुनने के चाहिए।
1: बिल्कुल
0: एक तरीके निष्कर्ष ये भी कहल जा सकला कि बुजुर्ग लोग बोझ नहीं हों। बहुत लोग कहला कि जौन बाकी इनके रहले कि ना रहले का मतलब हो,
1: का फायदा बा।
0: आज जौन बाकी वृद्धाश्रम में लोग भेज देवत बा। एकरे वजह से बहुत नैना बहन देखल जा रहा है कि जौन अपन बचवा लोग अपने पिताजी अपने माताजी से अगर अपने बुजुर्ग के सेवा करत निखन देखत तो उहो वही प्रकार के काम करला।
1: तो देखा ए समय भी अपन कहीं भी देखा मोबाइल दिन भर देखा तो चाहे कहीं भी देखा तो अब जन बचवा लोगन हवा वो देखा संस्कार हवा का कहले। अगर हमनी लोगन बुजुर्गन के जब अनादर करीला खाना पानी न देव तो इहे कहलन के कभी आप लोगन भी
0: बिल्कुल बुढ़ाई
1: बुजुर्ग
0: बा।
1: होबे। तो देखा ई हमनी लोगन के सीखे के चाहिए कि

0: यार जो गया मनुज का सब कुछ ही लुट जाता है। प्रकृति में धन को माना गया है कि व्यक्ति यहाँ खाली हाथ आता है और यहीं कमाता है और यहीं जो है कि सब छोड़कर चला जाता है। तो इसलिए धन चले जाने पर व्यक्ति को बहुत शोक नहीं करनी चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य की जहाँ बात आती है तो उससे सभी लोग के जुड़ाव है, माता पिता, अपने सगे संबंधी, क्योंकि ये कहीं न कहीं से सभी लोग का योगदान होता है। तब शरीर इस धरती पर शरीर का आना होता है और फिर जो है कि वो सबके लिए उपकारी कह सकते हैं या एक दूसरे के संबंधित कह सकते हैं, ये होता है। सबसे उच्च श्रेणी के अगर गणना की जाए तो सदाचार की बात आती है और सदाचार से ही ये सृष्टि में सारे लोग का चलना फिरना, एक दूसरे से जुड़ना, एक दूसरे के साथ रहना, दूसरे को साथ देना, दूसरे से साथ लेना, इत्यादि बातें आती हैं। लेकिन अगर ये कहीं से चला जाए, फिर धरती पर जन्म लेने का और फिर जो है कि इस धरती के संचालन करने में कहीं न कहीं से उसको बहुत ही गलत समझा जाता है। चरित्र को जाना नहीं चाहिए। अगर जिस व्यक्ति का चरित्र चला गया, वह व्यक्ति का सब कुछ चला गया, ऐसा माना जाता है। आज हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है और इससे पहले का स्थिति क्या था, ये सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए आज सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुद्धी ब्लॉक के केवाल गांव से श्री अभिनाथ यादव जी से मुलाकात कर रहे हैं। आपका क्या मानना है युवा पीढ़ी का और जो बड़े बुजुर्गों की स्थिति थी उनसे प्रेरणा लेने का तो बातचीत होगी। अभिनाथ यादव जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे देखते हैं इस समय के जो चरित्र की बात या जो है कि धन की बात, धन के पीछे बहुत लोग भाग रहा है।
1: जी, सादर प्रणाम। आज का जो परिवेश है उस परिवेश से हम अपने आप को खुद कभी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि आज की जो पीढ़ी है किस तरह से धन के पीछे भाग रहे हैं और किस तरह से उस धन को जुटाने में अपने सभी जितनी शक्तियां हैं तन मन धन सभी लगा दे रहे हैं, इसके बावजूद भी आदमी संतुष्ट नहीं हो पा रहा है।
0: जी,
1: और विशेष रूप से हम युवा पीढ़ी को देख रहे हैं कि लोगों को ये लगता है कि हमको धन कमाने में चाहे जितना भी अच्छा, माने अच्छा तो करने के लिए कल्पना ही नहीं कर रहे हैं, उसमें कितना हम कैसे अपना विवेक को इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करके कैसे पैसे का इकट्ठा कर लें जिससे हमारे भविष्य में, माने हम इतना संजो लें वही हमारे साथ लगता है कि जाएगा।
0: अच्छा, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी छोड़ करके दूर दूर तक चल जाना, फिर कभी याद न करना, ये भी बात तो आई जा रही है।
1: वो तो आज के परिवेश में सबसे पहले हम महसूस जो करते हैं कि आज के जो बच्चे हैं, वो आज की जो युवा पीढ़ी है, वो अपने आप को जिस तरह के परिवेश है उसके अनुसार अगर कहीं बाहर चले जा रहे हैं तो जाने के बाद आज दूर संचार का एक भी एक माध्यम है, अपने मोबाइल में गाने सुन लेंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन अपने लोगों से कभी कल्पना नहीं करते कि हम बात करें, उनसे भी उनका हाल समाचार कर लें। उस हाल समाचार करने से उनके ऊपर क्या उसका प्रभाव
0: जी
1: रहेगा,
0: जी जी
1: ये
0: जी
1: तो
0: जी
1: बिल्कुल लोगों में विलुप्त होता जा रहा है।
0: जी अब आपस में बैठने उठने वाली तो
1: अब
0: बातें।
1: तो पहले हम लोग जब हमारे बाबा दादी हुआ करते थे तो हम लोग आग वगैरह के पास ठंडे के मौसम में बैठते थे, तो उस दौरान कहाँ कौन कैसे हैं, हमारे फलाने दूर के रिश्तेदार वो लगते हैं, वहाँ से वो आए थे, वो ऐसे है, ये सब चीज़ें चर्चाएं होती थी।
0: एक दूसरे का परिचय बता
1: लेकिन
0: रहा है।
1: आज
0: जी
1: जो है, जो परिवेश आया है उसमें अपने अपने काम से हर आदमी मतलब रख रहा है। कोई घर में वृद्ध लोग हैं उन, ना उनसे कोई हाल समाचार कर रहा है, ना उनके सुख दुख की जानकारी ले रहा है।
0: जी जी जी जी तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं अपने लोग से जुड़ाव खत्म हो रही है।
1: बिल्कुल
0: और जबकि एक दिन जब छोटा बच्चा होता है, कल्पना करने की बात है, जब बिल्कुल आप असहाय होते हैं,
1: जी,
0: उस समय जो है कि माता की स्थिति क्या होती है, पिता की स्थिति क्या होती है, कहीं से मतलब उसको गंदा में न रहना पड़े, कहीं बुखार तो नहीं है, तमाम कैसा कल्पना करते हैं बचपना की बात।
1: देखिए बचपना की जो बातें हैं, जो माता पिता का जो परिवेश है, जो हम लोगों के प्रति लगाव है, वो लगाव हम जो हम लोगों को मिला वो
0: जी
1: हम अपने बच्चों को ना दे पा रहे हैं, ना उन बच्चों से हम कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको जब दे ही नहीं रहे हैं तो उनको हम ट्रेनिंग तो दे कुछ उसके जहन में उतार ही नहीं पा रहे हैं उसके प्रति,
0: जी
1: तो हम
0: जी
1: क्या
0: जी
1: करें। और मोबाइल वगैरह में सब चीज़ आदमी रोज देख रहा है किस तरह की परिस्थितियां हैं, लेकिन अमल उसके लिए एक

0: देना नहीं कर पा रहे हैं
1: जी
0: थोड़ा भी।
1: जी जी
0: तो
1: जी जी
0: हम जो आज के परिवेश है, जो जिस तरह से युवाओं का, लोगों का जो उस तरह से वो है, उस हिसाब से हम चाहते हैं
1: जी
0: कि लोग कम से कम करें अपने ही मन से,
1: हाँ हाँ हाँ
0: लेकिन जो गार्जियन है उनसे थोड़ा राय ले लेंगे, वो भी
1: जी
0: जानते हैं करना इन्हीं को है,
1: जी
0: लेकिन जब उनसे थोड़ा राय ले लेंगे हम,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: उनको
1: हाँ हाँ
0: लगेगा कि हम भी उसमें
1: हम भी
0: समाहित हैं।
1: समाहित
0: जैसे
1: हैं
0: किसी
1: बिल्कुल।
0: कार्यक्रम को करना है,
1: हाँ
0: उनसे राय ले लें कि
1: जी
0: हम ऐसा करना चाह रहे हैं कैसा रहेगा। हाँ
1: हाँ
0: ठीक है ठीक है, अगर उनको लगेगा कुछ उसमें सलाह देने लायक तो देंगे,
1: जी जी
0: हैं, और नहीं भी देंगे तो उनको लगेगा कि हाँ हमको जानकारी है, और उनको लगेगा कि कार्यक्रम में हम भी सहभागी हैं।
1: पहले चाहे पशुओं की देख रेख की वजह से या जैसे भी, लेकिन भोर में जगने जगाने की बात थी। जैसे मान लीजिए अपना धान हुआ, सवा हुआ या अन्य भी कोई फसल, उसको दौने के लिए आदमी जो है कि 2 बजे 3 बजे उठ करके,
0: हाँ बिल्कुल,
1: हैं,
0: भोर में उठ जाते थे
1: भोर में
0: लोग,
1: जब मैंने एन के प्रकार है भोर
0: और
1: में
0: विशेष
1: उठने
0: रूप से
1: संबंधित
0: हम लोग तो भाई ऐसे बिरादरी से भी बिलोंग करते हैं कि चूंकि हम लोग तो बहुत उसका नहीं वो कर पाए, हम नहीं कर सकते इस बात को कि हमने ऐसा किया है, लेकिन हमारे दादाजी थे तो भैंस वगैरह भोर में ही, माने अगर हम लोग नहीं भी चराते तो निकालने के लिए उनको चाहे चराने के लिए बिल्कुल कहने लगते कि सुतेस काम चली तो उनके, हैं,
1: अच्छा, तो
0: जैसे
1: इससे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता था जो है कि वो पहले
0: उस
1: अब
0: समय। देखिए आज जो लोग जिस तरह से बीमारियां, डायबिटीज वगैरह कई तरह की, जो शुगर डायबिटीज कई बीमारियां आ गई,
1: जी जी
0: वो
1: जी
0: लोगों को जिस तरह से आलसीपन आया, जिस तरह शरीर का कोई माने उसके हिसाब से अपना नहीं उकर रहे हैं, पसीना नहीं बह पा रहा है,
1: जी
0: व्यायाम आज लोग करके प्राणायाम करके जो प्राप्त कर रहे हैं, उस समय
1: हाँ
0: उठ करके वही काम को करके वही व्यायाम
1: बिल्कुल
0: था और
1: बिल्कुल
0: उसी से
1: बिल्कुल।
0: शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता
1: और
0: था।
1: आज भी जो ऐसा कर पा रहा है
0: आज
1: वो
0: भी जो लोग
1: लोग
0: कर
1: हैं।
0: रहे हैं, आप देखिए उनकी उम्र, अभी हमारे पिताजी की उम्र 74 साल हो गया,
1: जी।
0: लेकिन अभी हम लोग सोए, माने सोए तो नहीं रहते, लेकिन फिर भी देखते हैं कि वो हम लोग बिना कुछ कहे
1: अपना
0: अपना
1: काम
0: माल
1: करते
0: मवेशी
1: रहे
0: वाला काम
1: बिल्कुल।
0: करने लगते हैं।
1: मतलब स्वास्थ्य वर्धन के लिए भी व्यक्ति अगर ब्रह्म मुहूर्त में जागरण की जो बात कही जाती है, जग
0: जी
1: जाए और कुछ भी काम करे, चाहे स्वाध्याय ही करे, अगर विद्यार्थी है तो
0: हाँ
1: स्वाध्याय करे,
0: स्वाध्याय करें।
1: पढ़े, और यदि अन्य कोई कार्य करने वाला है। अच्छा अविनाश जी, आप अधिवक्ता भी हैं, आप इस में जो है कि बहुत सीखने को भी मिलता है। अपने अंचल में जो सोनभद्र के इधर आसपास है, जिसे मान ली दुधी ब्लॉक में आप केवाल से हैं, इधर के लोग जितने शारीरिक क्षमता युक्त जो नौकरियां हैं उसमें कम जा पाते हैं, जैसे पुलिस हो गए, आर्मी हो गए इत्यादि, अन्य जगहों के लोग ही सब इसमें आते हैं, तो कहीं ना कहीं से शारीरिक विकास के लिए या स्फूर्ति के लिए कम काम कर पा रहे हैं लोग।
0: देखिए जिस तरह से नौकरी सर्विस की जो बातें हैं, जो मैदानी इलाके हैं उधर लोगों का एक रूटीन बना हुआ है कि
1: जी
0: जो अपने फैमिली में उनको जगाते हैं, उनके दादा हुए, उनके पिताजी हुए, कि तुम तैयारी करो। और हमारे यहाँ क्या है कि उसका इस तरह का प्रभाव लोगों में नहीं है,
1: जी
0: इसके
1: जी जी
0: वजह से आप देखे होंगे, ऐसा हम भी महसूस किए हैं, जिस घर में नौकरियाँ मिलती हैं बच्चों को,
1: जी
0: तो उनके कई बच्चों को नौकरी मिल
1: बिल्कुल
0: जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और ये मैदानी इलाकों में जो उधर गाजीपुर बलिया, जहां हम लोग देवरिया कहते हैं,
1: हाँ हाँ
0: उधर
1: हाँ
0: के लोगों को देखेंगे हर घर में फोर्स में नौकरी में,
1: जी
0: विशेष रूप से यादव बिरादरी के बच्चे और भी जाते हैं, हालांकि जाते सभी लोग हैं,
1: हाँ,
0: लेकिन इनकी
1: जो भी
0: संख्या,
1: मैंने परिश्रम किया
0: हाँ,
1: आशा है कि परिश्रम
0: लेकिन
1: से है
0: हमारे यहाँ क्या है कि
1: जी,
0: इसका लोगों में अभी तक नहीं
1: रुचि
0: हो
1: नहीं है
0: रुचि
1: लोगों के।
0: नहीं ले
1: तो
0: पा रहे हैं।
1: क्या लगता है कि ये कैसे समय गंवा पा रहे हैं, ये कहीं मोबाइल से जुआ में या अनावश्यक के बातें करने में, कैसा?
0: जो देखिए हर व्यक्ति के मोबाइल भी एक ऐसी चीज है, हम जिसको कल्पना करते हैं कि हर व्यक्ति का जब मोबाइल लेंगे, आप उनके खोलेंगे तो उनके चरित्र का पूरा ग्राफ उसमें दिखाई पड़ता
1: जी
0: है।
1: जी
0: अगर
1: जी
0: आप उनको खोले, इंस्टाग्राम खोले या उसके फेसबुक को खोले,
1: जी जी जी जी
0: हैं, या अन्य भी मीडिया हैं खोलेंगे, तो उससे पता चल जाता है कि आप किस विचार के व्यक्ति हैं। और
1: हाँ
0: वह इतना समझिए कि जब वो बनाया है तो इस तरह का बनाया है, तो
1: जी
0: हमको आपको महसूस करना चाहिए कि उसी तरह से हम भी कुछ ऐसा करें
1: जी
0: जिससे उसका झलक दिखाई पड़े।
1: श्रोताओं देखें, ये अधिवक्ता श्री अविनाश यादव जी से बातचीत चल रही थी। सदाचार, संस्कार और जो है कि नियमित व्यायाम और योगाभ्यास स्वास्थ्य किस प्रकार अच्छा बना रहे, इस सब में बड़ी बातें आई कि जो हम लोग अपने लोगों से दूरी जो बना पा रहे हैं, कहीं से एक एक तरफ एकल जीवन जीने की वजह से बहुत सारे चीज़ छूटे जा रहे हैं, और जहाँ अभिवादन की बात है और परोपकार की बात है, तो कहावत भी एक है श्लोक है कि अभिवाद

0: शीलस्य नित्यं विरुद्धोप सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। यदि नित प्रति हम बड़े लोगों से मिलें, अभिवादन करें और जो है कि वृद्ध लोगों के नित प्रति सेवा करें, ऐसे लोगों का चार चीज़ की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और ताकत। निश्चित रूप से इतना अच्छा सुझाव देने के लिए अधिवक्ता श्री अभिनाथ यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: देश के अपने स्वदेशी नेटवर्क BSNL की 26वीं वर्षगांठ पर आपके लिए है विशेष ऑफर। सिर्फ ₹1 में BSNL सिम पाइए, अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 1 GB डेटा, 100 SMS और 24 दिनों की वैधता। ऑफर सिर्फ 12 अक्टूबर तक, तो देर किस बात की। आज ही अपने नजदीकी BSNL CSC पर जाएं और इस खास ऑफर का लाभ उठाएं। आपका BSNL, हमारा BSNL।
2: देखो भैया, अभी संदेश सुन लीजिए। संदेश के पहले कितना बढ़िया जानकारी मिलल है कि बुजुर्ग हमारे शान, इनका करे सम्मान। अभिनाथ यादव जो अधिवक्ता रहना है, उनसे देखा आपका बातचीत रहल है, तो जानकारी मिलल ते करीब नहीं, मतलब कि जानकारी अभी सुन ले लिए, किनारे रख दे ली। ओके, अमल करे की भी जरूरत बा। और देखा जब बड़ बुजुर्ग हो जाले तो कहल भी जाला कि उन लोगन का ध्यान रखब हमनी लोगन के ही कर्तव्य है। तो देखो, ये तो जानकारी हो गया, लेकिन एक साथ ही साथ देखा हमनी लोगन किसान भी है जा, तबनी खेती बाड़ी की तरफ भी चल जाए।
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो देखा जब खेती बाड़ी का बात कहल जाता तो जैसे कि संतुलित उर्वरक प्रबंधन का बात कहल जाए, तो देखा कहल जाला कि जब अपन खेत में जब से कोई चीजें की जांच ले, परख ले, तब जब ओके जब खेती करे तो देखा कम लागत में अच्छा उत्पादन मिल जाला।
3: जन बात संतुलित उर्वरक प्रबंधन की बात करनी तो पौधन के मतलब का चीज की आवश्यकता है, मिट्टी की उर्वरता और जलवायु के अनुसार कौन चीज की कमी हो, आवश्यक पोषक तत्व के सही मात्रा में, सही अनुपात में और सही समय पर का कुछ उपयोग करें कि अच्छा फसल उत्पादन हो सके, एक जन बाकी हम लोग पालन करें। और एक साथ साथ जन बाकी मृदा परीक्षण की जहाँ बात कर जाला, खाद डाले से पहले मिट्टी की जांच की जकराए बहुत जरूरी है, ताकि जोन बाकी हमें कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता है, कौन पर जोन बाकी हम लोग डाली, तो ये जो है कि ये पर हम लोग की विशेष ध्यान दे के हुई। और साथ साथ जोन बाकी एकीकृत पोषक प्रबंधन की बात अगर कहल जाए तो जो केवल रासायनिक हम लोग खाद और दवा के प्रयोग करीला, ये पर ही खाली निर्भर रहे की जरूरत नहीं है, बल्कि एक जगह पे जैविक खाद जैसे गोबर के वर्मी कंपोस्ट बन गए, नाडेप कंपोस्ट बन गए, ये पर जोन बाकी हम लोग अगर ज्यादा ध्यान दें तो जब खेत में जीवांश की मात्रा बनल रही तो हमें थोड़ा हरियाली लावे खातिर अगर रासायनिक दवा के प्रयोग करें, रासायनिक कीटनाशक के प्रयोग करें, एक तरह से ये जोन बाकी फायदेमंद है। लेकिन जैसे केहू व्यक्ति के शरीर में खून नहीं है, खाली गोलियां खियावल जाए ओके,
2: तो
3: काम नहीं करी, जीवित भी नहीं रह पाई, अगर जीवित के तरीके रहबो करी तो शरीर में ताकत नहीं लगी। ठीक वही प्रकार से जमीन के अंदर है, अगर हमें जीवांश की मात्रा नहीं है, जैविक खाद हमें अगर नहीं है, तो केवल रासायनिक खाद से होकर जोन बाकी केहू प्रकार के जीवांश की मात्रा बढ़े की संभावना नहीं
2: है।
3: तो ऐसे जोन बाकी हम लोग के जैविक खाद पर विशेष ध्यान देने के चाहिए। और बात कही अभी और हुई, तब तक जोन बाकी हम लोग के मन मनसायन भी कुछ हो जाए।
2: तो देखा मन मनसायन तो होत रही, लेकिन जब हमने लोगन संतुलित उर्वरक का बात कही ली है जा, तो हम तक आपके पहले जानकारी सुन लेवल जाए कि धान की फसल में कीट रोग प्रबंधन का है। ये पे संतोष कुमार कुशवाहा जो सहायक विकास अधिकारी कृषि राजगढ़ से है, इनसे अपन देखा अख्तर अली भैया का बातचीत कर ले, चलो सुनल जाए और जानल जाए।
3: बहुत मौके की बात आप कर ले, बिल्कुल सुनावा।
4: किसान भाई देखे, अपने इलाके में धान की खेती बहुतायत से भेल हम, हालांकि देखें शुरुआती दौर में कुछ परेशानी आयल, जो मानसून के बारिश रहल अपने नियत समय पर नहीं भेल, एक वजह से धान की खेती आगे पीछे भेल। लेकिन फिर भी जब खेती आगे बढ़ल और जब ई अवस्था पे आ गया कि अगर उकर देखभाल निगरानी नहीं कैल गई तो नुकसान हो सकेला, चाहे कीट के बात हो चाहे रोग के बात हो, उकर देखभाल निगरानी ये समय बहुत ही जरूरी बा। तो यही विषय पर आज हम लोग बातचीत कर जाए, और बातचीत करे खातिर आज अपने साथ हुआ सहायक विकास अधिकारी कृषि राजगढ़ संतोष कुमार कुशवाहा जी। संतोष जी, सबसे पहले तो अपने किसानवाणी कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत बा। का कहे चाहिए जो वर्तमान में अपन धान के फसल बा, ओके कैसे जोन बा की अच्छे ढंग से उतारल जाए, आगे बढ़ावल जाए, बचा करके ले जाया जाए, जैसे कि अच्छा उत्पादन मिल सके।
5: धन्यवाद सर। सभी किसान भाइयों एवं बहनों को नमस्कार।
4: जैसा कि फसल शुरुआत में थोड़ी सी मौसम के चलते बहुत अच्छा नहीं चल पाया था, लेकिन अब मौसम इतना अच्छा साथ दे दिया कि हम लोग जो है धान की अच्छी लहलहाती हुई फसल दिख रही है। अब हम लास्ट स्टेज में हैं जो कि बाली निकलने की अवस्था में, तो इस अवस्था में हमको ये देखना चाहिए कि लास्ट तक की जो हम अपने खेत में रख नहीं लेते हैं तब तक की उसकी कीट रोग प्रबंधन ही मैक्सिमम आएंगे, तो उसके लिए हम लोगों को देखना चाहिए कि किस तरह की क्या क्या समस्याएं हैं। हम लोग को साप्ताहिक या दो दिन चार दिन में खेत में अवश्य जा करके देखें। खेत में जाने से ही नहीं है, खेत में आप प्रयास ये करें कि 10 कदम 2 कदम 5 कदम आप अंदर तक जाएं और उसमें नीचे जो पौधे हैं, पौधे की जो कलियां हैं, कलियां को थोड़ा साइड से हाथ से हटाते हुए दबाते हुए आप देखें कि उसमें किस किस तरह की बीमारी तो नहीं है या फिर कोई रोग तो नहीं है। ये सब सारी चीजें आप जब तक निगरानी नहीं करेंगे तब तक आप अच्छी फसल को उगा नहीं पाएंगे। इसके लिए आप सभी लोग यह देख लें कि जो कीट रोग होता है, अब इस समय तो दीमक और जड़ की सुंडी नहीं आएगी, लेकिन दीमक और जड़ की सुंडी अगर कहीं दिखे तो ये आपके लिए क्लोरपाइरीफास आप कर सकते हैं। दीमक जो है आपकी पूरे जड़ से जड़ को नुकसान करती है और पौधे को नष्ट करती है, और तना की सुड़ी होती है, जड़ की जो सुड़ी होती है वह जो है वो भी देखेंगे जब पौधा उखाड़ते हैं तो पूरा चावल की तरह दिखती है, मतलब वो दीमक टाइप में ही होती है, तो वो चावल उबले हुए चावल की तरह दिखती है, तो वो जो है वो उसको भी जड़ को नष्ट करती है जिससे पौधा पीला हो जाता है। उसके लिए आप क्लोरपाइरीफास 20% ईसी को 2.5 लीटर से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से आप स्प्रे करेंगे तब भी आप निगरानी में होंगे। तीसरा चीज आता है पत्ता लपेट। इस समय सभी के खेतों में बाली निकलने से 10 दिन 15 दिन पहले सभी के खेतों में पत्ता लपेटक की सभी के खेतों में देखा जाएगा, कहीं हल्का होगा कहीं ज्यादा होगा, जहां एक आंख दो दिखे पूरे प्लाट में तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको दवा डालने की आवश्यकता नहीं है। जहां ज्यादा दिखे वहां आप बाइफेंथ्रीन एक दवा आती है उसको आप स्प्रे 500 से 700 ml 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना करके आप स्प्रे करेंगे तब भी निगरानी हो जाएगी इसकी। और उसके साथ अगर आपको करना है तो क्यूनाल फास भी कर सकते हैं, क्लोरपाइरीफास का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हरा फुदका, भूरा फुदका और सफेद पीठ का फुदका होता है, जो आप जड़ के पास जाएंगे तो दबा करके आप देखेंगे तो उसमें जो रस चूसक कीट, जैसे सभी लोग जो पौधे हैं सभी पौधे पे जो है रस चूसने वाले होते हैं, काटने वाले होते हैं, कुतरने वाले होते हैं, तो ये चूस करके आपकी पौधे को क्षति पहुंचाते हैं, तो उसमें भी पौधा पीला पड़ता है और पीला पड़ने पे आपको निगरानी करनी पड़ती है। उसके लिए भी आप क्लोरपाइरीफास 20% ईसी को 1.5 से 2 लीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप घोल बना करके स्प्रे करेंगे तब भी राहत होगी, और बाइफेंथ्रीन को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से कुछ रोग भी आते हैं धान की फसलों में, रोग मुख्य रूप से भी आते हैं, जो खैरा रोग होता है ये आपकी फसल नर्सरी बुआई से लेकर के आपकी 10 दिन 15 दिन आप ट्रांसप्लांट करने तक ज्यादा दिखता है। इसके लिए आप जिंक सल्फेट का यूज कर सकते हैं, इस समय आपकी खैरा रोग की समस्या नहीं दिखेगी, लेकिन जीवाणु झुलसा और जीवाणु धारित झुलसा जो होता है वह जो आपकी पत्तियां होती हैं, पत्तियों पे बीच में जो नसें होती हैं उसमें कथई कलर की लंबी लंबी धारियां बनती हैं, उसके लिए भी आप जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन होता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपकी निगरानी हो सकता है। एक सीथ ब्लाइट होता है जो रोग में आता है, सीथ ब्लाइट भी जैसे आप नीचे का जो जड़ के पास होता है इसमें लोग देखते हैं कि यूरिया का इस्तेमाल ज्यादा कर देते हैं, तो जब यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो नीचे से हीट पैदा होगा और नीचे का जो जड़ से पानी से ऊपर का जो लेयर या पानी के सतह का जो लेयर पे जो तना है पौधे का वो जो है गलता है, वो सीथ ब्लाइट टाइप में होता है। उसके लिए आपको हम सभी को कार्बेंडाजिम 50% WP को 500 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से प्रति हेक्टेयर छिड़काव कर सकते हैं। इसमें हेक्साकोनाजोल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, प्रोपीकोनाजोल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक

0: थायोफिनेट मिथाइल बहुत ज़्यादा या बहुत समस्याग्रस्त होती है, तो थायोफिनेट मिथाइल 70% WP का 1 से 1.25 kg प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी में आप घोल बना करके अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसका बेहतर लाभ मिलेगा। इसी तरह से झोंका रोग होता है, जैसे हर जगह अभी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पूरी प्लाट के प्लाट या एक दो बीसा में पूरी पत्तियां पीला पड़ जाती हैं या कथई कलर का पड़ जाती हैं, तो उसमें भी हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि इसमें फफूंदी नाशक का प्रयोग करके हम सभी को अपनी फसल को बचाव करना चाहिए। जैसे कार्बेंडाजिम 50% को WP को 500 ग्राम प्रति लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कर सकते हैं, हेक्साकोनाजोल का प्रयोग कर सकते हैं, मैंकोजेब का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से आप एक अभी बाली जेब ही निकलने की अवस्था हो रहा है, तो बाली निकलने के कुछ दिन बाद उसमें देखेंगे कि उसमें पीला पीला सा पाउडर टाइप में बन जाता है, उसके दाने के ऊपर दिखता है, तो वो जो है कंडुआ की बीमारी होती है। इसको कंडुआ रोग कहते हैं या मिथ्या कहते हैं या कहीं कहीं उसको हल्दी रोग के भी नाम से जानते हैं। उसके लिए आप कार्बेंडाजिम या कापर ऑक्सीक्लोराइड को, अगर हल्का है तो कापर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं, जो 50% WP को 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे तब भी आपको लाभ होगा। अगर थोड़ा ज्यादा अगर है तो ज्यादा की स्थिति में आप कापर हाइड्रोक्साइड को 77 WP को 2 kg प्रति हेक्टेयर के दर से आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतर लाभ होगा। इसकी निदान के लिए जहाँ पे जिस फसल में अगर ज्यादा होता है तो उस वहाँ पे बुआई के समय ही दूसरी फसल को बोना चाहिए, जिससे कि इसका निदान आसानी से होता है।
1: किसान भाई, देखें कई तरह के कीट और रोग के बारे में चर्चा भइल कि अगर ई कीट और रोग अपने धान के फसल में दिखाई दे रहल बा तो आप ओके निदान कर सकेलन। संतोष जी, इधर भी जो बारिश भइल तो धान के फसल पर एकर का असर पड़ी?
0: ये मतलब एक तरह से बहुत अच्छा है, इसमें पौधे के ऊपर जो है बहुत एक तरह से खाद की तरह एक काम करी। और आपके जो एक बतावे के भूल गई रही, इसमें गंधी बग जो ही आपके फसल बाली निकलने के तुरंत बाद गंधी बग के प्रकोप ज्यादा होला, तो वह में मैलाथियान का डस्ट जोन बा 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर या नीम आयल के भी प्रयोग कर सकलन, तो ऐसे आपके काफी लाभ रही और आपके फसल के पैदावार अच्छा हुई।
1: तो किसान भाई, देखें कीट और रोग के बारे में तो चर्चा भइल और उम्मीद बा कि आपके जरूर से जरूर आज के बातचीत से लाभ पहुंची। संतोष जी, चलत चलाओ और अपने किसान भाई लोगों की का सहेजे चाहिए?
0: इसमें धान के फसल में अब कीट रोग के बाद अब फसल की कटाई जब होए लगी तो उसमें आप ये सुनिश्चित करिए कि जहाँ भी फसल काटे के बाद रखे के है वहाँ ऊंचास मतलब ऊंचाई वाले जमीन पे रखें, और या हार्वेस्टिंग करत हैं तो हार्वेस्टिंग में यह जरूर आप शामिल करें कि आप हार्वेस्टर अगर चलावत हैं तो ओके पराली के ना जलावें। अगर आप पराली जलावत हैं तो जुर्माना भी बा, ओकर तमाम तरह की गतिविधियां भी बा, एकरे बाद ओमें आपके नुकसान ही बा, फायदा नहीं बा, एकरे चलते आप पराली जलाइए मत अगर हार्वेस्टर से चलावत हैं तो। और अगर एक जगह मड़ाई बदे थ्रेसर करे बदे रखत हैं तो ओमें आप ऊंचास जगह पे रखिए, तिरपाल के व्यवस्था कर लिए जिससे कि पानी अगर असामायिक अगर होता हल्का फुल्का, जिससे कि फसल पे दाना पे आपके नुकसान न करे, जिससे अगर दाना पे अगर पानी पड़ जाए तो वो ये समझ जाए कि काला पड़ जाए, जिससे कि आपके दाना के या उसके अनाज के बिक्री में कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव पड़े, जिससे कि आपके बेचे में या फिर आपके आमदनी में कहीं ना कहीं घाटे के सौदा रहे।
1: बिल्कुल, और इतना दिन से जब आप देख रेख निगरानी करके लिए लें और अंतिम समय में, और सही भी आप कहलें कि मौसम के कुछ कहल नहीं जा सकला, लेकिन इकरे खातिर तो हम लोगों के तैयार रहे ही के चाहिए, कहें कि कब मौसम में अचानक परिवर्तन हो जाए तो जो आप सहज लें बिल्कुल सामयिक बा, और एक हिसाब से अपने किसान भाई धान के फसल के देखभाल निगरानी करत रही है तो कि अच्छा लाभ मिली। और किसान भाई, देखें आज अपने साथ रहला सहायक विकास अधिकारी कृषि राजगढ़ संतोष कुमार कुशवाहा जी, और धान के फसल कि कैसे हम लोग इस समय कीट और रोग से बचावल जाए, यही विषय पर चर्चा भेल। उम्मीद बा

0: आज की बातचीत से आपकी जरूर से जरूर लाभ पहुंची। और संतोष जी, आज आप अपने किसानवाणी कार्यक्रम के माध्यम से इतना बढ़िया जानकारी दे लें, एक ही खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
2: नैना बहन।
3: हाँ।
2: बहुत सामयिक जनबा की बातचीत करोनी आप कि धान के फसल में कीट रोग प्रबंधन हम क्या तरीके करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो कि इस समय तापमान में भी परिवर्तन हो, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है, अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस है, और जहाँ खेत में धान की बात की जाए तो नमी तो अभी हो बरकरार, लेकिन ध्यान दिले की जरूरत हो कब जरूरत पड़ जाए, जो टड़कतिया हो हमें जो धान बोइल हो, लेकिन सीधे खाली देखा माड़ भात से काम नहीं चली।
3: बिल्कुल,
2: साग सब्जी अगर ना रहे तो फिर जन बाकी हमें स्वाद अच्छा नहीं होए और हर तरह के पोषक तत्व संभव नहीं हो पावे। तो अगर साग सब्जी के व्यवस्था आपके यहाँ हो तो बताएं कुछ जन बाकी।
3: तो देखे साग सब्जी को बात कह ली है तो देखा यहाँ पर रावसगंज मंडी से बाबूलाल मोर भैया भेज ले हम कुंतल में कह तो बाँच दे।
2: बिल्कुल बाँचे, खरीदते चल जी घरे।
3: हाँ, देखे हैं आलू लाल 1100 से 1200 रुपए कुंतल, आलू सफेद 900 से 1000 रुपए कुंतल, प्याज 4000 से 4500 रुपए कुंतल, टमाटर 2500 से 2700 रुपए कुंतल, नेनुआ 1500 से 2000 रुपए कुंतल, कोहड़ा 1500 से 1600 रुपए कुंतल, कुनरू 2000 से 2200 रुपए कुंतल, लंबा बैगन 2200 से 2500 रुपए कुंतल, गोल बैगन 3500 से 4000 रुपए कुंतल, परवल 7000 से 8000 रुपए कुंतल, लौकी 2200 से 2500 रुपए कुंतल, करेला 15000 से 22000 रुपये कुंतल, भिंडी 1800 से 2000 रुपये कुंतल, बोड़ा 2500 से 3000 रुपये कुंतल, मूली 4000 से 4500 रुपये कुंतल, लहसुन 10000 से 12000 रुपये कुंतल, धनिया 10000 से 12000 रुपये कुंतल, हरी मिर्च 4500 से 5000 रुपये कुंतल, अदरक 6000 से 7000 रुपये कुंतल, सूरन 4000 से 4200 रुपये कुंतल, पालक 4000 से 5000 रुपये कुंतल, खीरा 2200 से 2500 रुपए कुंतल, फूल गोभी जोन है 2200 से 2500 रुपए प्रति सैकड़ा, और पत्ता गोभी जोन है 2000 से 2200 रुपए प्रति सैकड़ा, नींबू जोन है 500 से 600 रुपए प्रति सैकड़ा रहा।
2: तो नैना बहन, जौने रफ्तार से आप जौन बाकी बाजार भाव बताइए।
3: हाँ हाँ।
2: उतने जौन बाकी जल्दी में अब जौन अभिनाथ यादव जी, संतोष कुमार कुशवाहा जी, मुन्ना भैया और साथ साथ बाबूलाल मौर्य भैया भी,
3: हाँ।
2: कब से बात बत कहे के माध्यम से हम लोग के शिक्षा दे रहे हों, अब उन सबके धन्यवाद के रूप में जोन बाकी एक मन मनसायन करावल जाए।
3: चलें डॉक्टर मनु यादव संघाती के गावल एक स्वच्छता गीत बात सुन लेवल जाए।
2: सुनाई

0: हाँ भैया,
1: कितना बढ़िया मनमसान होत बहन जौन बाकी डॉक्टर मनु यादव उनकर संग त्या भैया के। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण की साफ सफाई पर विशेष ध्यान तो हो ही चाहिए, और साथ साथ जौन बाकी छुआछूत के भावना जो रहला लोगन के उसे भी दूर रखें, ताकि जौन बाकी हर मानव एक जैसा रह सके। और बात बतकहित हम लोग के होत रही, अगला जानकारी के साथ फिर मुलाकात हुई ही।
0: हाँ।
1: लेकिन आज घड़ी के सुइशारा करत हो कि हम लोग के बैठकी यही समेटे के चाहे,
0: चलो चलो
1: तो का इशारा हब
0: चलो चलो जाए
1: तो सब पंचन के राम राम,
0: राम।

0: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 6:50 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी हमारे लखनऊ केंद्र से।
1: आयोजित है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: पंचो जय हिंद।
1: रेणु बहनी,
0: हाँ विनय भैया,
1: देखो हम पंच खेती किसानी करी थे और उके हर चरण में बहुत मेहनत करी थे और जो फसल अवशेष होते उका हम लोग बोझ समझे थे।
0: बिल्कुल भैया, और जब यही कहीं बोझ समझ ली थे और का सही से करित नहीं है तो हमका उके दुष्परिणाम झेले पड़ जाते हैं।
1: और हमका तो जो कुछ उसका दुष्परिणाम मिले थे तो मिलते हैं।

0: इसके साथ साथ तमाम और लोग भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि आजकल जैसे अभी खरीफ की फसलें समापन की तरफ हैं तो बहुत सारी फसलें उठ रही हैं, और खास करके जो धान की फसल है तो कई बार लोग धान का उत्पादन लेने के बाद में है और का जो पराली होते हैं पुआल होते हैं उनका समस्या के रूप में लेते हैं।
1: बिल्कुल भैया, लेकिन समस्या के रूप में ना लेके चाहिए। और कक देखो, बहुत जने तो जलाए देते हैं, ये तो एकदम ना करे चाहिए। कहे कि यहाँ जो है इससे सबसे बड़ी बात प्रदूषण बहुत होते हैं, अपने पर्यावरण का जो है खराब करते हैं, और जब प्रदूषण हुई तो देखो अपन सेहत भी खराब हुई। तो ई वजह से सबसे बड़ी बात की जलाए ना उके सही तरीके से प्रबंधन करें और कम्पोस्ट वगैरह बनाए के उके बढ़िया अपनी खेतन में यहाँ जो है उके इस्तेमाल करे, तो खाद के रूप में यहाँ बहुत बढ़िया काम ही करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहे बहनी कि कई बार होता है कि जो पराली जलाना है भाई वो कानूनन रूप से भी जो है अपराध माना गया है और अपन पर्यावरण का भी बहुत नुकसान पहुंचा हुआ था, अपने स्वास्थ्य के यहाँ भी विपरीत प्रभाव डालते हैं, इसके साथ साथ जो अपन मिट्टी में यहाँ मित्र जीवाणु होते हैं उन्होंने कहा नुकसान पहुंचा हुआ था। एक एक उपयोग हो सकता है कि जैसे मल्ची के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते, कोई फसल लगाया है तो उसके लाइन के बीच में अगर उसका बिछाए दो तो काफी कुछ फायदा होता है, नमी भी बचत है और इसके साथ साथ जो घास फूस होते हैं उसका जमाव नए होते हैं और धीरे धीरे जो होते हैं वो फसल में यहाँ सड़के खाद के रूप ले लेते
1: भैया
0: हैं।
1: आजकल इका मशरूम के उत्पादन के लिए भी इस्तेमाल करा जाते हैं।
0: बिल्कुल, जब धान के पुआलों की कुट्टी बनाए गए हैं बहुत पंचभाई मशरूम का भी उत्पादन कर रहे हैं, तो कहे का मतलब है कि जहाँ चाह हुआ रहा, अगर आप सोच लिया हो कि करना है तो रास्ते निकलत हैं। तो भाई इका हम सब अपने पंचभाई से निवेदन करवाए कि जो फसल अवशेष प्रबंधन है इस पर विशेष रूप से ध्यान दें, इका लापरवाही में ना लें। और देखो एक बात और कि हम पंच चाहे जो कुछ करें लेकिन उसकी जानकारी अपने पास पुख्ता हो चाहिए।
1: भैया बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी हमेशा जब आप आसपास से जुड़ाव रखो तो तब वह होता है, या फिर खबरें होती हैं उनका सुनत रहो तब होता है।
0: तो भैया आज की खबरें सुना जाए।
2: केंद्र सरकार ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि विपणन सीजन 2027-28 के लिए गेहूं का MSP 25 रुपए बढ़ाकर 2,610 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं दलहन और तिलहन पर सरकार ने ज्यादा जोर दिया है। मसूर के MSP में 390 रुपए, रेपसीड सरसों में 413 रुपए, कुसुम में 675 रुपए, चने में 83 रुपए और जौ में 136 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। सरकार का साफ संकेत है कि किसानों को सिर्फ धान और गेहूं पर निर्भर रहने के बजाय दलहन और तिलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
0: रेनू बहनी,
1: हाँ विनय भैया,
0: तो देखो ये बहुत अच्छी जानकारी मिली आज की खबरें के माध्यम से ने। और एक बात और है कि जैसे हम पंच खेती में तमाम फसलों की खेती करी थी लेकिन कुछ फसलें होती हैं वे बड़ी आम होती हैं और लगभग सबकी जरूरत की होती है, वह मैं अपन सब्जी फसल में आलू आवत है।
1: बिल्कुल भैया, आलू तो देखो अपने सब्जियन के राजा कहा जाता है और सब सब्जियन के साथी कहा जाता है,
0: सबका मित्र है। चाहे आप परवल के साथ बना लो, चाहे आप गोभी के साथ बना लो, मटर के साथ बना लो, टमाटर के साथ बना लो, सबका साथ देते हैं।
1: बिल्कुल भैया सबका साथ देते हैं और हमारे सबका तो साथ बहुत देते हैं। जब लड़का खाना नहीं खाते हैं तो ये आलू ऐसी सब्जी है जिसका सब कोई खा लेते हैं।
0: और आलू से सब्जी के अलावा और भी चीजें तैयार हो जाती हैं, उनका जो है आजकल तो प्रसंस्करण करके भी तमाम चीजें बनाई जा रही हैं। तो कहे का मतलब है कि आलू की खेती एक लाभकारी काम हो सकता है किसान के लिए, लेकिन सही बात यह है कि जब तक उन्नत और वैज्ञानिक जानकारी न होते तब तक कोई भी खेती उतनी लाभप्रद न होते।
1: तो भैया सुन ली जाए आज की बात।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ परिसर, जहां प्रधान वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉक्टर आर के सिंह साहब टेलीफोन लाइन पर हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार।
4: नमस्ते
3: डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो आलू उत्पादन करना चाहते हैं इस बार किसान भाई बहन, तो उनके लिए क्या सलाह है आपकी?
4: किसान भाइयों, आलू एक बहुविकल्पी फसल है। आप इसको फसल सघनता के तौर पर राइस और व्हीट सिस्टम में लगाते हैं और कम अवधि में अच्छा उत्पादन, अच्छी उत्पादकता होने के कारण किसान इसे कैश क्रॉप के रूप में भी लेते हैं। समय ऐसा आया कि अब प्रसंस्करण युक्त प्रजातियों का विकास हुआ तो प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी हम इसकी बात करते हैं। कुछ किसान भाई हमारे बीज उत्पादन में भी आलू को एज ए व्यवसाय उपयोग कर रहे हैं। कुछ किसान भाई जो अगेती फसल लगाते हैं उसमें अर्ली बल्किंग और साथ में अगर हम बात करें तो जो हीट टॉलरेंट वैरायटी है जैसे कुफरी सूर्या, उस किस्म को भी लगाते हैं क्योंकि उसमें जो ट्यूबराइजेशन थोड़ा सा ज्यादा तापमान पर हो जाता है और जब तापमान गिरता है तो उसकी ग्रोथ चेक होती है। तो इन तमाम विकल्प हैं किसान को कि जिस भी किस्म को और जिस भी विकल्प के रूप में लगाना चाहें। और एक मैं और कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश लगभग अगर मैं बात करूं तो 7 लाख

0: हेक्टेयर के ऊपर ही यहाँ पर आलू की खेती किसान करते हैं, और 2.25-26 टन अगर उत्पादकता है उसको अगर हम देखते हैं तो 18 से 19-20 मिलियन टन के करीब आलू भी होता है, जो कि पूरे भारतवर्ष का करीब 35-36% के करीब है। तो किसान भाइयों, आपको इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा उत्तर या पश्चिम उत्तर प्रदेश है वहाँ पर बीज उत्पादन के लिए वो क्षेत्र काफी मुफीद। सेंट्रल यूपी हमारा बनता है कि हम आगरा से अगर कानपुर तक जाएं तो वहाँ टेबल पोटेटो पर हमारे किसान भाई करते हैं, और हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में संभावनाएं बहुत अधिक हैं प्रसंस्करण युक्त किस्मों का। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं स्टेब्लिश है जिसके साथ की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके किसान अपने उत्पाद को और अपने जो रॉ मटेरियल है उसको उस इंडस्ट्री को दे करके अच्छा लाभ प्राप्त करें।
1: डॉक्टर साहब, इस साल बारिश अधिक हुई है लगातार, तो उसके चलते बुआई का सबसे उपयुक्त समय क्या रहेगा?
0: किसान भाइयों, बुआई के लिए यदि अगेती फसल की हम बात करें तो अगेती फसल का समय लगभग निकल चुका है, या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अगर कोई लगा सकते हैं तो लगा लें। और अगेती फसल का भविष्य भी, जब से हमारे लोग शुगर फ्री आलू के तौर पर CIPC ट्रीटमेंट के आलू खाने लगे, तब से नया आलू का प्रचलन हमारे जो बाजार में भी है वो उस समय आ रहा है जब दिसंबर के जनवरी के माह में, वह भी एक कारण है आलू में ग्लट आने का। क्योंकि शुरू में 8 से 10% जो अगेती फसल होती थी उसकी जो उत्पाद है उसका उत्पादन है वो अक्टूबर के आसपास आना शुरू हो जाता था। जैसे जो पहाड़ों की और प्लेटू रीजन की खरीफ फसल थी उसका सितंबर अक्टूबर में आता था, और जो हम सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लगाते थे वो दिसंबर माह से 65-70 दिन पर हमें मिलने लगता था। जैसे कन्नौज में लोग करते थे, अगर हम बात करते हैं हिमाचल की तो वहाँ ऊना है, पंजाब में होशियारपुर है, और जो छोटे मझोले सीमांत कृषक हैं वो भी एक अतिरिक्त फसल लेने के लिए इसको लगा लेते थे। तो अब जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम बात करें तो अब मुख्य फसल लगाने का समय आ चुका है, 15 अक्टूबर से लेकर के और लगभग नवंबर का प्रथम सप्ताह। और जो लगाए भी होंगे, बारिश बहुत अधिक हुई है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सेंट्रल यूपी में बारिश का बहुत अधिक प्रभाव रहा है, उसमें अब उनका जमाव कैसा होता है इस पर निर्भर करेगा। और आलू अगर नहीं जमेगा, आलू का अगर खेत पूर्ण रूप से अगर पानी से भरा हो गया होगा तो पूरा का पूरा आलू सड़ जाएगा। तो हम अब बात करें मुख्य रूप से मुख्य फसल की, क्योंकि अब अक्टूबर का आज पहला दिन है, और खेत की तैयारी करें। खेत की तैयारी करने के बाद अपनी अच्छी किस्मों का चयन करें, अच्छी किस्मों का चयन करके और आलू की बुआई की शुरुआत करें। किसान
1: सब खेत की तैयारी में क्या कुछ खास है?
0: भाइयों, खेत की तैयारी में सामान्य रूप से अच्छी तरह से जुताई कर लें जिससे कि जो टिलेज है वो अच्छा हो जाए, फाइन टिल्थ हो। और इसके उपरांत आप इस बात का जरूर ध्यान दें कि आलू की जो बुआई करते हैं वो लो लेवल का फील्ड ना हो, क्योंकि कभी कभी जो जाड़ों में ठंडक में भी कोई तगड़ी बरसात हो जाती है या खुदाई के समय तगड़ी बरसात हो जाती है तो फसल को नष्ट होने की संभावना होती है। तो चुनाव करें कि जो ऊपरवार जमीन हो जहाँ पानी लगने की संभावनाएं कम हो और सैंडी लोम हो,
1: यानी बलुई
0: मतलब
1: दोमट।
0: बलुई दोमट हो, और उसमें इस बात को ध्यान में रखें। और अगर ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाना है तो हम इस बात पर भी जोर दें कि ग्रीन मैन्यूरिंग अगर कर लिए हैं तो बेहतर है, और नहीं तो गोबर की खाद की अगर संभावनाएं हैं उनके पास तो कम से कम 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जरूर खेत में डालें, क्योंकि
1: यानी
0: ऑर्गेनिक
1: 40 कुंतल प्रति एकड़।
0: जी। तो ये होगा कि जीवाश्म की मात्रा अगर अच्छी होगी तो मिट्टी में उपलब्ध जो फास्फोरस और पोटास की जो जरूरत है उसकी मिनरलाइजेशन और उसके न्यूट्रिएंट का अपटेक अच्छा होगा, और किसान को कम उर्वरक और खाद को डालने की आवश्यकता पड़ेगी।
1: डॉक्टर साहब, उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में?
0: किसान भाई, अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम बात करें तो तीन प्रमुख किस्मों की हम बात करते हैं। एक कुफरी बहार, जो किसान उसको 37-97 भी बोलता है, एक कुफरी चिप्सोना 1, ये दो, एक प्रसंस्करण और टेबल पोटैटो में भी आती है, और कुफरी बहार मुख्य रूप से टेबल पोटैटो में है, लेकिन मजबूत किस्म है इसका उत्पाद। और इसके उत्पादन के पश्चात किसान भाई इसको आगरा से और फिरोजाबाद से, वहाँ के आसपास से इसको चेन्नई मुंबई तक इसको भेजते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में इसमें लॉसेस कम है। और दो तीन और किस्में हैं, कुफरी मोहन है, अगर अगेती में किसी को लगाना है 60-65 दिन में, 70 दिन में सबसे अधिक उपज पाना है तो ये अर्ली बल्किंग है, इसको लगा लें। कुफरी ख्याति है, उसमें भी अर्ली बल्किंग की स्थिति है, उसको भी हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। और दूसरी हमने जो चर्चा किया है कि हीट टॉलरेंट की, उसमें कुफरी सूर्या बहुत पुरानी है लेकिन बहुत अच्छी प्रजाति है, और चार पांच किस्में हमारे संस्थान द्वारा और जारी की गई हैं, कुफरी किरण, कुफरी भास्कर, कुफरी तेजस। इन किस्मों को भी किसान भाई अगर उपलब्ध बीज हो तो लगा सकते हैं। इसके बाद अगर प्रसंस्करण के क्षेत्र की हम बात करें तो उसमें भी चिप्सोना 1, चिप्सोना 3, चिप्सोना 5, इन किस्मों को भी किसान भाई, कुफरी फ्राइओम, कुफरी फ्राई सोना, इन किस्मों को भी किसान भाई लगा सकते हैं, जो
1: हाँ
0: जैव संवर्धित किस्में हैं। तो किसान भाई इस किस्म को हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे संस्थान द्वारा विकसित एक कुफरी नीलकंठ, कुफरी जमुनिया, और तीसरी हमारी है जिसमें कि जिंक और आयरन बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है, कुफरी मानिक बोलते हैं। और जो कुफरी नीलकंठ है इसमें विटामिन सी और टोटल बायोकैरोटीनाइड और एंथोसाइनिन ये मिलता है, और जो हमारा कुफरी नीलकंठ है वो रिच एंथोसाइनिन। तो किसान भाई इन किस्मों को पहले तो मैं ये सुझाव दूंगा कि आप अपने जो किचन गार्डन लगाते हैं अगर थोड़ा बीज मिले तो इसको लगाएं और स्वतः खाने के लिए प्रयोग करें। नीलकंठ बहुत अच्छी किस्म है, खाने में भी बहुत अच्छी है, उपज भी बहुत अच्छी है। और अगर हम कुफरी जमुनिया की बात करें तो इसको किसान भाई अंदर से कलर इसका जो है उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसका कलर उसी तरह का होता है जिस तरह से इसकी स्किन होती है जामुन की तरह का, तो उसकी सब्जी तो उतना अच्छे से नहीं, लेकिन सलाद के तौर पर उसको अगर रायते में डाल करके इस तरह से अगर हम प्रयोग करें तो अच्छा कर सकते हैं। मानिक बहुत अच्छी है, जिंक का और आयरन का रिच सोर्स है। किसान भाई इस किस्म को भी उपयोग में लाएं और अपने किचन गार्डन में जरूर लगाएं।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे आलू की उन्नत कृषि तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके मोदीपुरम परिसर आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 94-51-91-45-42, 9451-91-4542, 94-51-91-45-42।
1: डॉक्टर आर के सिंह साहब, आज आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई, जो आलू उत्पादन के किसान भाई बहन हैं आपके सुझाव पर अवश्य ध्यान देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और अब एक बात और,
3: ओका भैया,
2: बात वह है कि देखो अपने कार्यक्रम में है गीत गौनाई ना हो तो कार्यक्रम का रंग जो है थोड़ा अधूरा रहता है, आनंद कम हो जाता है।
3: बिल्कुल भैया, तुम तो हमारे मन की बात कह दियो, जब तक गीत गौनाई ना हुई तो काम मनो नहीं लागत है भैया।
2: बिल्कुल, जो है एक तरह से मानसिक खुराक होते, व्यक्ति का जो है थकान दूर हो जाते हैं, मन आनंदित हो जाते हैं। तो भाई का प्रयास अपने कार्यक्रम में यकीन गवा है, और हीरा लाल सैनी उनके साथी भैया ये गौनाई लाए हैं, चांद कबले लुकयो बदरिया मां, तो एक सुना जाए।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: रेणु बहनी देखो, अब एक बात और है कि हम पंच सब खेती किसानी में खूब मेहनत करी थे और कोशिश होते कि हमारा काम बढ़िया से बढ़िया हो, कोशिश सबकी होती है, लेकिन कुछ लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं और उनका काम ऐसा होता है जो दूसरे के लिए प्रेरणा हो सकता है।
7: बिल्कुल भैया, प्रेरणा हो सकता था और ऐसा लोगन का यहाँ हम लेके आए थे आज के किसान क्रम में। यहाँ
8: किसान भाइयों बहनों, आज के किसान क्रम में आइए आज आपको ले चलते हैं झांसी जनपद के गुरसराय ब्लॉक के टोड़ी फतेहपुर गांव, जहां किसान उत्पादक संगठन से जुड़े पुष्पेंद्र यादव भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। पुष्पेंद्र भैया नमस्कार।
9: नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत नमस्कार, सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार सर।
8: पुष्पेंद्र भैया, आप किसान भाइयों बहनों का संगठन यानी FPO के माध्यम से आपने औषधि फसलों की खेती का बीड़ा उठाया है, ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और इससे जुड़ाव हुआ कब से?
9: पढ़ाई लिखाई की बात करें तो हम कृषि विज्ञान से MSc हैं, तो कृषि विज्ञान का छात्र होने के नाते मैंने सोचा कुछ ऐसा अभिनव प्रयोग करें जिसमें हमारा भी भला हो, क्षेत्र के किसानों का भी भला हो, उनकी आय बढ़े, समृद्धि आए। तो इस विषय में हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा काम करें कि किसान ये सोचे कि नहीं, किसानी जो है वो फायदे का सौदा है, घाटे का सौदा नहीं है। इसी को लेकर के हमने फिर वो काम छोड़कर के खेती में एक अभिनव प्रयोग किया और औषधि फसलों की खेती शुरू की। औषधि फसलों में मुख्य फसल हमने तुलसी की खेती शुरू की और 2 एकड़ से इसको स्टार्ट किया। पहले हमने जब हमने लगाया तो लोगों ने हंसी की कि तुलसी को तो गमले में लगाते हैं, तुलसी की तो हम पूजा करते हैं, खेत में 2 एकड़ में तुलसी कैसे होगी। तो उसमें ये हुआ कि जब लोगों ने हमारा देखा कि 2 एकड़ में हमें लगभग 1 लाख से ऊपर का फायदा हुआ, तो आसपास के किसानों ने भी सोचा कि नहीं ये तो अच्छा काम है और हमें भी करना चाहिए, तो फिर उनका जुड़ाव शुरू हुआ। पहले तो लोग भाग रहे थे।
8: तो कितने साल पुरानी बात है ये?
9: ये 2014 से हमने शुरू किया था,
8: यानी 12 साल हो गए।
9: 12 साल हो गए हैं और पिछले 12 सालों में देखेंगे तो 2 एकड़ से शुरू किया और आज 4,000 एकड़ में हम एक संगठन के रूप में, कृषक उत्पादक संगठन के रूप में, क्लस्टर के रूप में इसको कर रहे हैं।
8: तो तुलसी से आपने शुरुआत किया और कौन कौन सी औषधि फसलों को जोड़ा है आपने?
9: देखिए, तुलसी की जो हम फसल ले रहे हैं ये मुख्य रूप से खरीफ की फसल है,
8: बरसात में
9: लगाते हैं। अभी देखेंगे तो हमारे खेतों में तुलसी खड़ी हुई है, जुलाई और अगस्त में इसका प्लांटेशन करते हैं, पहले सीडलेस तैयार करते हैं, पौध बना के मुख्य खेत में रोपाई करते हैं, रोपाई के

0: बाद में ये 70 से 75 दिन में तैयार हो जाती है और अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट वीक में इसकी कटाई हो जाती है। इसकी कटाई होने के बाद जब खेत खाली होते हैं तो हम लोग फिर इसमें अश्वगंधा लगा देते हैं।
1: जो तुलसी की कटाई होती है क्या डिस्टिलेशन करते हैं क्या?
0: नहीं नहीं, देखिए दोनों चीजें करते हैं डॉक्टर साहब, इसमें हम डिस्टिलेशन भी करते हैं और आपको बताएं इसकी जो आज बात करें तो हम देखने में आ रहा है कि ग्रीन टी का बड़ा चलन आ गया है। सब लोग चाय को थोड़ा सा किनारे करके, दरकिनार करके और ग्रीन टी की तरफ जा रहे हैं
1: जी।
0: और जितनी भी ग्रीन टी कंपनियां बनाती हैं उन ग्रीन टी में 70 से 80% आपको बताएं तुलसी की पत्ती होती है। तो जितनी ग्रीन टी बनाने वाली कंपनियां हैं उनको तुलसी की पत्ती की आवश्यकता होती है तो सूखी पत्ती और हमसे ले जाती हैं।
1: अच्छा, तो जैसे अक्टूबर में आपका खेत खाली हुआ, फिर आपने अश्वगंधा की बुआई की, फिर
0: पहले तो तुलसी की पत्ती की बात करें तो हम तुलसी की कटाई करेंगे। कटाई करने के बाद 2 से 3 दिन में इसको सुखाते हैं, एक प्लास्टिक की जो सीट होती है उस पर डाल देते हैं। जब सूख जाती है तो पत्ती को झड़ा लेते हैं। झड़ाने के बाद में जो सूखी पत्ती है वो अलग हो जाती है, डंठल और उसकी जो तना है वो अलग हो जाता है और जब झड़ाते हैं तो बीज और पत्ती दोनों उसी एक ही जगह सीट पे आ जाते हैं। फिर हम छन्ने की सहायता से बीज को अलग करते हैं और पत्ती को अलग कर लेते हैं तो जो बीज होता है वो बीज में चला जाता है और जो तुलसी की पत्ती है वो ड्राई लीफ के रूप में चली जाती है, कंपनियां ले जाती हैं। तुलसी की बात करें एक एकड़ में तो हम बताना चाहेंगे एक एकड़ में हमारे किसान भाइयों को तुलसी का जो लागत खर्चा है वो 15 से 20 हजार रुपए खर्चा आता है पूरी फसल तैयार करने में। और शुद्ध मुनाफा की बात करें तो ये तुलसी की पत्ती और तुलसी का बीज, तुलसी की पत्ती लगभग 5 से 6 क्विंटल प्राप्त हो जाती है जो मार्केट में आज बात करें तो 120-130 रुपए किलो जा रही है, यानी कि 12-13 हजार रुपए क्विंटल। तो अगर 6 हो गई तो 72 हजार रुपए की हमारी तुलसी की पत्ती आ गई है। और बीज की बात करें तो एक एकड़ में करीब 25 से 30 किलो बीज भी मिल जाता है, लगभग 500 रुपए किलो बीज मार्केट में बिकता है। कंपनियां तो बड़ा महंगा बेचती हैं, 2000 और 3000 रुपए किलो बेचती हैं, लेकिन किसान जब मंडी में जाता है तो बीज की कीमत 400-500 रुपए किलो, 600 रुपए किलो ही मिल पाती है उसे। तो अगर हम बात करें कि 30 किलो बीज हो गया तो 15000 का बीज हो गया, 70-72 हजार की हमारी पत्ती हो गई है, ऐसे करके लगभग 85-87 हजार रुपए हो गया। अगर इसमें से हम 20 हजार रुपए लागत खर्चा काट देते हैं तो लगभग हमें 63 हजार रुपए शुद्ध मुनाफा एक एकड़ से किसान को हो जाती है, ये खरीद की बात
1: जी।
0: अब इसको काट के हमारे किसान भाई सारे जो है ना वो अश्वगंधा लगाते हैं, अश्वगंधा की सीधी बुआई करते हैं। एक एकड़ में लगभग 10 किलो हमें बीज की आवश्यकता होती है। खेत को अच्छे से तैयार करके ब्रॉडकास्टिंग रूप से उसकी हम बुआई करते हैं, हल्का पानी लगाते हैं और ये 4 महीने की फसल है। हम इसको नवंबर में लगाएंगे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च लास्ट में और अप्रैल फर्स्ट वीक में इसको हम लोग अप्रूव करते हैं, इसकी जड़ काम में आती है
1: जी।
0: एक एकड़ में हम बात करें तो लगभग 3 से 4 क्विंटल अश्वगंधा प्राप्त हो जाता है और अश्वगंधा इस समय मार्केट में चल रहा है 25,000 से 30,000 रुपए क्विंटल, तो लगभग 1.25 लाख रुपए का अश्वगंधा रबी में किसान को मिल जाता है।
1: पुष्पेंद्र भैया, आपके किसान उत्पादक संगठन में कुल कितने किसान भाई बहन जुड़े हैं?
0: देखिए जो हमारे शेयर होल्डर है वो 913 किसान है इसमें, लेकिन जुड़ने की बात करें तो लगभग 4000 किसान हमसे जुड़े हुए हैं क्षेत्र के।
1: किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से औषधि फसलों की खेती में तुलसी और अश्वगंधा उत्पादन करके सब खुशहाल हैं?
0: बिल्कुल खुशहाल हैं। और आपको बताएं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय दोगुनी हो, सारे किसान भाइयों को ऐसा अभिनव प्रयोग करना होगा, खेती में विविधीकरण अपनाना होगा, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना होगा, तभी आय दोनी होगी। सारा हम अपना झांसी का जो हमारा प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, माननीय जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर साहब, SDM, सारे अधिकारी हमारे खेतों पे आए हैं, विजिट किया है किसानों के साथ में और किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं ताकि और किसान देखें और औषधि खेती करें, फलों की खेती करें, फूलों की खेती करें ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके।
1: पूरे साल में किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से कितनी आमदनी हो जाती है?
0: देखिए अब किसान की बात करें तो एक किसान अपनी अपनी फसल का उपज लेता है, लेकिन अगर पूरे उत्पादक संगठन की बात करें तो संगठन का जो पूरे साल का जो टर्नओवर है वो लगभग 15 से 16 करोड़ रुपए का टर्नओवर है एक साल।
1: और उसका शेयर सबको मिलता होगा?
0: हाँ, उसका जो डिविडेंड फंड है, जो लागत काट के, खर्चा काट के जो बचता है वो सारे किसानों को किसी ना किसी रूप में या गिफ्ट के रूप में या उनको हम लोग कुछ सामान के रूप में या यंत्र के रूप में उनको हम लोग बांटते हैं और उनको लाभान्वित व्यक्त करते हैं।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मोबाइल नंबर है 9993601002, 9936001002।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अब अगर हो तुम्हें लगे मौसम के हाल तो बता दो, कहे कहीं अपनी खेती बाड़ी में अगर मौसम पहले से पता रहते हैं तो भाई बहुत लाभ मिला था कि हमका।
4: भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ से ने जो मौसम की जानकारी है उसका अनुमान यू है कि अगले समय में मौसम अधिकांश जगह पर शुष्क रहने की संभावना, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। कोई भारी बारिश के कोई जो है चेतावनी अपने पास नहीं है।
3: और हमका उम्मीद है कि आप सभी किसान भाई बहन इनके यहाँ यू अंक बहुत पसंद आवा हुई है।
4: और अब यह के साथ हमका यानी विनय के यहाँ
3: और हमका यानी रेणु के यहाँ
4: देव अनुमति
3: जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिंग के। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

0: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 87 इंटरसेप्टर वाहनों को दिखाई हरी झंडी, कहा सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। भाजपा प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने लखनऊ में सहप्रभारियों और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के साथ की बैठक, आगामी चुनाव को लेकर परखी तैयारियां। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश व्यापी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का किया शुभारंभ, कहा रोगों की रोकथाम के लिए सामूहिक भागीदारी आवश्यक। और कल से 8 अक्टूबर तक प्रदेश में मनाया जाएगा वन्य जीव सप्ताह। वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना बरेली में वॉकथॉन फॉर वाइल्ड लाइफ के साथ कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के लोकभवन सभागार में 87 इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाई और पूर्व

0: डीजीपी प्रकाश सिंह की पुस्तक संघर्ष का विमोचन भी किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब 7 पुलिस कमिश्नरेट काम कर रहे हैं। आज यूपी पुलिस के सामने विचार, वीरता और तकनीक तीनों का समन्वय दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को उत्तर प्रदेश पुलिस प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रही है।
1: राज्य सरकार की जो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, इस नीति को यूपी पुलिस पूरे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम करेगी। वर्षों से, दशकों से जो मांग हो रही थी कि यूपी पुलिस के भी कुछ कमिश्नरेट बनने चाहिए, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 7 पुलिस कमिश्नरेट हम यूपी के अंदर बना चुके हैं और जो सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं आज देश को, प्रदेश की 25 करोड़ जनता को उपलब्ध करवा रही है।
0: श्री योगी ने बताया कि कार्यक्रम में 16 पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को राष्ट्रपति के वीरता पुरस्कार तथा 10 पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों को मुख्यमंत्री वीरता पदक से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी वीर पुलिस कर्मियों को बधाई दी। भाजपा प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने आज लखनऊ में सह प्रभारियों और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने क्षेत्रीय अध्यक्षों व प्रभारियों के साथ बैठक कर बूथों से लेकर विधानसभा क्षेत्रों तक की तैयारियां परखी। इससे पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बताया कि उनके दौरे के दौरान आगामी चुनाव की तैयारियों को संगठन मजबूती पर विचार विमर्श होगा।
2: तावड़े जी संगठन के प्रभारी हैं तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में आना जाना उनका रहेगा ही, और चुनाव निकट है तो निश्चित तौर से हम लोग कार्यकर्ताओं का संगठन हमारा बूथ तक कैसे मजबूत होती चर्चा।
0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि संचारी रोगों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ सभी संबंधित विभागों और आमजन की सामूहिक भागीदारी आवश्यक है। स्वच्छता, जागरूकता और समय पर रोग की पहचान के माध्यम से संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। श्री पाठक लखनऊ स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे।
3: इस अभियान के दौरान हम सभी घरों में दस्तक अभियान भी चलाएंगे। सबसे पहले जो गंदगी की सफाई करना है, फिर उसके उपरांत हमें मच्छर मारने की दवा की फॉगिंग करनी है, इसके अलावा लार्वा मारने के लिए भी हम दवाइयां डालेंगे।
0: उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर और दस्तक अभियान 12 से 31 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया है। इस अधिनियम का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकना और लोगों को समय पर पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करना है। अधिनियम में प्रावधान है कि अगर किसी जन्म या मृत्यु की सूचना रजिस्ट्रार को 1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल जिला मजिस्ट्रेट, उप विभागीय मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट की स्वीकृति से ही किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में वन विभाग 2 से 8 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह मनाएगा। पूरे सप्ताह भर पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीवों पर आधारित मास्क मेकिंग, छद्म आवरण अनुकरण पर चित्रकला, नुक्कड़ नाटक, फैंसी ड्रेस, फेस पेंटिंग, रंगोली, मेहंदी जैसी प्रतियोगिताएं भी होंगी। इस दौरान प्रदेश के बच्चे वन्यजीव के संसार में अपने मनोभाव से रंग भरेंगे। इस अवधि में प्रतिभागी व 12 वर्ष तक के बच्चों का चिड़ियाघर में प्रवेश निःशुल्क रहेगा।

0: वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना बरेली में वॉकथॉन फॉर वाइल्ड लाइफ के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता को वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और पशु कल्याण के प्रति जागरूक करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने किस तरह उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान की है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है, जिसके पहले चरण को PPP मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से विकसित किया गया है। 28 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, यहाँ से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों की कनेक्टिविटी को नई उड़ान मिलेगी।
2: नोएडा का एयरपोर्ट आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, इस पूरे क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ होने वाला। एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहाँ के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला।
1: नोएडा के निवासी मोहित कुमार ने कहा कि यह एयरपोर्ट पूरे क्षेत्र की नई पहचान बनेगा।
3: इससे रोजगार, व्यापार, उद्योग, पर्यटन और युवाओं के लिए नए अवसर बढ़ेंगे। आसपास के गांव और कस्बों में सड़क परिवहन, अन्य सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी।
1: यह हवाई अड्डा देश में एविएशन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। विशाल दरदुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज जनभवन लखनऊ के गांधी सभागार में आयोजित क्षमावाणी पर्व एवं त्यागी व्रति सम्मान मिच्छामी दुक्कड़म कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की। इस अवसर पर राज्यपाल ने त्यागी व्रति जनों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भारत एक जीवंत संस्कृति है और विविधताओं का उत्सव है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर आज लखनऊ के गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में आयोजित समारोह में 100 वर्ष की आयु पूरी कर चुके 3 वर्ष जनों को शतायु सम्मान और समाज में रचनात्मक योगदान दे रहे 4 वरिष्ठ जनों को सीनियर अचीवर्स सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि बुजुर्गों का सम्मान केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा बनना चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 87 इंटरसेप्टर वाहनों को दिखाई हरी झंडी, कहा सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। भाजपा प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने लखनऊ में सहप्रभारियों और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के साथ की बैठक, आगामी चुनाव को लेकर परखी तैयारियां। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेशव्यापी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का किया शुभारंभ, कहा रोगों की रोकथाम के लिए सामूहिक भागीदारी आवश्यक। और कल से 8 अक्टूबर तक प्रदेश में मनाया जाएगा वन्यजीव सप्ताह। वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना बरेली में वॉकथॉन फॉर वाइल्ड लाइफ के साथ कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 7:31 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम

0: अभी आप सुन रहे थे समीर के लिखे गीत को, नदीम सरवन के संगीत निर्देशन में गाया था कुमार सानू और आशा भोसले ने। फिल्म का नाम था सलामी।
1: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

0: अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल को फिल्म साजन में। गीत को लिखा था समीर ने और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण FM 102.7 पर। कार्यक्रम है सबरस।

अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण को फिल्म हमारा दिल आपके पास में। गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत दिया था संजीव दर्शन ने।

अभी आप सुन रहे थे देव कोहली के लिखे गीत को राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में गाया था एसपी बाला सुब्रमण्यम ने। फिल्म का नाम था हम आपके हैं कौन।

कार्यक्रम के आखिरी में आपने सुना अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू को फिल्म हम आपके दिल में हैं रहते हैं। गीत को लिखा था समीर ने और संगीत दिया था अनु मल्लिक ने। इसी गीत के साथ कार्यक्रम सब्र सब समाप्त हुआ।

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत।

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो को फिल्म गुनाह में। गीत को लिखा था प्रवीण भारद्वाज ने और संगीत दिया था आनंद राज आनंद ने।

अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी के लिखे गीत को उत्तम सिंह के संगीत निर्देशन में गाया था लता मंगेशकर और हरिहरन ने। फिल्म का नाम था दिल तो पागल है।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: कार्यक्रम के आखिरी में आपने सुना सोनू निगम और सुनिधि चौहान को फिल्म फना में। गीत को लिखा था प्रसून जोशी ने और संगीत दिया था जतिन ललित ने। इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ।

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत।

0: FM 102.2 है। अब सुनिए,
1: ओबरा केंद्र है, रात्रि के 8:45 होने को है। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में, फिर 9 बजे अंग्रेजी में हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जनसेवा के लिए युवाओं को सरकारी नौकरियों में लाने पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमेरिका ने ईरान सैन्य खरीद मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
3: हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि UPSC पर लोगों का

0: अटूट विश्वास बना हुआ है।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महानदी जल विवाद सुलझाने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो बल दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए। नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जीवन विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति को नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पहुंच और बेहतर परिणामों में बदलने के सामूहिक दायित्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को एक क्षेत्र के साथ मानवीय गरिमा का एक अनिवार्य स्तंभ माना है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाखों परिवारों को 5 लाख रुपए की वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। एक रिपोर्ट।
4: दिशा निर्देशों के अंतर्गत शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के उपयोग के लिए विशेष रूप से निर्मित वाहनों तथा दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी किए जाएंगे। यह सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर प्रदान की जाएगी। संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य पात्र दिव्यांगजन वाहनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करना और उसके नवीनीकरण में अधिक एकरूपता लाना है। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी दिल्ली।
0: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किए हैं। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
1: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: नागर विमान

0: मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है।
1: We are very, very proud of the bravery and the courage.
2: कैप्टन स्मिथ की बहादुरी और साहस पर पूरे देश को गर्व है। कठिन परिस्थिति में जान के खतरे के बावजूद उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए साहस दिखाया। उनका यह अदम्य साहस हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री ने भी उनके परिवार से बात की है। पूरा देश कैप्टन स्मिथ और उनके परिवार के साथ खड़ा है।
1: We are very, very grateful and we are really, really extremely proud of it.
0: गुजरात के प्रमुख तीर्थस्थलों पर फ्लाई दुबई के कैप्टन स्मिथ मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य होने और दीर्घायु के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं। एक रिपोर्ट।
3: अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 174 यात्रियों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के जांबाज कैप्टन और मूल रूप से गुजरात के रहने वाले स्मिथ मच्छर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थस्थलों सोमनाथ और अंबाजी में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया है। अंबाजी मंदिर के पवित्र चांचर चौक में आज विशेष प्रार्थना की गई, तो वही प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में उनके लंबे जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए अखंड महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैप्टन स्मिथ के और अदम्य साहस को नमन करते हुए उन्हें गुजरात सरकार के प्रतिष्ठित विशिष्ट गुजरात गरिमा अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच कैप्टन स्मिथ मच्छार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कैप्टन स्मिथ को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं और भारतीय दूतावास यूएई के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय समर स्मारक और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जैसे स्मारकों के निर्माण के द्वारा इस दृष्टिकोण को साकार किया गया है।
5: राष्ट्रीय समर स्मारक की स्थापना जनवरी 2019 में इंडिया गेट के पास की गई थी। यह स्मारक उन भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के लिए बनाया गया है जिन्होंने आजादी के बाद हुए युद्धों और संघर्षों में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्य स्मारक के अलावा यहां 21 वीर सैनिकों की प्रतिमाओं के लिए एक विशेष समर्पित क्षेत्र भी है जिन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 2019 में आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह स्मारक देश के बहादुर सैनिकों की वीरता और साहस की भावना को दर्शाता है।
6: दिल्ली के दिल यानी वो जगह जहां पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है, बस उसके ठीक नजदीक में यह एक नया स्मारक बनाया गया है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक की पहचान एक ऐसे स्थान के रूप में बनेगी जहां लोग देश के महान शहीदों के बारे में जानकारी लेने, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, उन पर शोध करने के उद्देश्य से आएंगे। यहाँ उन बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए ताकि हम जीवित रह सके, ताकि देश सुरक्षित रहे और विकास कर सके।
5: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र आदित्य ने कहा कि यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते और देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं।
7: यह विचार बहुत ही महान है या हमें उन निरंतर बलिदानों की याद दिलाता है जो हमें अपने देश को अनगिनत दुश्मनों से बचाने के लिए देने पड़ते हैं। इसके साथ यह केवल शहादत और मृत्यु को नमन करने की जगह नहीं है बल्कि यह चारों ओर प्राकृतिक

0: सुंदरता पेड़ पौधों और हरियाली से घिरा हुआ है।
1: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक देश को समर्पित किया था। इस स्मारक की दीवार पर उन पुलिस कर्मियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई। ये स्मारक सिर्फ इमारतें नहीं है बल्कि ये उन सैनिकों और पुलिस कर्मियों को सम्मान देते हैं जो देश की रक्षा करते हुए आतंकवाद और अपराध से लड़ते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं और मुसीबत के समय लोगों की मदद करते हैं। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। आइजोल में आज सियालसुख के पास एक कार के गहरी खाई में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में इम्फाल के पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक डॉक्टर एंगम पामे, आइजोल दूरदर्शन के समाचार निदेशक नामपीबाऊ मारिनमई और सीबीसी आइजोल के MTSH लियानवाला शामिल हैं। अमेरिका ने ईरान रक्षा मंत्रालय के लिए हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने के मदद के आरोप में कई देशों के 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंधित व्यक्तियों में एक पाकिस्तानी व्यवसायी और उससे जुड़ी 3 कंपनियां भी शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। नौकायन में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने रजत तथा स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में नितेश सिवाच ने रजत पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमेरिका ने ईरान से सैन्य खरीद के मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says 21st century India is moving forward with principles of pro-people, proactive and good governance. Stresses to bring youth in government jobs oriented to serve people. Home Minister Amit Shah chairs meeting with Chief Ministers of Chhattisgarh and Odisha to resolve long-standing Mahanadi water dispute. Government extends validity of exempted fast-tag for Divyangjan from 1 to 5 years. Floods continue to affect Bihar with several rivers flowing above danger level. US sanctions 10 individuals and entities, including Pakistani businessmen, over Iran military procurement. And in Asian Games in Japan, India bagged 6 medals today, including historic silver medals in sailing and Greco-Roman wrestling. Indian men's hockey and cricket teams enter final. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said 21st century India is moving forward with principles of pro-people, proactive and good governance. The Prime Minister said the country is moving rapidly on the reform express and the institutions that conduct examinations must also work on reforms that are the need of the country. Addressing the centenary celebrations of Union Public Service Commission, UPSC, at Bharat Mandapam in New Delhi today, the Prime Minister stressed on the need to bring young people into public services who are drawn not to public office but to public service.
4: हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है बल्कि वो यह भी देखे युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म आवारा में। गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत दिया था शंकर जय किशन ने।

0: देश के अपने स्वदेशी नेटवर्क BSNL की 26वीं वर्षगांठ पर आपके लिए है विशेष ऑफर। सिर्फ ₹1 में BSNL सिम पाइए, अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 1 GB डेटा, 100 SMS और 24 दिनों की वैधता। ऑफर सिर्फ 12 अक्टूबर तक, तो देर किस बात की। आज ही अपने नजदीकी BSNL CSC पर जाएं और इस खास ऑफर का लाभ उठाएं। आपका BSNL, हमारा BSNL।
1: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक, योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

अभी आप सुन रहे थे ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे गीत को गाया था शमशाद बेगम ने। फिल्म का नाम था

0: अभी आप सुन रहे थे जय निसार अख्तर के लिखे गीत को ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में गाया था गीता दत्त और मोहम्मद रफी ने। फिल्म का नाम था सीआईडी।
1: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा।

कार्यक्रम के आखिरी में आपने सुना शैलेंद्र के लिखे गीत को रवि के संगीत निर्देशन में गाया था किशोर कुमार और आशा भोसले ने। फिल्म का नाम था दिल्ली का ठग। इसी गीत के साथ पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब समाप्त हुआ। FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह को फिल्म राज रिबोट में। गीत को लिखा था रश्मि विराग ने और संगीत दिया था जीत गांगुली ने।

अभी आप सुन रहे थे कुमार के लिखे गीत को, अमाल मलिक के संगीत निर्देशन में गाया था अमाल मलिक और पलक मुच्छल ने। फिल्म का नाम था हीरो।

कार्यक्रम के आखिरी में आपने सुना समीर के लिखे गीत को चिरंतन भट्ट के संगीत निर्देशन में गाया था श्रेया घोषाल ने। फिल्म का नाम था शापित। इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ।

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात के 9:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत।

0: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 10 बजने को है। प्रस्तुत है प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: प्रादेशिक लोक संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है बांग्ला संगीत के अंतर्गत नजरुल गीति। कलाकार हैं श्रीमती तुलीरेखा दत्तो। श्रीमती तुलीरेखा दत्तो 3 दशकों से भारतीय संगीत के प्रति समर्पित हैं। आप एक ख्याति प्राप्त गायिका हैं जिन्होंने नजरुल गीति, भजन, उपशास्त्रीय संगीत तथा शास्त्रीय संगीत जैसी विधाओं में अपना परचम लहराया है। आप अपनी भावात्मक कलाकारी और शास्त्रीय अनुशासन दोनों के लिए जानी जाती हैं। श्रीमती तुलीरेखा दत्तो के संगीत का सफर हमारी बहुमूल्य गुरु शिष्य परंपरा का परिचायक है। पंडित एटी कानन, उस्ताद मोहम्मद दिलशाद खान, पंडित दीनानाथ मिश्रा, पंडित बलराम पिल्लई, विदुषी शुभ्रा गुहो, श्रीमती मीरा बंदोपाध्याय, श्री सुकुमार मित्रा और विदुषी डालिया राहुत समेत देश के सुविख्यात संगीतज्ञों से आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन की एक रीट की कलाकार श्रीमती तुलीरेखा दत्तो ने अपने श्रोताओं के समक्ष मनमोहक प्रस्तुतियां दी हैं। संगीत समारोह, मीडिया प्रसारण और व्याख्यानों के माध्यम से देश विदेश में आपने अनगिनत कार्यक्रम पेश किए हैं।
2: Tonight in the national program of regional light and folk music, we present light music in Bengali through the rendition of Nojrul Giti by Srimati Tulirekha Datta. A distinguished vocalist with over 3 decades of dedicated service towards Indian music, Srimati Tulirekha Datta has established herself as a much sought-after performer in Nojrul Giti, bhajan, semi-classical music, as well as classical music. She is renowned for her expressive artistry and classical discipline. The musical journey of Srimati Tulirekha Datta reflects the rich Guru Shishya Parampara, nurtured under some of India's most eminent maestros, namely Pandit A.T. Kanan, Ustad Muhammad Dilshad Khan, Pandit Dinanath Mishra, Pandit Balaram Pillai, Vidushi Shubhra Guha, Srimati Meera Bandopadhyay, Sri Shukumar Mitra, and Vidushi Dalia Rahut. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan, Srimati Tulirekha Datta has enthralled her audience through concerts, broadcasts, lecture demonstrations and national as well as international performances.
1: आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत आप एक अति प्रचलित नजरुल गीति के साथ करेंगी जिसके रचयिता स्वयं काजी नजरुल इस्लाम हैं। वो विद्रोही कवि जो आज भी हर बंगालवासी के हृदय

0: का गौरव है। गीत के बोल हैं महाविद्या आद्यशक्ति परमेश्वरी कालिका, जिसका अर्थ है सभी दैवी स्त्री ऊर्जाओं का एक परम मातृ शक्ति में समावेश है तथा संसार की समस्त सृष्टियां ज्ञान शक्ति प्रेम और मुक्ति उसी शाश्वत दिव्य माता से वाहित होती हैं।
1: श्रीमती तुली रेखा दत्ता बिगेंस हर प्रेजेंटेशन टुनाइट विद अ वेरी पॉपुलर नजरुल गीति penned by none other than the revered kavi Najrul Islam, the patriot poet who holds a place of pride in every Bengali's heart. The song goes as Mohabidya Adya Shakti, meaning the unity of all divine feminine manifestations in one supreme mother, affirming that all creations, knowledge, strength, compassion and liberation flows from the eternal divine mother.

0: नजरुल गीती के अपने गुलदस्ते से श्रीमती तुली रेखा दत्त अब प्रस्तुत करेंगी गीत आधो आधो बोल लाजे बाधो बाधो बोल, जो कि अनकहे प्रेम की सुंदरता की बात करता है, जहां शब्दों से अधिक मौन की भाषा कह जाती है।
1: The next presentation from Srimati Tuli Rekha Datta from her basket of Nozrul Giti is Adho Adho Bol, which celebrates beauty of unexpressed love, where silence often conveys more than words.

0: श्रीमती तुलीरेखा दत्त की अगली प्रस्तुति नजरुल गीती हेमंतिका एशो एशो हिमेल शीतल बनुतले हमें प्रकृति की शांत मनोहारी और विपुल सुंदरता से मिलवाती है। कवि नजरुल इस्लाम इस गीत में प्रकृति को अंतर की शांति और आध्यात्मिक जागृति का स्रोत कहते हैं।
1: श्रीमती तुलीरेखा दत्ताज नेक्स्ट नजरुल गीती हेमंतिका एशो एशो which greets us with tranquility, abundance, and graceful beauty of the autumn season, and where Kobi Nojrul Islam presents nature as a source of inner peace and spiritual

0: नजरुल गीति की इस सुंदर प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती तुली रेखा दत्त अब प्रस्तुत करेंगी बोऊ कथा कओ अभिमानिनी, जो कि प्रेम में आपसी बातचीत और मान मनोवल की बात करता है। इस गीत के माध्यम से कवि कहते हैं कि रिश्तों को संवारने के लिए अभिमान छोड़ आपसी समझबूझ और वार्तालाप की राह अपनानी चाहिए।
1: Continuing with her lovely rendition of Nojrul Giti, Srimati Tuli Rekha Datta now presents Bou Kotha Kao Obhimanini, a song that depicts the power of love, communication and reconciliation. It emphasizes that relationships flourish when pride gives way to understanding and heartfelt conversation.

0: श्रीमती तुलीरेखा दत्त नजरुल गीत के इस कार्यक्रम का समापन झूम झूम झूमरा के साथ करेंगी, जो संगीत, नृत्य और जीवन छंद के प्रति हमारे अनायास प्रेम का बखान करता है। ये गीत कहता है कि नृत्य हर्षोल्लास की एक सर्वव्यापी अभिव्यक्ति है, जो लोगों को प्रकृति और ईश्वर से जोड़ता है।
1: श्रीमती तुली रेखा दत्ता कंक्लूड्स हर प्रेजेंटेशन ऑफ नजरुल गीति टुनाइट विद झूम झूम झूमरा नाचे के एलो, व्हिच डिपिक्ट्स आवर स्पोंटेनियस लव फॉर म्यूजिक, डांस एंड द जॉयफुल रिदम ऑफ लाइफ। It portrays dance as a universal expression of happiness that unites people with nature and the divine.

0: काल से प्रेम की भेंट स्वरूप नजरुल गीति सुन रहे थे। कलाकार थी श्रीमती तुली रेखा दत्तो। इसी के साथ नजरुल गीति की यह प्रस्तुति यहीं संपन्न होती है। कृपया अगली घोषणा हेतु हमारे साथ बने रहें।
1: यू आर लिसनिंग टू अ बुके ऑफ नजरुल गीति कैरिंग लव फ्रॉम द लैंड ऑफ बंगाल एंड एज प्रेजेंटेड बाय श्रीमती तुली रेखा दत्ता। And with this, we end tonight's presentation of Nojrul Giti, which was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata. Please stand by for the next announcement.
2: ये आकाशवाणी है। क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं बिहार की समृद्ध लोक संगीत परंपरा की एक मनभावन प्रस्तुति। बिहार की लोक परंपरा में जीवन के सुख दुख, प्रेम और विरह, भक्ति, पारिवारिक संबंध तथा सामाजिक सरोकार, इन सभी भावों की सहज और आत्मीय अभिव्यक्ति लोकगीतों के माध्यम से होती रही है। आज की प्रस्तुति की कलाकार हैं सुप्रसिद्ध लोक गायिका वंदना कुमारी। वंदना कुमारी आकाशवाणी की बी हाई ग्रेड कलाकार हैं। उन्होंने लोक गीत गायन की शिक्षा भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना से प्राप्त की। वहीं उन्होंने अपने गुरु मनोरंजन ओझा से लोक गायन की बारीकियों के साथ साथ लोक परंपराओं की गहन जानकारी प्राप्त की।
3: दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू आवर रीजनल ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ फोक एंड लाइट म्यूजिक। टुडे वी ब्रिंग यू द रिच एंड कलरफुल फोक म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ बिहार, अ ट्रेडिशन दैट हैज लिव्ड थ्रू जनरेशंस एंड कंटिन्यूज टू कनेक्ट पीपल विद देयर रूट्स। Bihar folk songs beautifully reflect the many shades of life, joy and sorrow, love and longing, devotion, family relationships and everyday social life. Our featured artist today is the well-known Bhojpuri folk singer, Vandana Kumari. Vandana Kumari is a B high grade artist of All India Radio. She received her training in folk singing at the Bharatiya Nritya Kala Mandir, Patna, where she learned the finer nuances of folk music and the traditions associated with it from her guru Manoranjan Ojha.
2: आज की प्रस्तुति की शुरुआत वंदना कुमारी कर रही हैं एक पारंपरिक देवी गीत से। देवी गीतों की बिहार की लोक परंपरा में अपनी विशिष्ट पहचान है। इसका एक लोकप्रिय रूप है पचरा, जिसमें देवी की महिमा, लोक विश्वास और भक्ति भावना का सुंदर समावेश दिखाई देता है। प्रस्तुत गीत में शीतला माता और मल्ला के बीच संवाद के माध्यम से भक्ति और लोक आस्था को अभिव्यक्ति दी गई है। तो आइए सुनते हैं वंदना कुमारी के स्वर में यह पारंपरिक देवी गीत, जिसके बोल हैं एही पार शीतला मैया।
3: आवर फर्स्ट प्रेजेंटेशन इज अ ट्रेडिशनल देवी गीत और अ डिवोशनल सॉन्ग डेडिकेटेड टू द गॉडेस। देवी गीत ऑक्यूपाइज अ स्पेशल प्लेस इन बिहार्स फोक ट्रेडिशन। वन ऑफ इट्स पॉपुलर फॉर्म इज नोन एज पचरा, विच ब्रिंग्स टूगेदर डिवोशन, फोक बिलीव एंड द ग्लोरी ऑफ द गॉडेस। इन टूडेज सॉन्ग वी हियर अ डायलॉग बिटवीन शीतला Mata and a boatman woven into a beautiful expression of faith and devotion. So let us listen to Vandana Kumari in this traditional Devi Geet titled Yehi Paar Sheetala Maiya.

0: अब प्रस्तुत है शिव भजन जिसके बोल हैं एहो शिव शंकर दानी। इस भजन में भक्त भगवान शिव से मंगल की कामना करते हुए प्रार्थना करते हैं। भारतीय लोक और धार्मिक संगीत परंपरा में मंगल कामना का विशेष महत्व रहा है। ईश्वर का स्मरण और मंगल की प्रार्थना किसी शुभ अवसर पर प्रस्तुति के आरंभ का अभिन्न हिस्सा रही है।
1: एंड नाउ अ शिव भजन। द सॉन्ग इज टाइटल्ड एहो शिव शंकर दानी। इट इज अ प्रेयर टू लॉर्ड शिवा सीकिंग हिज ब्लेसिंग एंड विशिंग for peace and well-being in our folk and devotional traditions. Remembering the divine and seeking blessings has always been an important part of any auspicious occasion. So let us listen.

0: अब अगली प्रस्तुति है झूमर। प्रस्तुत झूमर में नायिका अपने पति से विभिन्न प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की मांग करती है। गीत में दाम्पत्य जीवन की आत्मीयता और सहज हास परिहास का सुंदर रंग दिखाई देता है। आइए सुनते हैं यह मनभावन झूमर, जिसके बोल हैं कुसुम रंग चुनरी।
1: Our next presentation is a lively jhumar. In this song, a woman playfully asks her husband for beautiful clothes and ornaments. It is a charming glimpse of married life, filling with affection, warmth and a touch of humor. Here is the jhumar titled Kusum Rang Chuneri.

अब प्रस्तुत होने वाले लोक भजन में भरत और कैकेयी के संवाद के माध्यम से भगवान श्री राम के वन गमन से जुड़ी परिस्थितियों का भावपूर्ण वर्णन किया गया है। इस संवाद में परिवार के भीतर

0: पन भावनाओं पीड़ा और घटनाक्रम को लोक गायन की सहज शैली में अभिव्यक्त किया गया है सुनते हैं यह लोक भजन जिसके बोल हैं राम कहां माई
1: आवर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज अ फोक डिवोशनल सॉन्ग बेस्ड ऑन एन इमोशनल डायलॉग बिटवीन रिकॉलिंग द सर्कमस्टेंसेस सरेंडिंग लॉर्ड रामास एग्जाइल थ्रू दिस सिंपली येट पावरफुल फोक फॉर्म द सॉन्ग ब्रिंग्स अलाइव द इमोशंस विद इन द फैमिली द पेन द कॉन्फ्लिक्ट and the sorrow of separation. Let us listen to this Lok Bhajan, titled Ram Kahan Aayi.

0: बच्चे के जन्म के छठे दिन मनाया जाने वाला छठी संस्कार परिवार के लिए खुशी और उल्लास का अवसर होता है। प्रस्तुत गीत में ननद और परिवार की अन्य महिलाएं बच्चे की माँ से विभिन्न प्रकार के आभूषण और वस्त्रों की मांग करती है। अब सुनते हैं ये छठी गीत जिसके बोल हैं छठिया पूजेला ननदी।
1: वन सच ट्रेडिशन इज द छठी सेरेमनी ऑब्जर्व्ड ऑन द सिक्स्थ डे आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। इट इज अ टाइम ऑफ हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन फॉर द entire family. In this song, the sister-in-law and the other women of the family playfully ask the new mother for a different kinds of clothes and ornaments. Now let us listen to this traditional chhathi geet titled Chhathiya Pujele Nandi.

0: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में बिहार की सुप्रसिद्ध लोक गायिका वंदना कुमारी का गायन। संगत कलाकारों में नाल पर अर्जुन कुमार चौधरी, हारमोनियम पर अभिषेक पाठक और बांसुरी पर मोहम्मद सलीम। इस कार्यक्रम का ध्वन्यांकन आकाशवाणी पटना केंद्र में किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द रीजनल ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ फोक एंड लाइट म्यूजिक फीचरिंग द रेनाउंड भोजपुरी फोक सिंगर वंदना कुमारी। द कंपेनियन म्यूजिशियन Where Arjun Kumar Chaudhary on Nal, Abhishek Pathak on Harmony.

0: हैं, या अली कहते ही पहचान लिए जाते हैं, या अली कहते ही पहचान लिए जाते हैं। और इतना आसान नहीं होता है निजामी होना, इतना आसान नहीं होता है निजामी होना। यार नजराने में ईमान लिए जाते हैं, यार नजराने में ईमान लिए जाते हैं, यार नजराने में ईमान लिए जाते हैं। एक नई मनकबत पेश कर रहा हूँ। हमारी कोशिश रहती है कि उस महल में जो मुशायरा होता है उसमें कुछ शेर हम नए पढ़े। हुजूर वाला आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि सुनिएगा कि चरागे दीद के अश्कों को छोड़ आए हैं, चरागे दीद के। एक मरतबा दूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। दरे निजाम पे आंखें बिछाए बैठे हैं कि दरे निजाम पे आंखें बिछाए बैठे हैं, चरागे दीद के आंसू सजाए बैठे हैं, चरागे दीद के आंसू सजाए बैठे हुए हैं। हुजूर कुछ तो मिले, हुजूर कुछ तो निगाहे करम की भीख मिले कि हुजूर कुछ तो निगाहे करम की भीख मिले। गुलाम आपके महफिल सजाए बैठे हैं, गुलाम आपके महफिल सजाए बैठे हैं। इन्हें खबर है कि दस्ते करम उठेगा जरूर, कि इन्हें खबर है कि दस्ते करम उठेगा जरूर। फकीर देर से सर को झुकाए बैठे हैं, फकीर देर से सर को झुकाए बैठे हैं। और तुम्हारा नाम तो मुश्किल कुशाए आलम है, कि तुम्हारा नाम तो मुश्किल कुशाए आलम है। तुम्हारे नाम को दिल से लगाए बैठे हैं, तुम्हारे नाम को दिल से लगाए बैठे हैं। और दरे निजाम की जो धूम है जमाने में, कि दरे निजाम की जो धूम है जमाने में, अली के नाम के डंके बजाए बैठे हैं, अली के नाम के डंके बजाए बैठे हैं। दरे निजाम की जो धूम है जमाने में, अली के नाम के डंके बजाए बैठे हैं। और इसीलिए तो करम से नवाजते हैं निजाम, कि इसीलिए तो करम से नवाजते हैं निजाम। गमे हुसैन में आंसू बहाए बैठे हैं, गमे हुसैन में आंसू बहाए बैठे हैं। इसीलिए तो करम से नवाजते हैं निजाम, गमे हुसैन में आंसू बहाए बैठे हैं। दरे निजाम की जो धूम है जमाने में, अली के नाम के डंके बजाए बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया
1: जनाब। यूसुफ हुसैन फहमी अपना कलाम पेश कर रहे थे। अब मैं ज़हमत दे रहा हूँ जनाब असलम वारसी सिवानी साहब को। जनाब असलम वारसी सिवानी मनकबती कलाम पेश करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं।
2: मोहम्मद ज़ुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह हक सिर्फ स्टेज वालों का नहीं है, आपका भी हक है कि आप भी कुछ दादो तहसील नवाजें, और कम से कम अपने लोगों को जो बेचते हैं सुबह लग रहे हैं। मैं मतला हाजिर कर रहा हूँ समाप्त फरमाए। ये सुरूर इश्क़ निज़ाम

0: 哎呀。
1: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:50 पर हम फिर हाजिर होंगे अपने कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।